श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, जिसमें अभी आपने सुना डॉक्टर दिनकर शर्मा का राग नट भैरव में हारमोनियम वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 306।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों कहते हैं शिव को पाने के लिए बड़े बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं, जरूरत है तो बस सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा की। जब मन परेशान हो तो महादेव का नाम लीजिए, जब रास्ता कठिन लगे तो महादेव पर विश्वास रखिए, क्योंकि भोलेनाथ हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, धैर्य और विश्वास कभी नहीं।

शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं बल्कि शांति, शक्ति और संतुलन भी है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा हमें शीतलता का संदेश देता है। जटाओं में बहती गंगा जीवन की निरंतरता का, और उनका तीसरा नेत्र हमें याद दिलाता है कि भीतर की अज्ञानता को दूर करना भी जरूरी है। इस सोमवार अपने मन से एक संकल्प लीजिए, क्रोध कम करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करेंगे।

आपके जीवन में महादेव की कृपा बनी रहे, हर मुश्किल आसान हो और हर मनोकामना शुभ हो और आपके घर में सुख शांति का वास हो। इसी के साथ वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए।

0: सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: श्रोताओ नमस्कार, आज का चिंतन कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है लघु वार्ता भीतर के विघ्नों का नाश। आलेख है डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी का और वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का।
2: मन एक मैला वस्त्र है जिसे साफ करते रहने की जरूरत है। भीतर ही दुबका बैठा कोई दुश्मन है जिसे भय भी कह सकते हैं, जो हमें डराता भी है और खोखला भी करता है। हमें सहज सुंदर और सकारात्मक जीवन जीना चाहिए और इसके लिए अपने भीतर के भय से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, लेकिन कई बार हम सामाजिक रूप से तो स्वतंत्र होते हैं किंतु मानसिक तौर पर परतंत्र ही बने रहते हैं। ये मानसिक गुलामी सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण है। मन की प्रवृत्तियों का सही होना बेहद जरूरी है। हिंसा एक प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही मौजूद है। दुख भी मन की भाव अवस्था ही है। मन के अनुसार होना सुखकर तो होता ही है, किंतु कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सार्थक भी हो। यदि मन का नहीं होता है तब हम ये मान लेते हैं कि ये दुखदायी है। दुख और सुख दोनों में अपने मन को स्थिर रखने वाला व्यक्ति ही सही मायने में विजेता होता है। हराता कोई और नहीं है, बल्कि मनुष्य मन से ही हार जाता है। जब तक मन के भीतर अंधकार छाया रहेगा तब तक प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। अपने डर अपने नैराश्य को मिटाने की आवश्यकता है, तभी उजाला फैलेगा। अपने अंतःकरण में प्रवेश करना और आत्म साक्षात्कार करना मानव जीवन की वृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। हम अपने को मन के आईने में देखें, खुद को परखें, अपनी गलतियों को सुधारें। फिर देखिए, हमें ना तो लोगों से शिकायत होगी और ना समाज का भय होगा। हम सत्य की आंच में तप कर कुंदन बन जाएंगे। जीवन में सत्य का अनुसंधान हमें करना होगा। गांधी जी ने इसी बात पर बल दिया, स्वच्छता सिर्फ बाहरी रूप से किया जाने वाला अभियान नहीं है, बल्कि आंतरिक कार्य भी है। पहले अंतर मन को स्वच्छ बनाएं, फिर बाह्य रूप को। मनुष्य के भीतर की प्रवृत्तियां ही उसके जीवन में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। मनुष्य के भीतर तीन प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भाव सबसे श्रेष्ठ भाव है, जो मनुष्य को जीवन आनंद की यात्रा करवाता है। इस भाव को जीवन में संतुलन और समरसता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा भाव होता है राजसिक भाव। इस भाव दशा में मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। उसके जीवन का लक्ष्य मात्र सुख सुविधा प्राप्त करना होता है। तीसरी अवस्था तामसिक प्रवृत्ति की होती है, जो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। ये हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध और हिंसा को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति होती है। ये हमारे मन में तमस अर्थात अंधकार को भर देता है। ये तामसिक प्रवृत्ति मनुष्य को निकृष्ट बना देती है। जीवन के विकास की गति का सबसे बड़ा अवरोधक यही है। फिर जीवन आनंद मिलेगा कैसे? इसे कैसे नष्ट करेंगे? कैसे इससे मुक्त होंगे? सीधा सा अर्थ है, जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को दूर करता है, ठीक वैसे ही हम अपने भीतर सात्विक भाव जागृत करके तामसिक वृत्ति को समाप्त कर सकते हैं। हमारे मन और अंतःकरण में जैसे जैसे सात्विक भाव, सुंदर भाव, कल्याणकारी भाव जागृत होंगे, वैसे वैसे ही भीतर फैला नकारात्मक भाव रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा और हम अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवेश को भी सुंदर बना सकेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 62।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना यह है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 62 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है, लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। 16-2000 वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमा रेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संप्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलां अरचयत्।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-2000 सितंबर मासे दिल्ल्यां संभूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 16-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टं उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः संप्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषि मंत्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यं उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृषि उत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणां आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां संप्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः काल विपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनंतपुरम नगरे प्रथमायां एक दिवसीय क्रीडायां वेस्टइंडीज दलं पराभूय भारतेन 8 स्तोभैः विजयं समधिगतम्। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18

0: से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। इसके जरिए बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. India marks 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28, 29, 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control LOC in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. The operation was launched as a direct and decisive military

संगीत का कार्यक्रम में अभी आप लवली चंद्रा जी से भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।

दोस्तों, सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, सुबह हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद भी जगती है। तो चलिए, फिलहाल आज की शुरुआत तो हमने कर ही दी है, और आपको एक ऐसे विचार के साथ हम छोड़े चलते हैं, और ये गीत भी आगे सुनेंगे। हालात चाहे जैसे हों, हमें अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने देना है, क्योंकि रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहने का साहस रखते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब मेहनत बहुत होती है लेकिन परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में रुकना नहीं चाहिए। याद रखिए, अगर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बढ़ नहीं रहा। जी हाँ, आपकी मेहनत भी अपना रास्ता बना रही है। हम खुद पर विश्वास रखें और एक कदम रोज़ आगे बढ़ते रहें।

और दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा संदेश, दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपना समय है और अपनी मंजिलें हैं। जी हाँ, कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, यही असली सफलता है। अगर आज कोई सपना अधूरा है तो निराश मत होइए। सपने तब तक खत्म नहीं होते जब तक हम उन्हें देखना और उनके लिए मेहनत करना बंद नहीं करते।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम

संभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक

0: सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद

0: बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
3: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में

0: भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin today, deferred. Government launches project to build national digital public infrastructure for tourism sector. Weather Department forecasts heavy rainfall in Uttarakhand, South Interior, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And in men's cricket, centuries by Virat Kohli and Shubman Gill powered India to an 8-wicket victory over West Indies in first ODI in Thiruvananthapuram. And now the news in detail. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016,

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने के मौके पर इसकी याद ताजा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ODI में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। अब खबरें तफसील से।

0: सर्जिकल स्ट्राइक्स की 10वीं सालगिरह मना रहा है, जिसने दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी मुखालिफ पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम की थी। 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स पर निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। ये कार्रवाई इसी महीने के शुरू में उड़ी में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का एक बराह रास्त और फैसला कुन फौजी जवाब थी, जिसमें 19 भारतीय जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये सालगिरह कौम की दिफाई तदाबीर में एक दहाई के इर्तका की अक्कासी करती है। गुज़श्ता रोज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स को एक तारीखी संगे मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक ने कंट्रोल लाइन के पार कार्रवाई करने में भारतीय फौज के किरदार को उजागर किया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कारकुन अशोक सिंघल को खिराज-ए-अकीदत पेश किया है। एक अंग्रेजी अखबार में अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी एक यादगार उसूल की अक्कास है। दूसरों की फलाह बहबूद की कोशिश फर्द की जाती कामयाबी से कहीं ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती है। जनाब मोदी ने कहा कि हफ्ते के रोज से मुल्क ने अशोक सिंघल की सालगिरह की 7 साल तकरीबात का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अशोक सिंघल ने समाजी इत्तेहाद और मसावात को मजबूत बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल को फिक्री वजाहत की ऐसी नेमत हासिल थी कि मुआशरे में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए और हर फर्द मसावी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह उनका एजाज था कि उन्हें अशोक सिंघल के साथ बातचीत करने के बेशुमार मौके मिले। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। इसकी तस्दीक बैंक मुलाजमीन की ऑल इंडिया एसोसिएशन AIBEA ने की है। यह फैसला भारतीय बैंकों की एसोसिएशन IBA के साथ एक मुआहदा तय पाए जाने के बाद किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में AIBEA ने कहा कि यह फैसला IBA और बैंक यूनियनों के मुत्तहिदा फोरम UFBU के दरमियान एक मीटिंग के बाद किया गया। यह मीटिंग हड़ताल से मुतालिक मामलात के बारे में कल रात मुनाकिद की गई थी। मरकज ने सियाहत के शोबे के लिए एक कौमी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो सारिफिन को एक मुश्तरका डिजिटल जगह पर प्रोडक्ट्स और खिदमात के वसी रेंज तक रसाई के काबिल बनाएगा। सियाहत की वजारत ने नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की तामीर के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ हाथ मिलाया है, जिसका हदफ 2028 के अख्तितम तक 23,000 सियाहती तजर्बात और होम स्टेज को साथ लाना और उन्हें तलाश के काबिल काबिल एतमाद और बैंकिंग के काबिल बनाना है। मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र शेखावत ने कल आलमी योम सियाहत के मौके पर भारत मंडपम में मुनाकिदा एक तकरीब से इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मुल्क आज मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर के बंगा गाँव में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भगत सिंह की पैदाइश एक इनकलाबी घराने में हुई। वो अपने 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में प्यार से भगन वाला कहा जाता था, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मत। और उन्होंने राजगुरु जी और सुखदेव जी के हमरा अपनी कुर्बानी पेश करके मुल्क की आज़ादी में अपने नाम के इस मतलब को साबित किया। जश्न इनकलाब के उन्वान से आज लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक रियासती सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। मुल्क के अजीम सपूत को खराज अकीदत पेश करने के लिए

0: ये लोग शहीद भगत सिंह नगर में उनके आबाई गांव खटकर कलां भी पहुंच रहे हैं। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अपनी गैर मामूली शुजात और बहादुरी से भगत सिंह ने आज़ादी की तहरीक में नई जान डाली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त पर खुसूसी तफसीली नजर सानी SIR के जारी काम के लिए नई तारीखें मुकर्रर की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली में 2026 की वोटर फहरिस्त में खुसूसी तफसीली नजर सानी SIR का काम जारी है और इंतखाबी कमीशन ने दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर मुकर्रर की है। नोटिस का मरहला या दावों और एतराजात को निपटाने का मरहला 30 नवंबर तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त अब 4 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि कल कौमी राजधानी दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों की जगहों पर खसूसी कैंपों का एहतमाम कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ये कैंप फॉर्म 6 के जरिए नए वोटरों के इंदराज और दीगर इंतखाबी खिदमात फराहम करने के लिए लगाए गए थे। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर ने एक बयान में बताया कि नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंपों के इनेकाद का एक और दौर शुरू किया जाएगा। ये कैंप कल और बुध को कौमी राजधानी के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में मुनक़द किए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अमल के जरिए लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है। आज इस खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान में हम तस्करा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नज़रिए को लोथल में समंदर से मुतालिक कौमी विरासती कॉम्प्लेक्स जैसे इकदामात की शक्ल में किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: गुजरात के शहर लोथल में कदीम हड़प्पन गोदी के फरोग के साथ साथ समंदर से मुतालिक कौमी विरासती कॉम्प्लेक्स भारत के पहले कौमी इदारे के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां समंदर से मुतालिक मुल्क की 4,500 साल से ज्यादा की मालामाल तारीख की नुमाइश की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को आलमी सतह के एक सकाफती मकाम के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा और बहरिया की एक गैलरी कायम की जाएगी, जिसमें INS निशंक समंदर पर प्रवास करने वाले एक जहाज और एक UH-3 हेलीकॉप्टर जैसे मशहूर दिफाई असासों की नुमाइश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके, समझ सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा।
2: गुजरात की समंदर से मुतालिक 5,000 साल की विरासत और कैसे इस बड़े प्रोजेक्ट से मुस्तकबिल की नस्लों के लिए इसका तहफ्फुज़ किया जाएगा, ये जिक्र करते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: जहाँ तक गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5,000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। आप सभी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाइट हाउस म्यूजियम और सबसे बड़ी ओपन एक्टिव गैलरी का साथ भव्य नेवल म्यूजियम भी बनाया जाएगा।
2: अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने अगले 2 दिन के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में भी आज इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। उत्तराखंड में हिमालयी इलाकों में फंसे हुए 179 को पैमा और मुआविन अमले को

0: हिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में कोप एमाऊ के 13 ग्रुप्स के अरकान मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। मर्दों के क्रिकेट में कल रात तिरुवनंतपुरम में विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार सेंचुरियों की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एक रोजा मैच में जबरदस्त जीत हासिल की। विराट कोहली 139 रन पर जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 13 रन पर नॉट आउट रहे। 296 रन के हदफ का ताकुब करते हुए भारत ने 41 ओवर्स और 4 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। इस तरह भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। विराट कोहली ने एक रोजा मैचों की अपनी 55वीं सेंचुरी बनाई। वो वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम जापान में जारी एशियाई खेलों में आज निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। श्रेया सैयर की क्यादत में भारतीय टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सोने का तमगा अपने पास बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन उसे ग्रुप मरहले के मुकाबले में नेपाल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी के इजहार ख्याल को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, भारत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मर्दमशुमारी में शिरकत की अपील। अखबार प्रताप ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के खिताब को अहमियत देते हुए लिखा है कि दहशतगर्दी से समझौता नहीं, अपने दिफा का हक बरकरार, इस्लाहात पर मबनी कसीर फरीकी निज़ाम का हामी है भारत। अखबार इंकलाब ने भी इसे अहम खबर बनाया है। प्रताप की एक और अहम सुर्खी है, मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के बजाय 30 दिन का मिलेगा, मरकजी हुकूमत ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 को लागू किया। अखबार की बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोलने का फैसला तेहरान की जानिब से तय करदा शराइत की तकमील से मशरूत है, ईरानी वजीर खारजा का बयान। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के लिए अमरीका का 50 से ज़ायद ममालिक पर दबाव, अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का दावा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर उसकी याद ताज़ा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल का मुजाहिरा किया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोज़ा मुल्क की हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने सियाहत के शोबे के लिए कौमी डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा तामीर करने के प्रोजेक्ट का आगाज किया है। महकमे मौसमियात ने आज उत्तराखंड, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और तिरुवनंतपुरम में पहले ओडीआई में मर्दों के क्रिकेट में विराट कोहली और शुभमन गिल की सेंचुरी से भारत को वेस्टइंडीज पर 8 विकेट की कामयाबी में बड़ी मदद मिली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वरगंगा कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा से युगल गायन। इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं राग अलैया बिलावल।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा से युगल गायन, जिसमें आपने सुना राग अलहिया बिलावल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आवर गेस्ट।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसी ने कहा है कि कोशिश आखरी सांस तक करनी चाहिदी है। मंजिल मिले जा तजर्बा दोवें कीमती ने। आओ जानदे हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे वार्ता जिस दा विषय है आजादी दे परवाने शहीद भगत सिंह। वार्ताकार ने मनजीत सिंह। इस तो बाद शब्द सरवण करांगे, पर सब तो पहला आज दे दिन विशेष बारे कुछ गल्लां। हर साल 28 सितंबर नू विश्व रेबीज दिवस मनाया जांदा है। ए दिन फ्रांसीसी विज्ञानी लुई पॉस्चर दी याद विच मनाया जांदा है, जिन्हां ने 1885 विच रेबीज दा पहला टीका तैयार किया सी। 2007 तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल इस दिन नू विश्व पद्धर ते मनाउंदा आ रहा है। रेबीज एक बहुत खतरनाक वायरल बीमारी है जो मुख तौर ते पागल कुत्ते जा होर संक्रमित जानवरां दे कट्टन जा लार नाल फैलदी है। लक्षण प्रकट होण तो बाद ए लगभग 100% घातक हुंदा है, पर ए पूरी तरह रोकथाम योग है। कुत्तियां दा वड्डे पद्धर ते

0: टीकाकरण, जागरूकता फैलाउणा, कट्टण तो बाद तुरंत इलाज लेना इस बीमारी नूं रोकण दे सब तो प्रभावी तरीके ने। विश्व पद्धर ते 2030 तक कुत्तियां राही फैलण वाली रेबीज तो मनुखी मौतां खत्म करन दा टीचा रख्या गया है। आओ अपने पालतू जानवरां नूं टीका लगवाइए ते इस बीमारी नूं कंट्रोल करन लई अपना योगदान पाइए। हर साल 28 सितंबर नूं इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन मनाया जांदा है। इस दिन नूं यूनेस्को ने 2015 विच घोषित किया सी ते संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 2019 विच इस नूं विश्व पद्धर ते मानता दित्ती। इस दिन दा मकसद हर व्यक्ति नूं जानकारी तक पहुंच दा मौलिक अधिकार दिवाउणा है। 2026 विच इस दा थीम है डिजिटल युग विच जानकारी दी ईमानदारी बरकरार रखना। अजकल झूठी खबरां ते गलत जानकारी दा खतरा वध रहा है, इसलिए भरोसेयोग ते खुली जानकारी होर भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर साल 28 सितंबर नूं भारत दे महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह दी जन्म वरेगंढ मनाई जांदी है। उन्हां दा जन्म 28 सितंबर 1907 नूं पंजाब दे बंगा पिंड विच एक वतन प्रेमी परिवार विच होया सी। उन्हां दे पिता ते चाचे भी आजादी संग्राम विच सरगर्म सन, जिस कारण छोटी उम्र तो ही उन्हां विच देश भगती दा जज्बा पैदा हो गया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन विच रह के अंग्रेजी राज विरुद्ध संघर्ष किया। जेल विच उन्हां ने लंबी भुख हड़ताल कीती। अपनियां लिखतां राहीं समाजवाद, बराबरी ते धर्म निरपक्षता दे विचार फैलाए। मात्र 23 साल दी उम्र विच 23 मार्च 1931 नूं उन्हां नूं राजगुरु ते सुखदेव नाल फांसी दे दित्ती गई, पर उन्हां दी बहादुरी, विचार ते कुर्बानी अज भी नौजवानां नूं प्रेरित करदी है। उह सिर्फ इक क्रांतिकारी नहीं सन, सगों एक विचारक सन, जिन्हां ने गरीबी, अन्याय ते गुलामी विरुद्ध आवाज बुलंद कीती। ते आओ हुण सुणदे हां वार्ता जिसका विशा है आजादी दे परवाने शहीद भगत सिंह। वार्ताकार ने मनजीत सिंह।
1: शहीद भगत सिंह ते उन्हां दे साथी साडे कौमी इतिहास विच खास थां रखदे हन। उन्हां दे जीवन विच कौमी जज्बे ते अंतरराष्ट्रीय विज्ञानक सोच दा सुमेल सानू मिलदा है। प्रोफेसर जगमोहन सिंह लिखते हैं, अज दियां हालतां विच वी भगत सिंह ते उन्हां दे साथियां दी विचारधारा जीवन अते फर्ज निभाउण दा तरीका साडे लई राह दिखाउंदा है। शहीद भगत सिंह दा जन्म 28 सितंबर 1907 नूं बंगे चक 105 जिला लायलपुर विच होया। जद 12 विच पगड़ी संभाल जट्टा लहर चली सी अते सरदार किशन सिंह पिता जी, सरदार अजीत सिंह चाचा जी अते उन्हां दे साथी 1857 दी 50 साला वरेगंढ एक विशाल आजादी दी लहर पैदा करके मनाउणा चाहुंदे सन। जनता ते देसी राजियां नूं इकट्ठा करके अंग्रेज़ नूं भारत विचों कढ के भारत गणतंत्र स्थापित करन दी कोशिश विच रुझे सन, पर हालात पूरे साजगार ना हो सके। घर दे इस माहौल विच भगत सिंह दा बचपन बीतिया। उन्हां दे परिवार विच सब तो पहलां इनकलाबी पैदा करन वाले उन्हां दे दादा जी सरदार अर्जन सिंह सन। उन्हां ने अपने तिन्ने पुत्रां अते फिर पोतियां नूं लोकां प्रति प्यार करन लई प्रेरिया ते लोकां दी मुक्ति लई अग्गे तोरिया। इस घर दा माहौल की सी इस बारे जानना बड़ा दिलचस्प है। बाबा अर्जन सिंह एक सूझवान पेंडू सन, मिडल तक पढ़ के वैदगी सिख लई सी, क्योंकि अंग्रेज़ दे पंजाब ते राज बाद अकालां ते बीमारियां विच बड़ा वाधा होया सी, इसलिए आम आदमी नूं डॉक्टरी मदद जरूरी सी। पिंड विच ही नहीं इलाके भर विच विचारे सीधे साधे पेंडुआं वास्ते जुल्म, दबाअ ते लुट दे उल्ट लड़न लई ओह एक सहारा सन। ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਛੂਤ ਸਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਲੜੀ ਸੀ ਜਦ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੇ ਜਰਮ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ।

हालात नूं मुतालिया करन दे ढंग सिखाए जांदे सन। खुल्लियां बैसां वी हुंदियां सन जिथे भगत सिंह दा संबंध इत्थे भगत सिंह दा संबंध भगवती चरण वोहरा नाल होया जो 2 साल अगे पढ़दे सन। शहीद वोहरा पंजाब विच पहले व्यक्तियों विचों सन जिन्हां पास रूस दा साहित आउंदा सी। वह अपने निजी जीवन विच महान इनकलाबी सन। 1923-24 विच वड्डा लड़का होण करके विआह दी चर्चा चल रही सी तां अपने घर छड्ड के कानपुर चले गए। जांदे इक चिट्ठी लिख के रख गया कि बाबा जी प्रतिज्ञा मुताबक मेरी जिंदगी आजादी दे देश लई लग चुकी है, सो वह फर्ज निभाउण लई जा रहा हाँ। किते पिता जी ने तलखी विच कहा सी कि शायद तू सोचदा होवेगा कि सरदार अजीत सिंह ते भतीजे अते किशन सिंह दे पुत्तर होण करके तेरा बड़ा माण होवेगा। इसका असर यह होया कि कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी जी पास प्रताप अखबार विच एक अनजाण दी तरह काम करन लगे। नैशनल कॉलेज दे एक अध्यापक जय चंद दयाल लंकार ने इन्हां दे संबंध कानपुर दे इनकलाबियां नाल करा दिता सी। इत्थे इन्हां दा साथ बी के दत्त शिव वर्मा अते जयदेव कपूर नाल गूढ़ा हो गया अते काकोरी दे देश भगतां शहीद बिस्मिल अते चंद्र शेखर आजाद नाल भी जुड़ गया। दस्या जांदा है कि इत्थे एक पार्टी दे काम वास्ते किसी पिंड पैसे लैन जाना पिया यानी डाका मारन। इसने एक बहुत वड्डा सवाल उन्हां दे मन विच पैदा किया। वह बहुत रोए ते कहन लगे कि आजाद भारत की की तमन्ना लैके असीं इदां दे कम्मां विच भटके फिरदे हाँ। यह जबरदस्ती पार्टी लई पैसे कट्ठे करना सानू आजाद भारत की की तस्वीर देवेगा। यह सवाल काफ़ी गहरा सी ते इस दे जवाब की खोज विच ही इत्थों शुरू हो गई। कानपुर उस वेले शौकत उस्मानी दे रूस तो परतन बाद नवें विचारां दा रंगमंच भी बन गया सी। रूस आयरलैंड इटली दे दूसरे देशों दे मुक्ति संग्रामां दी कहानी दी खोज इत्थों शुरू हो गई सी। मार्च 1924 विच जैतो दा मोर्चा लग चुका सी ते शहीदी जथे जैतो नूं जा रहे सन। सरकार ने ऐलान किया कि जथे नूं कोई पानी तक ना पिलावे। इसका चैलेंज लेंदे हुए भगत सिंह 13वें शहीदी जथे नूं अपने पिंड बंगे लियाए। पुलिस दी नाकाबंदी दे हुंदे हुए लंगर छकाया। इस काम ने जत्थे दा हौसला तां वधाया ही नाल अंग्रेजां नूं चुनौती भी दित्ती। इस हौसले वाले काम करके भगत सिंह दे पुलिस वरंट निकल गए। पिता जी ने उन्हां नूं हुण आप कानपुर भेज दिता तां कि 6 महीने की म्याद पुग जाए। ये भगत सिंह वास्ते सुनहरी मौका सी अपने इनकलाबी साथियों नाल संबंध पक्के करन दा। 9 अगस्त 1925 नूं काकोरी विखे पार्टी दे काम नूं तेज करन लई सरकारी खजाना खोया गया, पर इस दे नाल ही शहीद बिस्मिल ते उन्हां दे साथी फड़े गए। सिर्फ चंद्र शेखर आजाद जो मफरूफ रहे आगुआं विच्चों बचे। पार्टी दा नवें सिरों गठजोड़ दा सारा भार भगत सिंह ने लै लिया। इस तों पहलां पार्टी दा नां हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी सी। कुछ चिर पार्टी दी अटल विरोधता कारण इहदी होंद ही खतरे विच सी। काकोरी केस दे दौरान आम लोकां दीआं गवाहियां ने पार्टी दे आगू जो गहरी लगन ते त्याग वाले सन, निरस्वार्थी भी सन, दी जनता नाल जुड़न दी नाकामयाबी दा सवाल भी अगे लै लिया खड़ा किया। इस दे नाल ही इनकलाबी यथार्थवादी भगत सिंह ने रोमांस ते विचारवादी दी थां लै लई। पार्टी दे नां विच समाजवाद शब्द जोड़ के आजाद भारत की तस्वीर पेश की गई। पार्टी का नाँ हो गया हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी। 1927 विच बंदी जीवन डैन ब्रिकन दी जीवनी आदि का तजर्मा करके भगत सिंह ने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया। भारत दी आजादी दी लहरां ते सिलसिलेवार लिखना शुरू किया ताँ कि देश की आजादी की लड़ाई तो लोगों को जाणू करवाया जा सके। इस समय दौरान भगत सिंह ने बहुत लिखिया ते किरती अखबार विच एडिटोरियल बोर्ड विच रहे। उत्थे दुनिया विच पसर रहे विचारां दी घोख करके उसके बारे लेख छापे। फरवरी 1928 विच इलाहाबाद तो निकलण वाले चांद दे फांसी अंक का संपादन भी किया। मई 1927 विच काकोरी दे वीरां नाल जाण पछाण लेख किरती विच छपदे ही भगत सिंह दी पहली गिरफ्तारी हुई। इस समय दी ही मंजे ते बैठियां दी फोटो आम प्रचलित है, पर पुलिस कुछ प्राप्त ना कर सकी ते जमानत ते छड़ दिता। पर इनकलाबी काम जोर नाल चलता रहा। नौजवान भारत सभा बनी, पंजाब स्टूडेंट यूनियन बनी, गदर पार्टी दिन ते फोटो दिखाई गई, यानी कि

0: जनता विच जागृति दे हर संभव यतन किए जाण लगे। 1928 विच लाला लाजपत राय मारे गए तो देश भर में एक जेही बेवसी की लहर दौड़ गई कि उसनू तोड़ना लोगों की मानसिक उलझन तोड़ना सी। सो सांडरस नू मार के लोगों के मानसिक डर नू तोड़िया गया। इस नाल देश दे नेतावां विच वी इनकलाबियां लई सत्कार वध गया। 1929 वेले दुनिया विच सामराजी मंदवाड़े का समा सी। पब्लिक सेफ्टी बिल ते NSA ते जरूरी सेवावां एक्ट 1981 वर्गे काले दमनकारी कानून लिया के कामे किरतियां दियां जथेबंदियां दा दमन करन दा इरादा अंग्रेज सामराज ने किया। 8 अप्रैल 1929 नू इन्हां दे खिलाफ भारतीय आवाज़ बुलंद करन लई भगत सिंह ते दत्त ने दिल्ली असैम्बली विच बंब सुट्टिया, डट के बयान दिता ते जनता नू इनकलाब दे अर्थ भी समझा दित्ते। इस सारे वक्त समय पहलकदमी भगत सिंह ते उन्हां दे साथियां दे हत्थां विच रही, चाहे जेल सुधार की गल सी जां लाहौर साजिश केस जां मुकदमा, हर कदम ते समाजवाद दे मनोरथ दा प्रचार चलदा रहा ते लोकां विच भगत सिंह दे उसदे साथियां दा प्यार वधदा गया ते अंग्रेज सामराज दा डर लोकां विच खत्म हुंदा गया। इस समय दौरान अपनियां लिखतां राहीं लोकां विच इस समाजवाद दी मंजल दी प्राप्ति लई कोशिश करन बारे लेख लिखे जांदे रहे। आखिर 7 अक्तूबर 1930 नूं मुकदमे दा ड्रामा खत्म होया। सज़ा फांसी तिन्नां साथियों नूं दित्ती गई, पर जेल कोठड़ी दे 6 महीने भी साथियों नाल विचार सांझे करदे गुजारे। 23 मार्च 1931 दे आखिर दिन भगत सिंह लैनिन पढ़ रहे सन। इस विच एक सुनेहा ये है कि आने वाले समय विच उस वक्त का सफल तजर्बा गहरी तवज्जो मंगता है अते आज़ादी दे बराबरी दी मंजल वल वधन लई भारत दे लोकां दे मसले हल करन लई उस तजर्बे दे अध्ययन नाल अगवाई लई जावे। जिस तरीके नाल शहीद भगत सिंह ने आज़ाद भारत दे संकल्प नूं सामने लियांदा है, उसे तरह एक इनकलाबी नूं किवें जीवन दे मसले घोखणे अते उहनां दे हल लई वधना चाहीदा है, उसका तजर्बा भी साढ़े सामने रख्या है। ये जीवन विकास एक विज्ञानिक इनकलाबी विकास का राह दिखाता है जिसनूं अमली जीवन विच हर मनुख मेहनत करके अपना सकता है।
1: हुणे तुसीं वार्ता सुन रहे सी जिसका विशा सी आजादी दे परवाने शहीद भगत सिंह। वार्ताकार सन मनजीत सिंह। ते आओ हुण सरवण करदे हां ये शब्द आवाज़ है भाई दविंदर सिंह रागी ते साथियां दी।

मैं मन को मान ना त्यागियो। भाई दविंदर सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ अगला शब्द सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच।

ना है तो चेत लै। भाई हरबान सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। ते आओ अगला शब्द सरवण करदे हां भाई बलदेव सिंह रागी ते साथियां दी आवाज़ विच।

हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए। भाई बलदेव सिंह रागी ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए शब्द सरवण कर रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 10 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है।

शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कभी कभी कोई आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक याद होती है, और कभी कभी तो वो पूरी एक ज़िंदगी की कहानी होती है। और आज की तारीख भी कुछ ख़ास है। जी हाँ, आज है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जयंती। एक ऐसी महान गायिका जिनकी आवाज़ में मोहब्बत भी थी, विरह भी थी, भक्ति भी थी और ज़िंदगी के अनगिनत रंग। बिल्कुल लाजवाब उनकी आवाज़, यूँ कहें कि कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। और वाकई में उनको बहुत सारी श्रद्धांजलि, और हम उन्हें यूँ कहें कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम में आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जी हाँ दोस्त, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हम आपके मैसेजेस पढ़ें और बिल्कुल आपके नाम शामिल हो और आपसे बात हो। तो हमें भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस कार्यक्रम का और आपसे जुड़ने का। तो चलिए फिर भी हम बता दें कि कोई जो नेश होता है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना ईमेल आईडी बता दें। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। एक बार फिर दोहरा दें, iprradiodelhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा और भी नए श्रोताओं का जुड़ने का, क्योंकि बाकी लोग तो हमारे मैं यूँ कहें कि मेल आईडी को जानते हैं और बहुत सारे मैसेजेस भेज भी चुके हैं। तो जल्दी से हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और उनकी पसंद के गीत सुनवा देते हैं।

तो सबसे पहले ये संदेश हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी। और ये हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, ये लिखते हैं, रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हैं। बहुत सही बात लिखी दोस्त, क्योंकि सबसे पहले तो अपने आप को, अपने जो अपने होते हैं उनको समेट के रखना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। और हमारे साथ जुड़े हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। और रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं पीयू सिक्का, कोयल सिक्का, डिग्गू भाविक सिक्का जी। और ये संदेश हमें आया है किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का। और ये अगला जो संदेश है ये हमें आया है नई दिल्ली वेस्ट से, स्वीटी रवि और इंद्र जी का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। जी हाँ, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके मैसेजेस को लेकर। ये मैसेज ले लेते हैं, ये आया है हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर का, और उनके साथ जुड़े हैं मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुनेकर। और अगला संदेश हमें आया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव जी का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी जी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी। और ये मैसेज हम ले चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया अगला मैसेज हमें धतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का। और अगला संदेश हमें आया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम मिश्रत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिश वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा का। और ये जुड़े हैं इनके साथ कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकट परिवीन जी। और अगला जो संदेश हमें आया है वो है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, और इनके साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। और अगला संदेश लेते हैं, ये हमें आया है, जी हाँ संदेश है ना, आप बार बार ही भेजते हैं जबकि एक बार ही भेजें बाकियों का भी तो नाम आएगा। चलिए अगला ले लेते हैं। ये आया है गांव कलमंडी खुर्द जिला झालवाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार की ओर से ये संदेश। और हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और ये संदेश में आया है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ शोभा शर्मा, और आपके जो मैसेजेस हैं उन्हें पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो ये मैसेज ले लेते हैं। ये आया है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख का, और हमारे साथ जुड़े हैं पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सहानी जी। और अगला संदेश हमें आया है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल जी का। और ये है चरणदास जी, राजू अग्रवाल, केशव चौधरी वास, हिसार हरियाणा से। और हमारे साथ जुड़े हैं गाँव पांडर कपड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, रनुश्री बुरांडे जी, और इनके साथ हैं धनश्री बुरांडे। और अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, रोहिणी दिल्ली से। और अगला जो संदेश हमें आया है वो आया है हमें पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनोज जी। उत्तर नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। और ये संदेश हमें आया है मंसूरी रेडियो लिस्नर्स क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा साबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलिजबा आयान मंसूरी, यश मंसूरी और इनके प्यारे नवासे नुमैर मंसूरी जी का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं बहुत रंगीन, इन्होंने संदेश बना के भेजा है बहुत सुंदर सा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी। जलालाबाद वेस्ट से ये हमें मैसेज आया सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशनानी और निमित आहूजा का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

कुछ गीत खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास बहुत देर तक हमारे साथ रहते हैं, और शायद और ये गीत भी वाकई में ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें याद दिला देता है, हमारे सैनिकों की याद दिलाता है, और मेरी तो बहुत करीब जुड़ा हुआ गीत है, बहुत ही अच्छी पसंद हमारे श्रोताओं की वाकई में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई गीत नहीं भी सुना हो तो हमारे श्रोता जो फरमाइश भेजते हैं तो वाकई बहुत खुशी होती है, और हम भी उस बहाने उस गीत को सुन लेते हैं। चलिए अब मैसेजेस की ओर रुख करते हैं। ये मैसेज अगला हमें आया है जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह का। ये हैं जिला मोतिहारी बिहार से हमें लिख रहे हैं। और अगला संदेश हमें आया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशनानी और निमित अहूजा का। और ये हैं, जी हाँ, इन मैसेज को हम पढ़ चुके हैं तो अगला बिल्कुल लेंगे हम मैसेज। ये अगला जो मैसेज हमें आया है संबलपुर और कांकेर से है, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव जी। और मोहाली पंजाब से हमारे से जुड़े हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। और ये संदेश हमें बार बार आता है तो हमें आगे ही मैसेजेस को करना पड़ता है। चलिए अगला ले लेते हैं। ये संदेश हमें भी आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हमारे साथ जुड़े हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। और श्रोता रघुवीर नगर से हमारे साथ जुड़े हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नयाब और लड्डू। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं अगला ये गीत।

देखा भरद्वाज की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद में आपके मैसेजेस ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल मैसेजेस पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो ये मैसेज ले लेते हैं। ये आया है हमें छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा का। और हमारे साथ जुड़े हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवास अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और ये संदेश हमारा है तंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा का। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। और अगला संदेश हमें आया है। जी हाँ, संदेशों का सिलसिला तो है, बिल्कुल जारी है, परंतु एक बात बोले दोस्त, बार बार एक ही संदेश को हम कैसे ले लें, तो आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं।

हम आगे ये संदेश हमें आया हनुमानगढ़ राजस्थान से, रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान का, और पंकज चरणदास, राजू अग्रवाल, चौधरी वास, इन्होंने लिखा है, जो यही लिखा है मैसेज में, बताया नहीं कि कहाँ से हैं। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। कस्बा वराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत, राहुल, कुरशबत सिंह, राहुल जी। वाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं भरत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और ये हमें संदेश आया है गांव शुभापुर मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और इनके मित्रगण हैं दिव्यांशु यादव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। और ये हमारे साथ जुड़े हैं गन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। और ये संदेश हमें आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके पुत्र गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह की ओर से। और लाहौर डोडा जिला बागपत से हमारे साथ जुड़े हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन और इनकी पोती भुवनेश्वरी देवी, और सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप, और इनके साथ जुड़े हैं करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम भी आपको कैसे समझाएं कि हमारा दिल भी आपके बिना नहीं लगता, आपके मैसेजेस के बिना ये कार्यक्रम हमें अधूरा ही लगेगा, बल्कि यह कह के कार्यक्रम का वजूद ही क्या रहेगा जब आपके मैसेजेस ना हो। और फिर मैसेजेस हों और आपके मैसेजेस ना लें तो आप हम पे गुस्सा करेंगे। जी हाँ बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि मैसेजेस आप भेजते हो इतने प्यार से, तो हमें भी रहता है कि जल्दी जल्दी सभी के संदेश ज़रूर शामिल करें। तो संदेश बिल्कुल शामिल कर लेते हैं। ये संदेश हमें आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून का। अगला जो संदेश हमें मिला है वो है बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। और ये जुड़े हैं अनिल छैया, प्रियांश कोले, नागपुर महाराष्ट्र से। और ये हमें संदेश आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से, सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू डब्बू और राजू बिगलानी, बबीता बिगलानी का। और हमारे साथ जुड़े हैं कुमार हैड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और अगला जो संदेश हमें आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेहरा जहाँ का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और ये संदेश हमें आया है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का, धनौरी तेलीवाल, तेलीवाला उत्तराखंड से। और ये अगला संदेश हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। और लिख रहे हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा दोस्त, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं और हमें मैसेजेस भी भेजते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है सारसताल सोन नगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, प्रेम साय राजवाड़े, सुमार रासाय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पकौरा से। और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह जी। और भी संदेश जल्दी जल्दी हम ले लेते हैं। ये अगला संदेश हमारे को आया है बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू, और इनके साथ है डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हमारे साथ जुड़े हैं शद्धानंद आर्या, सभ्या आनंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान जी। और जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। और ये संदेश हमें, जी हाँ ये संदेश हम ले चुके हैं, अगला संदेश पढ़ लेते हैं। यह है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और कालका से हमारे साथ जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी। जी हाँ, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आपसे लेते हैं इजाज़त कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। जी हाँ, मुझे यानी शुभा शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, पर जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा गीत आपके लिए छोड़ी जा रही हूँ, आप ही सबकी पसंद का। तो बिल्कुल आनंद लेते हैं इस गीत का, और मुझे यानी शुभा शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल

सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिंडशेवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India marks the 10th anniversary of surgical strikes that demonstrated to the world a new example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. On September 28th and 29th in 2016, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across the line of control, or LOC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The operation was launched as a direct and decisive military response to the Uri terror attack earlier that month, where 19 Indian soldiers lost their lives. The anniversary highlights a decade of evolved national security measures. In his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday, Prime Minister Narendra Modi described the 2016 surgical strike against terrorist hideouts as a historic milestone. He said the surgical strike highlighted the role of the Indian Army in carrying out the operation across the LOC.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी।
1: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has reached Doha in Qatar to participate in the 11th annual meeting of the Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, and the AIIB Investors Dialogue 2026. The annual meeting will bring together member delegations, policymakers, and other stakeholders from around the world to discuss the AIIB's strategic direction, operational priorities, and future agenda. The centre has launched a project to build a national digital public infrastructure for the tourism sector, which will enable users to access a wide range of products and services on a shared digital space. The Ministry of Tourism has joined hands with the Open Network for Digital Commerce to build the National Digital Tourism Stack, with a target to bring on board 23,000 tourism experiences and homestays and make them discoverable, trustable and bookable by the end of 2028. Union Tourism Minister Gajendra Shekhawat launched the project at a function held at the Bharat Mandapam to mark World Tourism Day yesterday. The United Forum of Bank Unions has announced that the proposed three-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the All India Bank Employees Association said that this decision was taken after a meeting last night held between the IBA and the Union Forum of Bank Union, the umbrella body of

0: the 7 bank unions on the issues related to the strike. They had called a strike in support of 2 principal demands: implementation of 5-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive scheme. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Indian chess players on defending the prestigious Nona Grapdish-Dashvili Trophy at the 46th Chess Olympiad in Samarkand, Uzbekistan. In a social media post, Mr. Modi said that their passion and determination are exemplary. He wished that these successes would motivate several more youngsters to play chess and excel. In Asian Games 2026, the Indian men's cricket team has entered the semi-final without even taking the field after its quarter-final against Afghanistan was abandoned due to inclement weather at Aichi Nagoya in Japan today. The defending champions side made it to the last 4 as it is ranked number 1 in the ICC T20 international rankings, while Afghanistan is currently placed 10th. In women's boxing, Indian Olympic medalist Lavlina Borgohain secured Asian Games medal in 75 kg category. Currently, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 37 with 4 gold. Sensex tanked 730 points to 73,170 in early trade, while Nifty dropped 231 points to reach at 22,909 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11:10 और ठीक 15 सेकंड। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया।
3: प्रिय मित्रों, जब कभी आप भविष्य के बारे में सोचते हो और किसी काम को आरंभ करने का प्रयास करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या भविष्य को लेकर आपके अंदर एक डर होता है? भविष्य के बारे में सोचते समय हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है और वो सवाल ये होता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अक्सर परीक्षा से पहले यही डर छात्र और छात्राओं के मन में होता है। अक्सर इंटरव्यू से पहले बहुत से युवाओं में भी यही डर देखने को मिलता है। कई बार नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों के मन में भी इसी प्रकार नया व्यापार या कोई नया कार्य करने से पहले डर लोगों के जीवन में पाया जाता है। यही डर कई बार हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम किसी नए काम को शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम सफल नहीं होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम असफलता का डर और आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे और कैसे हम असफलता के डर पर विजय पा सकते हैं और अपने जीवन में आत्मविश्वास को लेकर चल सकते हैं, इसी के विषय में हम बात करेंगे। मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचते हैं कि जीवन में आने वाली असफलताएं हमारे भविष्य को नष्ट कर रही हैं? क्या इसी कारण आपको भविष्य का डर सता रहा है? क्या आपके जीवन की असफलता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है? तो आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसने अपनी असफलता को अपनी सफलता का एक कारण बना लिया था। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, उनका जन्म 17 फरवरी 1963 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय शिकागो बुल्स के लिए खेलते हुए बिताया और अपनी मेहनत, अनुशासन, लगन, भावना और असाधारण प्रतिभा के कारण बास्केटबॉल की दुनिया में एक महान नाम बनाया। माइकल जॉर्डन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैं लगभग 300 मैच हार चुका हूं। 26 बार मुझे मैच जिताने वाला अंतिम शॉट लेने का भरोसा दिया गया, लेकिन मैं चूक गया। मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है और यही कारण है कि मैं आज एक सफल खिलाड़ी हूं। माइकल जॉर्डन की सफलता

की खास बात यह है कि उन्होंने असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके शुरुआती जीवन में भी ऐसी घटनाएं थी जिनसे उन्हें निराशा मिली। हाई स्कूल में वे टीम में चुने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अंतिम असफलता नहीं माना। उन्होंने अभ्यास जारी रखा और अपने खेल को बेहतर बनाया। बाद में वो कॉलेज और फिर जिस टीम से उन्होंने भविष्य में खेलना शुरू किया उसके द्वारा वो महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। प्रिय श्रोताओं, असफलता का डर हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने और आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमारे मन में कोई डर नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद हमें विश्वास हो कि हम उसका सामना कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ डर का ना होना नहीं है। आत्मविश्वास यह विश्वास है कि डर के बावजूद हम ठीक रहेंगे और आगे बढ़ने पाएंगे। एक ओलंपिक खिलाड़ी इसलिए आत्मविश्वासी नहीं होता कि उसे कोई डर नहीं लगता। किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी से यदि आप पूछेंगे तो वह जरूर इस बात को बताएगा कि प्रतियोगिता से पहले उसे भी डर और चिंता होती है, फिर भी वह आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करता है क्योंकि उसने बार बार कठिन और डरावनी परिस्थितियों का सामना किया है। उसने कई बार असफल होकर भी अभ्यास जारी रखा है। उसकी सैकड़ों और हजारों अभ्यास प्रतिक्रियाओं में कई बार गलतियां और असफलताएं हुई होंगी, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा और फिर से प्रयास किया। इन्हीं अनुभवों ने धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास पैदा किया कि डर के बावजूद वह अपना काम कर सकता है। यही आत्मविश्वास है। इसी तरह एक पेशेवर सिंगर को भी हम मंच पर हजारों लोगों के सामने गीत गाते या बजाते हुए देखते हैं। कई कलाकार वर्षों तक मंच पर प्रदर्शन करने के बाद भी घबराहट और डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के कारण पीछे नहीं हटते। वे डर के बावजूद मंच पर जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। बार बार ऐसा करने से उन्हें यह अनुभव होता है कि मैं डर को सह सकता हूं और फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। यही अनुभव धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको अपने जीवन में किसी भी काम को करने का डर लग रहा है और यदि आपने उस काम को करते हुए अपने जीवन में कई बार असफलताओं को प्राप्त किया है तो आप ये ना सोचें कि आपका भविष्य नष्ट हो गया है, बल्कि उन असफलताओं के कारण ही आप एक ना एक दिन जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास कोई ऐसी भावना नहीं है जो हमें अचानक मिल जाती है। यह अनुभव, अभ्यास, असफलता और बार बार प्रयास करने से विकसित होता है। जब हम असफल होने के डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि हम भविष्य की चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए असफलता से मत डरिए, डर के बावजूद कदम उठाएं, गलतियों से सीखें और फिर से प्रयास करें। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाएगा। कुछ लोग इसलिए सफल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे अपने आप को दूसरों के सामने साबित करना चाहते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि वे असफल हुए तो उन्हें लोग कमजोर या असफल समझेंगे, इसलिए उनकी सफलता के पीछे डर और असुरक्षा होती है। इसलिए दूसरी ओर आत्मविश्वासी लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं क्योंकि वे अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जानते हैं कि असफलता भी सिखाने का एक हिस्सा है, इसलिए वे अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते जाते हैं।

0: नहीं हार के।
1: प्रिय श्रोताओं, सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितना हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हम सफलता के पीछे किस भावना और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए अपना कमरा नहीं था और जो कभी कभी दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता था? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, वही व्यक्ति बाद में ऐसी तकनीक

बनाएगा जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी। और क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, वही कुछ वर्षों के बाद वापस लौटकर उस कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल के सह संस्थापक थे। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए। वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारत आए थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों की यात्राएं की और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित हुए। भारत से लौटने के बाद उनकी सोच में काफी बदलाव आया। उन्होंने जीवन को केवल धन और भौतिक सफलता के दृष्टिकोण से नहीं देखा, उनके लिए सरलता, अनुभव और जीवन के गहरे अर्थ भी महत्वपूर्ण हो गए। बाद के वर्षों में उन्होंने आध्यात्मिकता और जो उनके पास अंतर्ज्ञान था उसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण माना। स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई। वॉजनियाक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने में बहुत प्रभावशाली थे। जॉब्स तकनीकी को समझने के साथ साथ ये सोचने में माहिर थे कि किस तकनीक को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। दोनों की प्रतिभाएं एक दूसरे से अलग थी, लेकिन एक दूसरे के पूरक थी। वॉजनियाक मशीन बना सकते थे, जॉब्स उनमें एक बड़ा अवसर देख सकते थे। यहीं से एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। 1976 में जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत किसी बड़ी फैक्ट्री या शानदार ऑफिस से नहीं हुई। उन्होंने जॉब्स के परिवार के घर के गैरेज से काम शुरू किया। उनका पहला महत्वपूर्ण उत्पादक था एप्पल। यह आज के आधुनिक कंप्यूटर जैसा नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्तिगत कंप्यूटर था जिसे लोग खरीदकर इस्तेमाल कर सकते थे। स्टीव जॉब्स का स्वभाव बहुत दृढ़ था। वे अपने विचारों को लेकर बेहद जुनूनी थे और अपने उत्पादों के बारे में बहुत ऊंची अपेक्षाएं रखते थे। आखिरकार 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया गया। जिस कंपनी को आपने खुद शुरू किया, जिसके लिए आपने अपना जीवन लगा दिया, उसी कंपनी से आपको निकाल दिया जाए। स्टीव जॉब्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने बाद में कहा भी कि एप्पल से निकाला जाना उनके जीवन की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था, लेकिन यही घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक नया अध्याय बन गई। असफलता के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा उससे भागना नहीं है। 1990 के दशक में एप्पल कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। एप्पल ने 1985 में नेक्स्ट को खरीद लिया। इसके साथ ही स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए। यहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा कमबैक था। जिस कंपनी से उन्हें कभी निकाल दिया गया था, उसी कंपनी में उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने एप्पल को पूरी तरह बदलने का काम शुरू किया और उन्होंने इस काम को कर भी दिखाया। प्रिय मित्रों, असफलता हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट तो बन सकती है, लेकिन हमें उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ना होता है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।

तो अब प्रश्न ये है कि असफलता के डर पर काबू पाने के लिए हम क्या करें। मित्रों, असफलता के डर को समझना जरूरी है, लेकिन केवल समझना ही काफी नहीं है। आत्मविश्वास और मजबूती के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना और लगातार अभ्यास करना जरूरी है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में किताबें पढ़ने से शरीर अपने आप में मजबूत नहीं होता, वैसे ही मनोविज्ञान को समझने से आत्मविश्वास अपने आप नहीं बढ़ता है। हमें धीरे धीरे ऐसी आदतें विकसित करनी होती हैं जो हमारे दिमाग को ये सिखाए कि डर और चिंता खतरा नहीं है। तो सबसे पहली चीज, डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करें। जी हाँ दोस्तों, जब आपको डर या चिंता महसूस हो तो खुद से कहें, हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन ये सामान्य है। डर लगना गलत नहीं है, मैं डर के बावजूद ये काम कर सकता हूं। दूसरी चीज, कोई नया शौक सीखें। ऐसा कोई काम शुरू करें जिसमें आप पहले से अच्छे नहीं थे, जैसे कि कोई नया खेल खेलना सीखें, खाना बनाना सीखें, संगीत या गीत गाना सीखें, नृत्य करना सीखें, साइकिलिंग या फिर कोई और काम जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, उस कार्य को करने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य सफल होना नहीं, बल्कि गलतियां करने और असफल होने को स्वीकार करना सिखाना है। जब हम किसी नए काम में शुरुआत करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, इससे हमें सीखने का अवसर मिलता है कि असफल होना

0: बुरी बात नहीं है। तीसरी चीज, हमें अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करना चाहिए। कई लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने या दूसरों के सामने कमजोर दिखने का डर होता है। यह डर से प्रेरित जीवन है। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे ईमानदारी, साहस, प्रेम, सेवा, अनुशासन और करुणा। तो दोस्तों, असफलता के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा उससे भागना नहीं है, डर को स्वीकार करें, कठिन काम करने का अभ्यास करें और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिए। धीरे धीरे आपका डर कमजोर होता जाएगा और आप आत्मविश्वास में मजबूत होते जाएंगे।
1: श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है
2: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
1: तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पेड़ियाँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं सबरस के अंतर्गत संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत।

संगीता पंत की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अर्चना सिंह का गायन, राग है तोड़ी। तो सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह का गायन, राग था तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की 119वीं

घर आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, जिसे आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंप्रेस चैनल यानी कि 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज पर अपनी रेडियो सखी कल्पना के साथ। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं इस प्रेरक विचार के साथ। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। ये विचार है महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के, एक ऐसा नाम जिसने देश की आजादी के लिए अपना जीवन हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। उनकी निर्भीकता, विचार और देश प्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आज उनकी जयंती भी है तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज जयंती है आवाज की दुनिया की जादूगरनी स्वर साम्राज्ञी कोकिला लता मंगेशकर की। उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं, भावनाओं की एक पूरी दुनिया थी। उनकी सुरीली आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रेम, विरह, खुशी और देशभक्ति के रंगों से जोड़ा। उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न पद्म विभूषण दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो लता जी की जयंती पर आज हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप अभी सुन रहे थे किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में। और आइए अब बात करते हैं कि स्वच्छता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा नाम हमेशा जीवित रहता है और हम याद किए जाते हैं। तो स्वच्छ रहें, सुंदर बने, अपना देश महान, स्वच्छता ही सेवा बने जन जन का अभियान। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम सबकी रोज़मर्रा की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए इस अभियान से जुड़े रहकर अपने हिस्से की जो साफ़ सफाई है वो हमें भी करनी चाहिए, और साथ ही जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी हमें समय समय पर जागरूक करते रहना है। और साथियों, आज के दिन यानी 28 सितंबर को विश्व रैबीज दिवस भी मनाया जाता है, जो घर के किसी पालतू पशु या किसी संक्रमित जानवर के काटने पर लापरवाही करने से ये समस्या जो है वो हो जाती है। तो इससे आपको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें। और साथ ही आपको करना क्या है कि भाई, सलाह लेने के बाद आपको टीकाकरण भी करवाना है, क्योंकि जो जागरूकता है वही रेबीज से बचाव की पहली सीढ़ी है। साथ ही दोस्तों, इसी दिन सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि सही और भरोसेमंद जानकारी हर व्यक्ति तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही सूचना जो है ना वो कई बार सही फैसला लेने में मदद करती है। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और खूबसूरत सा जो मौसम है उसका आनंद लेते रहें, खूबसूरत से जीवन का आनंद लेते रहें, और साथ में गुनगुनाते रहें ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मेला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। दोस्तों देखिए, पितृ पक्ष आरंभ हो गए हैं और श्राद्ध नाम सुनते ही मन में तर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि श्राद्ध सिर्फ कर्मकांड है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल श्राद्ध का एक गहरा अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना, जिन्होंने हमें जीवन दिया, संस्कार दिए, परिवार और समाज को आगे बढ़ाने की नींव रखी, उन्हें याद करने का ये अवसर है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद हम अपने बुजुर्गों की कही बातें भी भूल जाते हैं। श्राद्ध हमें ठहर कर ये सोचने का मौका देता है कि हम अपने पूर्वजों से क्या लेकर आए और आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप रहे हैं। इसलिए श्राद्ध केवल किसी एक दिन का कर्मकांड नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और कृतज्ञ होना सीखने की परंपरा भी है। और शायद सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपने पूर्वजों को याद करने के साथ उनके अच्छे संस्कारों को अपने व्यवहार और जीवन में भी हम जीवित रखें, साथ ही साथ उन्हें भावी पीढ़ी तक भी पहुंचाते रहें। और वो जहां भी रहें, हमारे पूर्वज जहां भी हैं, उन्हें हम ये महसूस कराते रहें कि भाई तुमसे दूर रह के भी हमें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार याद आता है, हमें तुम्हारी याद आती है।

से दूर रह के। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे दोस्तों, अदालत फिल्म से। और देखिए, कुछ लोगों से दूर रह के तो हमें पता चलता ही है कि भाई वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ रह के, उनके पास रह के भी हमें ये पता चलता है कि भाई वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं। तो चलिए आपको इसी बात पर एक कविता सुनाती हूँ कि मैंने देखा अपनी माँ को, चाची को, सुबह सवेरे चुपचाप उठती हुई, धूप दीप से घर को महकाती हुई, रसोई से उठती तरह तरह की महक और अपने हाथों के जायके से सबकी थालियों में प्यार परोसती हुई। न कोई इत्र, न ज्यादा साज श्रृंगार, बस अपनी सादगी में मुस्कुराती हुई। लेकिन महसूस किया, आंका जाता है उन्हें अक्सर कामकाजी स्त्रियों से कम। जबकि वो एक दिन भी थक कर बैठ जाएं तो थम जाता है पूरे घर का जीवन। ये सब देखकर मैं मुस्कुराई और एक बात मुझे

आई कि वैसे तो सभी स्त्रियां अपने आप में बेहतरीन हैं और खास हैं, लेकिन घर संभालती हुई स्त्रियां भी बहुत अलग होती हैं और उनमें भी कुछ बात है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ना तो किसी को कम आंकना है और ना ही किसी को ज़्यादा आंकना है, क्योंकि हर पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वो अपनी अपनी पीढ़ी के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही हैं, चाहे वो बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाएं हों या फिर घर पर रहकर परिवार संभालने वाली महिलाएं।

आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सितंबर माह है उसको पोषण का महीना भी कहा जाता है, और साथ ही कुपोषण से जो लड़ाई है वो सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। पोषण की कुछ प्रेरक कहानियाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कही हैं, जो इसी सोच को मजबूत कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही कहानियों में पहली कहानी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का हर घर मुनगा अभियान लोगों को पोषक मुनगा यानी कि मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं मिजोरम में लोगों ने मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल का अभियान शुरू किया है, जो वहां की तलो मुड़यना यानी निस्वार्थ सेवा की परंपरा से जुड़ा है। और तकनीक भी इस लड़ाई में साथी बन रही है। पोषण ट्रैकर के जरिए आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी बेहतर देखभाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गुजरात में भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजन की प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से सस्ता और पौष्टिक भोजन हर घर हर थाली तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी शिक्षक, आंगनबाड़ी केंद्र के लोग और माता पिता भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। यानी कि संदेश जो है वो बहुत साफ है कि भाई कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो थाली से शुरू होती है और समाज की साझी भागीदारी से भी। तो आइए पोषण को सिर्फ एक महीने का अभियान नहीं बल्कि हर घर की रोजमर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो कोई भी खराब मौसम, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे हवाएं कितनी भी ठंडी क्यों ना चल रही हों।

0: समझा
1: समझा आ ठंडी हवा
0: आहा थम जा ऐ काली घटा।
2: श्रोताओं, हाथी मेरे साथी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और देखिए, स्वास्थ्य की बात चल रही है, पोषण का जिक्र हुआ है, तो एक बात आपसे पूछती हूँ कि भई ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सर्दी ज़ुकाम वायरल बुखार या गले में खराश हुई तो एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए? अगर हाँ तो ज़रा सा रुकिए, ठहरिए ठहरिए, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक जो है वो हर बीमारी की दवा नहीं है। ये दवाएं ख़ास तौर पर बैक्टीरिया से होने वाले कुछ जो संक्रमण हैं उनके इलाज के लिए उपयोगी होती हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि सामान्य सर्दी ज़ुकाम या फ्लू में एंटीबायोटिक आमतौर पर काम नहीं करती। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेना या बीच में ही दवा छोड़ देना नुकसानदेह हो सकता है। इससे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जिन पर जो दवाइयाँ हैं ना वो असर करना बंद कर देती हैं। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए हर बीमारी में खुद से एंटीबायोटिक लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लें और जितनी अवधि तथा जितनी मात्रा में आपको बताई जाए ना उतनी ही दवा लें। याद रखिए, सही बीमारी के लिए सही दवा ही समझदारी है। तो इतनी अच्छी जानकारी के बाद चलिए आपको सुनाती हूँ मैं चुप रहूँगी फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा।

दोस्तों, आपकी नज़र में समृद्धि क्या है? क्या सिर्फ बड़ा घर, महंगी गाड़ी और बैंक बैलेंस का नाम है? तो ज़रा रुकिए और सोचिए। अगर घर बड़ा है लेकिन उसमें साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है, बैंक बैलेंस अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य और सुकून नहीं है, तो क्या इसे पूरी समृद्धि कहेंगे? दरअसल समृद्धि का सच्चा मापदंड हमारी चीज़ों की संख्या नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता है। जहाँ परिवार में अपनापन हो, शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, जरूरतमंद के लिए मदद का हाथ हो और अपनी मेहनत से कमाई रोटी में संतोष हो, वही असली समृद्धि है। क्योंकि पैसा सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन विश्वास, रिश्ते, मान सम्मान और मन का जो सुकून है ना, वो कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए कभी जो आपकी समृद्धि है उसे गिने तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि ये भी देखिए कि आपके पास अपने कितने लोग हैं जिन्हें आपके व्यवहार से, आपकी बातों से और आपकी खुशी में खुशी मिलती है। क्योंकि असली दौलत तो यही है। और देखो ना, किसी ने कहा है कि भाई, तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरी बातें सैर करेंगी सूरज चांद सितारों तक। तो कहने की बात यह है कि भाई, अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि भाई, अगर कोई आपसे मिले तो आपसे मिलके बस वो एक यही बात कहे।

श्रोताओं, परिंदा फिल्म से अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। और सुनिएगा कि भाई हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है। बात कर रही हूँ अपनी महिलाओं की, अपनी बहनों की, कि हाथों में कलम के साथ मुझे चूड़ियों की खनक भी पसंद है, आगे बढ़ते कदमों में पायल की छनक भी पसंद है, माथे पर पड़ती शिकन के बीच बिंदी मुझे बहुत भाती है और आंचल पसंद है, आंखों में बड़े बड़े सपनों के साथ ही मुझे काजल पसंद है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल ठहरना पसंद है, खुद को देखना, महसूस करना और संवरना पसंद है। अब संवरने की बात दोस्तों इसलिए कि भाई जब हम संवरती हैं तो हम कॉन्फिडेंस में रहती हैं, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही साथ होता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में भी चार चांद लग जाते हैं।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो आजकल थोड़ा सा बदला बदला है, तो आप भी अपना और अपने घर के बच्चों का, बुज़ुर्गों का रखिए ख़ास ध्यान। और साथ ही आइए अब सुनते हैं घर आंगन कार्यक्रम की आज की ये अंतिम प्रस्तुति, ये प्यारा सा गीत दो रास्ते फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इस गीत के साथ ही, इस गीत को आप सुनते रहिए और इसके साथ ही मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना त्रिवेदी को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी

की है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है।

घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़ककर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The medal today in the women's 25 meter pistol individual competition. The 21-year-old shooter won the medal with 38 points to finish second. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower during the afternoon session. Today, the Sensex plunged 945 points to 72,952, while the Nifty tanked 299 points to 22,842 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 16 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कभी कभी सिनेमा की कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है। कुछ फिल्में प्रेम की कहानी कहती हैं, कुछ संघर्ष की, कुछ ऐसी होती हैं जिनका केंद्र बन जाता है एक ऐसा रिश्ता जिसके आगे दुनिया की हर दौलत छोटी पड़ जाती है, माँ और बच्चे का रिश्ता। जब हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ इमोशनल और फैमिली ड्रामा फिल्मों की बात होती है तो 1966 में आई एक फिल्म का नाम सबसे ऊपर आता है, एक माँ के त्याग, दर्द और निस्वार्थ प्रेम की ये वो अमर कहानी जिसमें सिनेमा घरों में हर दर्शकों की आंखें नम कर दी थी। तो चलिए आज हम इस फिल्म के हर पहलू को करीब से जानते हैं, इसके गीत सुनते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हमेशा की तरह। क्या करना है आपको? एक छोटा सा संदेश लिख के भेजना है। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com और आपको बता दूं कि आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूं।

आज हम चुनकर लेकर आए हैं 1966 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन दिल को छू लेने वाली फिल्म ममता, जिसका निर्देशन किया था असित सेन ने और निर्माता थे चारू चित्र। कहानी प्रसिद्ध लेखक निहार रंजन गुप्ता की थी और संवाद कृष्ण चंदर ने लिखे थे। फिल्म में सुचित्रा सेन ने दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल निभाया था, देवयानी और पन्नाबाई और सुपर्णा। उनके साथ अशोक कुमार ने मोनिश रॉय और धर्मेंद्र ने बैरिस्टर इंद्रनील का किरदार निभाया था। बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड का सफर, ये एक खूबी थी इस फिल्म में नजर आती है। ममता प्रसिद्ध बंगाली फिल्म उत्तर फाल्गुनी, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, इसकी हिंदी रीमेक थी। बंगाली फिल्म का निर्देशन भी महान निर्देशक असित सेन ने ही किया था और जब उन्होंने इसे हिंदी में बनाया तो ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। ममता 1966 में रिलीज हुई थी और उस वक्त की ये सुपरहिट फिल्म रही थी।

फिल्म ममता, इस फिल्म का जो असली दिल है जानती है वो कौन था? सुचित्रा सेन। उन्होंने फिल्म में माँ देवयानी और पन्नाबाई का और वहीं बेटी सुपर्णा की दोहरी भूमिका निभाई थी। एक वैश्या के घर में फंसी माँ जो अपनी बेटी को एक सम्राट समाज में बड़ा करने के लिए अपनी पहचान छुपा लेती है। सुचित्रा सेन की अदाकारी इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। उनके साथ हीरो की भूमिका में थे दृश्य हैंडसम से धर्मेंद्र जो कि वेरिस्टर मनीष रॉय के किरदार में थे, वहीं अशोक कुमार जो कि जासूसी एक वकील की भूमिका उन्होंने निभाई थी। धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। एक और देवयानी जिसके जीवन में संघर्ष है, त्याग है और अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम है। दूसरी ओर सुपर्णा, नई पीढ़ी की युवती जिसके जीवन की परिस्थितियां उसकी माँ के अतीत से जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा सेन ने इन दोनों जो कैरेक्टर थे इनके बीच भावनात्मक अंतर को अपने अभिनय से उभारा था। फिल्म की कहानी भी इसी वजह से और अधिक प्रभावशाली बनती है। ममता को अगर इसका संगीत ना मिलता तो शायद ये फिल्म अधूरी रह जाती। संगीतकार रोशन जी का संगीत और मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, रहे ना रहे हम महका करेंगे, आज भी हर किसी के दिल को छू जाते हैं। लता जी और मोहम्मद रफी साहब का गाना छुपा लो यूं दिल में प्यार अपना, ये गजल और सुगम संगीत इन दोनों का बेजोड़ संगम है। वहीं हेमंत कुमार की आवाज में ही छुपा लो यूं दिल को प्यार अपना जो इन्होंने गाया एक सोलो वर्जन, वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। चलिए सुनते हैं रहते थे कभी जिनके दिल में, लता जी की आवाज में।

जी हाँ, ममता की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी में नहीं बल्कि इसे संगीत में भी है। संगीतकार रोशन ने फिल्म के भावों को बहुत खूबसूरती से सुरों में ढाला और मजरू सुल्तानपुरी की शायरी ने उन भावों को शब्द दिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे और आज आपके लिए चुनकर लेकर आई हूं 1966 की सुपरहिट फिल्म ममता। ये फिल्म 1966 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इसे 14वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कई नॉमिनेशंस मिले थे जिसमें सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिला था।

फिल्म का सबसे बड़ा भाव था एक माँ का त्याग। देवयानी की जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक अपने सुख, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को पीछे रख सकती है। इसीलिए ममता का शीर्षक कहानी से पूरी तरह जुड़ जाता है। ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये सामाजिक परिस्थितियों, स्त्री के संघर्ष, रिश्तों की मजबूरियों और माँ के त्याग की कहानी है। तो ये थी फिल्म ममता। लेकिन ममता की कहानी शायद यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता है, जब तक प्रेम में त्याग है और जब तक पुरानी फिल्मों के गीत दिल को छूते रहेंगे, तब तक ममता जैसी फिल्में हमारे बीच जीवित रहेंगी। आपकी ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और वक्त हो रहा है कि हम उन संदेशों को भी शामिल कर लें। लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि आज स्वर्ण कोकिला लता जी की का जन्मदिन है और इस फिल्म में भी उन्हीं के गाए गीत हैं। उनके ऊपर एक खास कार्यक्रम भी आप सुनेंगे एक ही कलाकार में 2:30 पर। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में और उसके बाद आपके संदेश आप तक पहुँचाएंगे।

आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं। फरुख नगर हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिलीप भल्ला, शिवम वाजपेयी, सुरेश शर्मा, धर्मवीर जी, राजेंद्र शर्मा जी। अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है वो तेलंगाना निजामाबाद

से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संदेश है हमारे पास सैयद मसरूर शाइना हसन सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, और सुरेश गंगनेजा पूनम जी ये जलालाबाद वेस्ट से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत भापसर जी प्रमिला जी के साथ वीरंगाव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी सौरभ जी हमारे साथ हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। सुनील पाठक जी अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से, कमल पाठक गाविया मल्होत्रा के साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार देव डोनी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमछिम गुप्ता जी हमें सुन रहे हैं। समरपुर काकेट से फागुन राम यादव ज्योति ओजस्वी हमारे साथ हैं। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह तेजस्वी जस्सी सीता और गीता हैं। बटिंगेड़ा पंजाब से मिंचू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषा मोहन चिल्लू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। पोचियल कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शनवा सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर ज्योति मन्नत जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं, और ये संदेश ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से आया हुआ है। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल और प्रियल। अगला संदेश किसका है? छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल ईशान पूजा हमें सुन रहे हैं। सुधाकर राजे प्रशांत जी और पूरा परिवार देशमुख परिवार जो है वो हमारे साथ सुंदरनगर जालना शहर से जुड़ा हुआ है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं, और ये संदेश गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद कुमार डूंडी का है। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमें सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज और फरहीन जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास कुछ और भी संदेश आए हैं, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। फिलहाल ये एक और खूबसूरत सा गीत है लता जी की आवाज़ में।

यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से विनोद जी हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार शर्मा सूर्यनगर गाजियाबाद से हमें सुन रहे हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल जी हमारे साथ हैं, नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर निर्वला विशाल जी हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवा गोप प्रेम गोप कपिल जी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता जी का साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से आया हुआ है और ये संदेश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल्या और हेमलता जी का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज स्वर कोकिला लता जी के गीत और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आपके साथ हमारी अगली जो आरजे हैं वो रहेंगी, और 3 प्रोग्राम रहेगा मैचिनी मेलेडी जिसमें मैं आपके साथ रहूंगी। तो तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोता, हम आपको बता दें कि आज मैटिनी मेलोडीज में आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा, 3 बजे फिर मुलाकात होगी। विजेता जी आपके साथ जुड़ेंगी 2:30 पर। फिलहाल वक्त हो गया है, आप कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप जुड़े हुए हैं।
1: ओके, नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो बुलेटिन दियां खास खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लेन देन ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लाउन दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउन तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच विश्व आगुआ ने सिक्ख्या, हुनर, तकनालोजी अते रुजगार राही आलमी खुशहाली लियाउण लई वध रही नौजवान आबादी की समर्था उत्ते जोर दिता है। केंद्रीय किरत ते रुजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश विच 100 करोड़ तो वध लोकां नूं समाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। एशियाई खेडां च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी का तमगा जितया। भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल च पहुंची है। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सुप्रीम कोर्ट ने अज 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लेन देन उत्ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लाउन दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउन तो इनकार कर दिता है। यह फीस अगले महीने की 15 तरीक तो लागू होनी है। 2000 रुपए तो वध दे यूपीआई भुगताना उत्ते MDR लाउन दे फैसले नूं चुनौती देने वाली पटीशन उत्ते सुनवाई करदिआं अदालत ने कहा कि यह मामला कानूनी नालों वधेरे तकनीकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र अते होर धिरां नूं 4 हफ्तिआं दे अंदर जवाबी हलफनामा दाखल करन दे निर्देश दित्ते ने। भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मना रहा है। 28 और 19 सितंबर 2016 की रात नूं फौज ने कंट्रोल रेखा के पार दहशतगर्दां के टिकाणियां खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाइयां कीतियां सन। यह कार्रवाई 18 सितंबर नूं उड़ी दहशतगर्दी हमले तो बाद कीती गई सी, जिस विच 18 भारतीय जवान शहीद हो गए सन। इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति च तब्दीली की निशानदेही की। इस तो बाद 2019 च बालाकोट और 2025 च आपरेशन सिंदूर विच पाकिस्तान विरुद्ध कार्रवाइयां कीतियां गईयां। कल आकाशवाणी उत्ते प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 दे सर्जिकल स्ट्राइक नूं अहम प्राप्ति दस्या। उन्होंने कहा कि पिछले दहाके च दहशतगर्दी विरोधी भारत का नजरिया बदल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी हमलों के लंबे समय बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की फैसलाकुन कार्रवाई सी। उन्होंने 2008 विच दिल्ली च होए लड़ीवार बंब धमाकियां अते 26/11 दे मुंबई दहशतगर्दी हमलों नूं याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों नूं मरदमशुमारी लई समां कढ़न दी अपील कीती है। कल दे मन की बात प्रोग्राम दौरान दित्ते गए सद्दे नूं याद करदिआं श्री मोदी ने कहा कि मरदमशुमारी च हिस्सा लैणा सारे नागरिकां दा राष्ट्रीय फर्ज है। उन्होंने कहा कि यह हिस्सेदारी देश दे भविख दी सही तस्वीर पेश करदी है। अज तो शुरू होने वाली तजवीज़शुदा 3 दिन देशव्यापी बैंक हड़ताल रद्द कर दित्ती गई है। आल इंडिया बैंक इंपलॉयज एसोसीएशन ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला इंडियन बैंक्स एसोसीएशन नाल होए समझौते तो बाद लिया गया है। इसने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा है कि हड़ताल रद्द करने का फैसला कल रात इंडियन बैंक्स एसोसीएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस विचकार हड़ताल नाल संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने लई हुई मीटिंग तो बाद लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की 11वीं सालाना मीटिंग AIIB निवेशक संवाद 2026 हिस्सा लैण लई कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए ने। दुनिया भर के मैंबर वफद नीति घाड़े और होर संबंधित धिर इस सालाना मीटिंग च इकट्ठे होकर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की रणनीतिक दशा, संचालन संबंधी तरजीह भविख के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा विच विश्व आगुआ ने सिक्ख्या हुनर तकनालोजी अते रोजगार राही आलमी खुशहाली नूं अगे वधाउण च वध रही नौजवान आबादी की समर्था नूं उजागर कीता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दित्ती कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI च तेजी नाल हो रही तरक्की ना बराबरी नूं वधा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि AI मनुख की मजबूती अते आर्थिक खुशहाली लई बल्लाकारी ताकत बन सकती है। उन्होंने चेतावनी भी दित्ती कि इसकी दुरवरतों पक्षपात नूं होर डूंघा कर सकती। उन्हां जोर दे के कहा कि देशां नूं अपनियां कौमी तरजीहां दे मुताबक AI दे माडल विकसित करन दी आजादी होनी चाहीदी है। इंडोनेशिया दे विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि लचकीलापन उदों शुरू हुंदा है जदों परिवार अपना गुजारा चलाउण दे समर्थ हुंदे ने, काश्तकार अनाज पैदा करदे ने ते बच्चियां नूं सिखण ते अपना भविख बनाउण दे मौके मिलदे ने। दक्षिणी कोरिया दे राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने कहा कि AI दी क्रांति ना बराबरी नूं वधाउण अते नौजवान पीढ़ी च चिंता वधाउण दा खतरा पैदा करदी है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, ते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। किरत अते रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अज कहा है कि देश विच 100 करोड़ तो वध लोकां नूं समाजिक सुरक्षा दा लाभ मिल रहा है। इस विच 60 करोड़ तो वध नागरिकां लई 5 लाख रुपए की सेहत सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोकां लई ESIC सेहत सुरक्षा, 80 करोड़ तो वध लोकां नूं मुफ्त अनाज अते किसानां ते औरतां नूं वित्तीय सहायता शामिल है। वह नवी दिल्ली च करवाए उद्योगिक संबंधां अते किरत ते पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन नूं संबोधन कर रहे सन।
2: हम 25 करोड़ लोगों को ESIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000 1500 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: उन्होंने सारे हितधारकों नूं 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन लई मिलके काम करन दा सद्दा दित्ता। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह दी 119वीं जन्म वरेगंढ मना रहा है। 1907 विच अज दे ही दिन भगत सिंह दा जन्म आण वंडे पंजाब दे लायलपुर जिले दे पिंड बंगा च श्रीमती विद्यावती अते श्री कृष्ण सिंह दे घर होया सी। भगत सिंह दा जन्म क्रांतिकारियां दे परिवार च होया सी अते ओह 7 भैण भरावां विच दूजे स्थान ते सन। उन्हां नूं प्यार नाल भागां वाला कहा जांदा सी। उन्हां ने राजगुरू जी अते सुखदेव जी दे नाल देश लई अपनी कुरबानी दे के अपने इस प्यार दे नां नूं सार्थक करता। उन्हां दा जन्मदिन मनाउण लई अज दोपहर बाद लुधियाणा च पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी च जश्न ए इनकलाब नां दा सूबा पद्धरी सभ्याचारक प्रोग्राम करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आजादी घुलाटिए शहीद भगत सिंह नूं उन्हां दी जन्म वरेगंढ उत्ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भगत सिंह ने अदुत्ती हिम्मत अते बहादुरी नाल आजादी अंदोलन च नवी ऊर्जा दा संचार कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने भी शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है। फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU च करीब 24 घंटिया तक चले तनाव तो बाद पंजाब पुलिस ने देर रात स्थिति ते काबू पा लिया है। रोस मुजहरा कर रहे विद्यार्थियों नूं हाईवे ते हटाए जान मगरों आवाजाई भी सुचारू हो गई है। विद्यार्थी कुछ दिन पहला यूनिवर्सिटी कैंपस विच एक विद्यार्थन नाल कथित जबरदना की घटना संबंधी यूनिवर्सिटी प्रबंधकों वालों कार्रवाई न किए जाने के विरोध च रोस मुजहरा कर रहे सन। इस दौरान कैंपस विच भनतोड़ की गई, पुलिस मुलाजमान ते पथराव होया, पुलिस की गड्डियां नूं भी नुकसान पहुंचाने के नाल नाल वाहनों नूं अग लाई गई सी। इस संबंध विच पंजाब पुलिस दे मुखी श्री गौरव यादव ने दस्सिया कि
3: एक गल होर कहना चाहांगा कि यह जिहड़ी साडी FIR दर्ज हुई है, साडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो हूएवर इज इन्वॉल्वड इन द इंसीडेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स उन्होंने खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाऊगा। कोई वड्डे तो वड्डा बंदा भी हैगा, वो भावे यूनिवर्सिटी प्रशासन तो है भावे कोई बंदा हैगा, वी विल इन्वेस्टिगेट इट इन अ प्रोफेशनल मैनर, थोनू सारा कुछ दसांगे।
1: जापान विच एशियाई खेडां च भारत दी ईशा सिंह ने महिलावां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी दा तमगा जित्तिया है। पिंकी बलहारा ने औरतां दे अंडर 78 किलोग्राम भार वर्ग दे कुराश मुकाबले विच कांसी दा तमगा हासिल कीता है। भारत दी मर्दां दी क्रिकेट टीम एशियाई खेडां दे सैमीफाइनल च पहुंच गई है। एक बार खास खबर फिर सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यापारी यूपीआई लेन देन उत्ते मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लाउन दे केंद्र सरकार दे फैसले उत्ते रोक लाउन तो इनकार कर दिता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा च विश्व आगुआ ने सिक्ख्या हुनर तकनालोजी अते रोजगार राही आलमी खुशहाली लियाउण लई वध रही नौजवान आबादी दी समर्था ते जोर दिता है। अते एशियाई खेडां च भारत दी ईशा सिंह ने औरतां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले चांदी दा तमगा जित्तिया। इहदे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशिक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमन अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिस करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजव्वजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिदे आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई है। निफ्टी भी 299 पॉइंट नीचे आ गया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी बाज यूपीआई लेन देन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई अदायगी पर एमडीआर नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दीगर मुतालिका फरीकों को हिदायत दी है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की मुजव्वजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। भारतीय बैंकों की एसोसिएशन आईबीए के साथ समझौता होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैसला कल रात भारतीय बैंकों की एसोसिएशन और 7 बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम के दरमियान हड़ताल से मुतालिक मामलात पर मीटिंग के बाद किया गया। इससे कबल बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम और सरकारी मिल्कियत के बैंकों की बाज़ दीगर यूनियनों और अंजुमनों ने 28 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 3 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम हुई थी। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की थीं। उरी में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बराह रास्त और फैसलाकुन फौजी कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। उरी के हमले में 19 भारतीय फौजियों की जान गई थी। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संग मील करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कंट्रोल लाइन के उस पार कार्रवाई अंजाम देने में भारतीय फौज का रोल उजागर हुआ।
5: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
4: मेहनत और रोजगार के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को समाजी तहफ्फुज के दायरे में लाया गया है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए 5 लाख रुपए का सेहत से मुतालिक कवरेज, 25 करोड़ अफराद के लिए ईएसआईसी के तहत सेहत की देखभाल की यकीनी फराहमी, 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त अनाज और किसानों खवातीन को माली मदद शामिल है। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में सनअती राबतों और लेबर और

0: अवार्ड से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
1: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में एक चलती बस में एक नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई आबरूरेजी का ये कहते हुए अपने तौर पर नोटिस लिया है कि इस तरह के वाकयात से कानून नाफिज करने वाले हुक्काम की नाकामी उजागर होती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि नाकाफी रोशनी, खराब निगरानी और दीगर जरूरी इंतजामी सहूलियात के फुकदान की वजह से पार्कों और बसों समेत अवामी मकामात को बड़े खतरे वाले जोन नहीं बनने दिया जा सकता। गुज़श्ता महीने 16 साल की एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक स्लीपर बस में सवार हुई थी जिसकी बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मुबैना आबरूरेजी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गंगटोक, सिक्किम और लोहगोम्पा त्वांग अरुणाचल प्रदेश से तलबा के ग्रुपों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तलबा कौमी यकजहती टूर के हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुल्क आज अजीम इनकलाब पसंद शहीद आजम भगत सिंह का 119वां यौम पैदाइश मना रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव में पैदा हुए जो अब पाकिस्तान में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भगत सिंह की गैर मामूली शुजात और बहादुरी ने आजादी की तहरीक में एक नई जान फूंकी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि तलाक सलासा के कानून से किस तरह मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में तब्दीली आई है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में उम्मीद और सलामती का एहसास लाने के लिए काम किया है, जिन्हें तीन तलाक या तलाक सलासा के रिवाज के वजह से दुश्वार हालात में छोड़ दिया गया था। तलाक सलासा के खिलाफ कानून बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि सियासी कुव्वत इरादी के साथ कानून के जरिए उन समाजी रस्मों रिवाज पर तवज्जो दी जा सकती है जिनका लोगों पर नामुआफिक असर पड़ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मजकूरा कानून भारतीय आइन के ऐन मुताबिक मुस्लिम खवातीन को बराबर के हुकूक देता है। कानून बनने के बाद से साल के दौरान तलाक़े सलासा के मामलात में 80% से ज़्यादा की गिरावट देखने में आई है। तीन तलाक की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत मुस्लिम खवातीन को कानूनी तहफ्फुज मिल गया है, जो इससे पहले समाजी दबाव की वजह से खामोशी इख्तियार किए रहती थी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में मुल्क के शेयर बाजारों में तकरीबन 1.3% की गिरावट देखने में आई है। सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72972 पर आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 299 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22842 पर आ गया। एशियन गेम्स 2026 में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल इनफरादी मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने चांदी का तमगा जीता। 21 साल निशानेबाज ने 38 पॉइंट्स के साथ दूसरा मकाम हासिल किया। भारतीय एथलीट पिंकी बालहारा ने खवातीन के अंडर 78 किलोग्राम के कुराश मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की लिम गाराम को 3-0 से हराया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों के मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद

आजादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री।

0: ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
2: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
2: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
2: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
1: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
5: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
5: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता और कैलकुलेशन चालू करा, तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी

0: की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
1: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819

श्रोताओं, कहते हैं कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो दिल में उतर जाती हैं। कुछ आवाज़ें सिर्फ गीत नहीं गाती, वो किसी दौर की पहचान बन जाती हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही हमारे सामने एक पूरा भारत, एक पूरा बचपन और यादों की पूरी दुनिया जीवंत हो जाती है। आज एक ही कलाकार में हम बात करेंगे सुर सम्राज्ञी की लता मंगेशकर जी के बारे में, क्योंकि आज हम उनकी बना रहे हैं जन्म जयंती कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारे से नगमे के साथ।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बात हो रही है लता मंगेशकर की, जिन्हें प्यार से लता दीदी, स्वर कोकिला और मेलोडी क्वीन जैसे नाम दिए गए। हालांकि उनके बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन आज क्योंकि उनकी जन्म जयंती है तो आइए उनको याद करते हैं। करीब 8 दशकों तक फैले उनके संगीत सफर ने भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई पहचान दी। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेमिसाल रहा। 36 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और इनमें कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल थीं। लेकिन जिस आवाज को बाद में पूरी दुनिया ने सिर आंखों पर बैठाया, उस आवाज के पीछे संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जो कम उम्र से शुरू हो जाती है। लता मंगेशकर का

28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत गायक होने के साथ साथ रंगमंच से भी जुड़े थे, इसलिए लता जी के लिए संगीत कोई बाहर से आया हुआ शौक नहीं था, संगीत उनके घर की सांसों में था। उनके पिता ही उनके शुरुआती गुरु बने और लता का मूल नाम अगर जाना जाए तो वो हेमा रखा गया था। बाद में उनके पिता ने नाटक के एक किरदार से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया था। लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके परिवार में आगे चलकर आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना खाडीकर और हृदयनाथ मंगेशकर जैसे कलाकार भी हुए। यानी मंगेशकर परिवार भारतीय संगीत की दुनिया में अपने आप में एक संस्था बन गया। लता ने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अपने पिता से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। बचपन में वो अपने पिताजी के नाटकों में अभिनय भी किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनका असली रास्ता अभिनय नहीं बल्कि संगीत है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, बात हो रही है लता मंगेशकर जी की। साल 1942 का वक्त आया। लता की उम्र उस समय सिर्फ 13 वर्ष थी। इसी उम्र में उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। एक किशोरी के सामने जब सिर्फ अपना भविष्य बनाने की चुनौती नहीं थी बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई थी। लता ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अभिनय भी किया और गायन भी किया। 1942 में उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला मौर में अपना अभिनय किया और इसी दौर में उन्होंने मराठी फिल्म कीति हसाल के लिए अपनी शुरुआती गीत रिकॉर्ड करवाया। ये वही समय था जब एक किशोरी धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश कर रही थी जहां आगे चलकर उसका नाम इतिहास में लिखा जाना था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी।

आज जिस आवाज़ की दुनिया के सबसे महान आवाज़ों में गिना जाता है, उसे शुरुआती दौर में आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। उस समय फिल्म संगीत में कुछ अलग आवाज़ों का दौर था। उस समय शमशाद बेगम और सुरैया का दौर था और लता जी की आवाज़ अपेक्षाकृत पतली मानी जाती थी। कई लोगों को लगता था कि उनकी आवाज़ में फिल्मों के लिए गीत उपयुक्त नहीं होंगे, लेकिन यही लता मंगेशकर की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दें। लता जी ने अपनी आवाज़ को बदलने की बजाय उसे तराशा। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गहन अभ्यास किया। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से भी संगीत की शिक्षा ली और फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ ने अपना एक अलग स्वरूप ले लिया।

0: कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें

0: 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, बात हो रही है लता मंगेशकर जी की और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ आज कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, 1940 के दशक के मध्य में लता मंगेशकर का परिवार मुंबई आ गया। लता जी ने हिंदी फिल्मों में प्लेबैक गायन शुरू किया और फिर 1949 में आई फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उनकी आवाज को देश भर में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गीत सिर्फ एक लोकप्रिय गीत नहीं था, ये उस दौर का एक ऐसा मोड़ था जिसने फिल्म संगीत में महिला आवाज की नई ध्वनि को स्थापित किया। इसके बाद लता मंगेशकर की आवाज लगातार बड़े संगीतकारों और बड़ी फिल्मों से जुड़ती गई। अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाने वाली लता मंगेशकर की एक खास आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग के लिए जब भी स्टूडियो में घुसती थी तो चप्पल बाहर ही छोड़ा करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टूडियो को हमेशा एक मंदिर का दर्जा दिया। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में हजारों गीत रिकॉर्ड किए और कई पीढ़ियों को अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। मधुबाला से लेकर नरगिस, मीना कुमारी, वैजयंती माला, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा श्रीदेवी और बाद की भी अन्य पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की वो आवाज बने। यही कारण था कि लता की आवाज सिर्फ एक गायिका की आवाज नहीं थी। लता मंगेशकर जी ने भारतीय फिल्म संगीत के लगभग हर बड़े दौर को अपनी आवाज दी। उन्होंने नौशाद, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, सलिल चौधरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन और बाद में एआर रहमान जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया और मदन मोहन जी के साथ तो उनका सहयोग विशेष रूप से याद किया जाता है। लता मंगेशकर जी की अगर पुरस्कारों की बात करेंगे तो सूची बहुत ही लंबी है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रुता, उनकी अवार्ड्स और पुरस्कारों की अगर सूची की बात करेंगे तो कार्यक्रम भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन कुछ सम्मान ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से याद किया जाना चाहिए। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और फिर आया साल 2001, जब भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न प्रदान किया। भारत रत्न की आधिकारिक अधिसूचना में लता दीनानाथ मंगेशकर का नाम कला संगीत के क्षेत्र में दर्ज है। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। उन्होंने 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार भी जीते और बाद में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित हुई। उन्हें फ्रांस का प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान भी मिला, यानी सम्मान भारत में भी और भारत के बाहर भी। लता मंगेशकर के करियर का एक दिलचस्प पक्ष ये भी है कि उन्होंने एक समय फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार की प्रतियोगिता से खुद को अलग कर लिया था ताकि नई पीढ़ियों को, नई गायिकाओं को आगे आने का अवसर मिले। ये कदम उनके लंबे करियर में एक अलग पहलू को सामने लेकर आता है। वो सिर्फ अपनी उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जगह बनाने की बात करती थी।

और इसी बीच हमारे श्रोता भी हमसे जुड़ गए हैं व्हाट्सएप संदेश, इन संदेशों के माध्यम से। तो आइए सुन लेते हैं, देखते हैं सबसे पहला संदेश हमारे पास किसका आया है। तो ये हमारे पास संदेश है धर्मेंद्र छीपा जी का, और लिखते हैं कि आज कार्यक्रम में पार्श्व गायिका स्वर कोकिल लता मंगेशकर जी के बारे में बात हो रही है। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं हमारे श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार साथ में जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती।

अरोड़ा, पहाड़गंज, मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और तुलसी मस्कीन जी का संदेश है, बीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं, शांति नगर सोनीपत से, और अजीत भवसार जी का भी संदेश आया है, बहुत लंबा संदेश है, उसको हम नहीं पढ़ सकते। वीरम गांव गुजरात से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नुहावकर, निर्मला और विशाल नुहावकर भी जुड़ रहे हैं।

श्रोता लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। जब कोई पुराना गीत बजता है तो सिर्फ संगीत नहीं बजता, उसके साथ एक दौर लौटता है। किसी को अपना बचपन याद आता है, किसी को अपनी पहली मोहब्बत। ऐसा था लता मंगेशकर की आवाज का जादू।

तो इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को अब करते हैं यहीं पर समाप्त, और अगले कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने आ रही हैं गोल्डन एरा के कुछ गीत लेकर अंजू पांडे।

जी, आपने बुलाया और हम चले आए। प्रोग्राम जिसका नाम है मैटिनी मेलोडीज। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो चलिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे भारतीय सिनेमा का जो गोल्डन युग था, उस युग के कुछ चुने हुए गीत। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही गीत लेकर आए हैं, और साथ ही साथ आपके लिए एक सवाल भी हम लेकर आए हैं। तो वो सवाल कौन सा है, वो तो आपको इस गीत के बाद पता चल जाएगा। आप कागज़ और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपको देना है। और जवाब आपको सूझ जाए तो आपको भेजना है मेल पर, मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। तो अब शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है मदन मोहन जी ने, माफ़ कीजिएगा, लता जी ने। और इस गीत का आनंद लीजिए, उसके बाद आगे की बात।

जी, हम तो आपको रोज ही बुलाते हैं, तो आप में से कुछ लोग तो रोज आते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आए और जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब भी झटपट हम तक पहुंचा दें। तो आप तैयार है ना? चलिए आपसे पूछती हूँ मैं आज का सवाल। ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई थी? ये है आज का सवाल। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की, ध्यान से सुनिएगा, पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई है? तो जल्दी से आप अपने जवाब हमें मेल के जरिए भेज दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल आशा जी की आवाज़ में ये अगला नगमा।

आजादी मिलते ही हिंदी सिनेमा ने एक बड़ा बदलाव देखा और एक आधुनिक स्वतंत्र भारत के रूप में अपना सफर शुरू किया। 1950 के दशक की शुरुआत में फिल्म निर्माता भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थे और वो विचारधारा आजादी के शुरुआती वर्षों में बनी फिल्मों में आपको साफ झलकती है। नया दौर, दो बीघा जमीन जैसी बड़ी हिट फिल्में रही और दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी और इन फिल्मों ने खींचा। सिर्फ इन फिल्मों के स्टार कास्ट की वजह से ही नहीं बल्कि इनमें दिखाए गए सरल किरदारों और कथानकों ने भी उन्हें रातों रात हिट बना दिया। इनकी लोकप्रियता और जुड़ाव भारत और विदेश दोनों ही जगह इतनी ज्यादा रही कि आज भी लोग इन फिल्मों को याद करते हैं। हमने इसी तरीके से आपसे एक सवाल पूछा कि ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई थी। अब आप लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना कि ढेर सारे सवाल जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब हम तक पहुँच गए और वो भी बिल्कुल सही सही। तो चलिए अभी हम सवाल का जवाब नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अभी शायद सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्निक इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि आप तुरंत हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। फिर भी उन लोगों के नाम हम ले ही रहे हैं जिन्होंने सही जवाब भेजा है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, डब्बू चैतन्य और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित जी हैं। लेकिन अभी आपने इस हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन आपका मेल हम तक पहुंच गया था इसलिए हमने शामिल कर लिया है। सबसे पहले जवाब हमारे पास पहुंचा है अजीत भापसर जी का जो विरंगा गुजरात से प्रमिला जी के साथ हमारे साथ शामिल है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवंगन, कौशल्या और हेमलता जी डिंपल जी के साथ हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश यह हमारे पास गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार ढूंढी प्रमोद कुमार ढूंढी ने भेजा है और लीजिए हमने कहा और तुलसी जी ने हमें सही जवाब भेज दिया है हमारे जो सवाल था। उसके बाद राजकोट से जैमिन जैन जी हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। लुनकरन सर बीकानेर राजस्थान से राजू राजेश कुमार मंडावरा जी हमारे साथ हैं और अगला संदेश हम तक पहुंचा है सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी का शांति नगर सोनीपत से। ये संदेश हमारे पास आया है, ये है हमारे साथ सही जवाब के साथ भोपाल से प्रीति मालवीय, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ और भी संदेश हम तक पहुंच रहे हैं तो जो सवाल हमने पूछा है उसका जवाब अगर आपको आता है तो जल्दी से हमें हमारे मेल पर भेज दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और शारदा जी की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म सीमा से।

राज कपूर साहब को भारत का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है और ये बिल्कुल सही भी है। निर्देशक के रूप में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी। श्री 420, अनाड़ी, आवारा ऐसे फिल्में हैं जो सदाबहार गीतों के साथ साथ राज कपूर और नरगिस की दमदार जोड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की जो कहानियाँ थीं वो एक अलग हटकर होती थी। कल्पना कीजिए 1950 के दशक में जब हमारा देश अभी युवा था, तब नकली दवाओं के वितरण, संपत्ति विवादों जैसे जो मुद्दे थे उन पर कई सारी फिल्में बनी जिन्हें आजकल हम शायद ही देख पाते हैं। गुरुदत्त, बिमल रॉय और महबूब खान को भी हम उतना ही सम्मान देंगे, उतनी ही उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने इस तरीके के जो विषय थे उन पर फिल्में बनाने की सोची। आपके सवाल, हमने जो सवाल पूछा उसके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल हो गया है। ये है योगेंद्र नायक जी और इनके साथ गीता नायक, ये कासगंज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऊपरकोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज सरफराज परिवार के सभी सदस्य हैं, लेकिन हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आपने हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं भेजा है। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ हैं और ये हैं सूरत से अदिति शाह। क्या बात है, सही जवाब आपने भेजा है अदिति जी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी के भी जो जवाब हैं वो हम तक पहुंच जाएं। अगला गीत हमने चुना है काला पानी फिल्म से आशा जी की आवाज़ में। एक बार फिर हम अपना सवाल दोहरा देते हैं। ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गांव की कहानी दिखाई गई थी।

हमारा हिंदी फिल्मों का जो गोल्डन इरा है वाकई कमाल का है, और शायद ये वक्त दोबारा से ना आ पाए, क्योंकि उस वक्त की जो फिल्में थी, नायक थे, अदाकारा थी, संगीतकार थे, उनमें एक अलग ही जादू था और वो जादू आज भी बरकरार है। अब देखिए ना, आप ये जो गीत सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सीधे दिल में उतर रहे हैं। यही तो खासियत है इस युग की। इस दौर को भारतीय सिनेमा का सबसे रचनात्मक और बेहतरीन समय कहा जाता है, क्योंकि इसमें कला, समाज और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला था। आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और इंतजार हम करते हैं, तब तक एक और खूबसूरत सा गीत आशा जी की आवाज में।

मोक्ष भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही जवाब के साथ। तो अब वक्त हो गया है कि आपको हम बता दें कि आज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब क्या था। आपने जितने भी लोगों ने जवाब दिया सभी के जवाब बिल्कुल सही है। हमारा सवाल था ऑस्कर तक पहुंचने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें एक माँ के संघर्ष और गाँव की कहानी दिखाई गई थी। जवाब है, जैसा कि आप सबने दिया, मदर इंडिया। जी हाँ, 1957 में रिलीज फिल्म मदर इंडिया, इसको जिसको निर्देशित किया था महबूब खान ने और इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया था और ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसे नॉमिनेशन मिला था। तो चलिए अब चलते चलते आपको हम बनाडे की आवाज़ में इसी फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं और अब अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को भी अनुमति दीजिए। लेकिन हाँ, भूलिएगा मत, 30 तारीख यानी कि परसों आपकी और मेरी मुलाकात एक बार फिर होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपनी यादों में बसाए रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम रूबरू। सामईन एक उस्ताद मुआशरे का वो मेमार है जो न सिर्फ इंसान को पढ़ना लिखना सिखाता है बल्कि उसे ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाता है। किसी भी कौम की खुशहाली और तरक्की का दारोमदार उसके असातज़ा पर होता है। एक उस्ताद किसी इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। उस्ताद वो शमा है जो खुद पिघलकर दूसरों की जिंदगियों को रोशन करती है। दुनिया का कोई भी शोबा हो, वो साइंस हो, मईशत हो या अदब हो, हर शोबे में हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी उस्ताद की मेहनत और तरबियत कारफरमा होती है। इल्म और अदब का संगम एक ऐसी ही शख्सियत में देखने को मिलता है जो बैक वक्त इल्म की शमा भी रोशन किए हुए हो, तनकीद निगार भी हो और शेर व सखन में भी माहिर हो। सामीन, आज रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करा रहे हैं। आप हैं प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद। आपसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शफी अय्यूब।
1: आज एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद अपने अफसानों के हवाले से, अपनी नज़मों के हवाले से, अपनी तनकीद के हवाले से मुल्क भर में जाने और पहचाने जाते हैं। दरभंगा जो मिथिला का इलाका है, जो मखाने के लिए जाना जाता है, बहुत ही लजीज मालदे आम के लिए जाना जाता है, उस दरभंगा में एक छोटे से गाँव में आपकी पैदाइश हुई थी और उसके बाद आला तालीम हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और कुछ ज़माने तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद ने तदरीसी खदमात भी अंजाम दी हैं। उसके बाद सन 2002 में वो मुल्क की मायानाज यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें आप तदरीसी खदमात अंजाम दे रहे हैं, वहाँ बतौर प्रोफेसर और अब सदर शोबे उर्दू की हैसियत से अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हमजहत कहते हैं, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसमें बड़ा तनव्वो हो, रंगारंगी हो, ऐसी शख्सियत है प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद की। आज उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद साहब, आपका इस्तकबाल है।
2: बेहद शुक्रिया शफी अय्यूब साहब।
1: मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का आगाज, जैसे मैं आपके जब भी कहता हूँ कि चार शहरों ने आपकी आबियारी की है, यानी उन्होंने आपकी परवरिश की है, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम के बारे में ज़रा।
2: बहुत सही फरमाया आपने। मेरी पैदाइश दरभंगे में हुई और पूरा बचपन और नौजवानी का अरसा कहिए देवबंद में गुजरा
1: जी।
2: तो गांव में पैदा होने के बाद जाहिर है कि जो हमारे दोस्त अहबाब थे
1: जी
2: वो कम थे, वहाँ दूसरी जगहों पर ज़्यादा थे। गाँव से हमारा ताल्लुक हमेशा बना रहा
1: जी
2: और शुरू से अब तक वहाँ हम आते जाते रहे, वहाँ के लोगों से मिलना मिलाना यह सब कुछ होता रहा। देवबंद में हम लोग तालीम की अलिफ भी हमने वहीं से शुरू की,
1: देवबंद से
2: शुरू की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हमने दरभंगा से दिया, उसके बाद बीए में एडमिशन लिया हमने वहाँ 1987 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से हमने ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की, एमफिल किया, पीएचडी की और तकरीबन 1.5 साल तक वहाँ तदरीसी खिदमात अंजाम दी।
1: बस अब अलीगढ़ तो अपने आप में एक दुनिया है, बड़ी खूबसूरत जगह है। आप किस हॉस्टल में रहते थे अलीगढ़ में आप तालिब इल्मी के ज़माने में?
2: जिस हॉस्टल में हम रहते थे वो बिल्कुल समझिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबसे तारीखी हॉस्टल था। अच्छा। सर सैयद हॉल साउथ कहलाता था, शिफाउल मुल्क अब्दुल लतीफ हॉस्टल, उसमें हम रहते थे और ये बिल्कुल विक्टोरिया गेट से ऊपर था ये हॉस्टल। वहाँ का तरीक़ा कार यह था कि हर कमरे में मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लोगों को रखते थे, मुख्तलिफ जगहों के लोगों को रखते थे। मसलन हमारे कमरे में 4 लोग होते थे, एक सीनियर पार्टनर होता था जो अकेले एक कमरे में रहते थे
1: जी।
2: हम उर्दू के थे, एक इकोनॉमिक्स के थे, एक लॉ के थे, एक लाइफ साइंस के थे और एक बीयूएमएस कर रहे थे। इत्तेफाक से कोई बिहार का था, कोई मणिपुर का था, कोई हिमाचल का था, एक और शायद उत्तराखंड के थे। उससे फ़ायदा ये होता था शफी अय्यूब साहब कि हर 5 आदमी 5 सब्जेक्ट का इल्म हो जाता था उसको और 5 जगह की तहजीब, 5 जगह के कल्चर,

0: जहन सरा इस तरफ आया कि नहीं मुझे अफसाने लिखने चाहिए लिखने। और उसके बाद हमने अफसाने लिखने शुरू किए।
1: जो तख्लीकी जहन के लोग रहे, शायर रहे या अफसाना नगार रहे, तनकीद की गिरफ्त में आए तो वो अपनी तख्लीकियत भूल गए या उस पर कम ध्यान दिया। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर आले अहमद सुरूर साहब, बड़े अच्छे शायर लेकिन नक्कात की हैसियत से जाने जाते हैं। प्रोफेसर शमीम हनफी, बड़े अच्छे शायर लेकिन नक्कात की हैसियत से जाने जाते हैं। शमसुर्रहमान फारूकी भी शायरी करते थे लेकिन शायर की हैसियत से शोहरत नहीं है। आप खुद नक्कात भी हैं, तो आपकी तनकीद ने आपकी इस तख्लीकी सलाहियत को कहाँ कहाँ और कैसे मुतासिर किया है?
0: ज़ाहिर है जब तनकीद आप लिखने लगते हैं तो तख्लीक की तरफ से तकरीबन हट जाते हैं। तनकीद लिखने का मतलब यह है कि फिर आपने जब इस तरह के मजामीन लिखने शुरू किए तो आपकी बहुत सी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। सेमिनार हैं, रसायल हैं, फिर फरमाइशी मजमून लिखना पड़ता है, सेमिनार के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तो तख्लीकी काम तो इसे मुतासिर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि तख्लीक से नक्काद को ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो नक्काद ज़्यादा बेहतर हुए हैं जो तख्लीककार हैं। ये मंटो से शुरू करके देख लीजिए आप, जब असमत चौगताई का अफसाना लिहाफ आया तो मंटो से मिलने गई वो। मंटो ने कहा कि आपका अफसाना बड़ा अच्छा है लेकिन उसमें आखिरी जुमला जो है कि कोई मुझे लाख रुपये भी दे तो मैं ये ना बताऊं कि मैंने लिहाफ के अंदर क्या देखा, इसको अगर आप हटा दें तो आपका अफसाना बहुत अच्छा होगा। असमत चौगताई को उस वक्त ये बात बुरी लगी क्योंकि उन्होंने अफसाना लिखा था, अफसाना निगार को अपना एक एक लफ्ज प्यारा होता है, तो उनको लगा ये तो गैर जरूरी बात कह रहे हैं मंटो। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ तो वो अब जो हम अफसाना पढ़ते हैं लिहाफ, तो उससे वो जुमला हटा हुआ है। और सही बात यह है कि उस जुमले के खारिज करने के बाद ही वो अफसाना लिहाफ लिहाफ बना है। सैयद मोहम्मद अशरफ की भी बाज़ तनकीदी तहरीर पढ़ करके देख लीजिए, या मुमताज शीरीन थी, या इस तरह खुद प्रोफेसर मोहम्मद हसन, शमसुर्रहमान फारूकी, तो इनको तनकीद की वजह से तख्लीक इनकी मुतासिर हुई होगी, बिना शुबा हुई होगी, लेकिन तख्लीक से इनकी तनकीद को फ़ायदा बहुत हुआ। और मेरे ख्याल से शमसुर्रहमान फारूकी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो बेसिकली तख्लीक निगार थे। उनकी बारीकियों से जो आदमी अच्छी तरह वाकिफ हो तो उनकी तनकीद तो अच्छी होगी, क्योंकि तनकीद का तमाम तर दारो मदार तख्लीक पे ही होता है। तो मुझे भी लगा कि तख्लीक जो हमने शुरू में की अफसाने के हवाले से, नज़में तो खैर बाद में लिखनी शुरू की, तो उसका मुझको फ़ायदा हुआ तनकीद लिखने में और काफ़ी मदद मिली। तो यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को नई जहत से देखूँ।
1: आपकी किताब है नज़माने, अब ये सब कुछ चौंकाने वाली किताब है, इसलिए कि एक तो अफसाने या नज़्म, और नज़्म और अफसाने को मिला के आपने एक नई चीज़ बनाई नज़माने, तो एक नया तजर्बा भी है। ये नज़माने क्या है और ये कैसे ख्याल आया आपको?
0: जी हाँ, असल में ये हुआ कि इस तरह की इस्तिलाहात साजी का ज़माना है, लोग करते रहते हैं। जैसे फिक्शन की तनकीद को लोग क्रिक्शन कहने लगे, यानी क्रिटिसिज्म और फिक्शन। नज़माने जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जितनी नज़में आप पढ़ेंगे, छोटी हो या बड़ी हो, तो उसमें एक अफसाना आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि नज़्म प्लस अफसाने, तो नज़माने कर दें, इसीलिए हमने इसका नाम नज़माने रखा। और मेरे जहन में ये आया कि ये नाम आमतौर से इस तरह का रखते नहीं हैं लोग, और आप देखेंगे कि उसमें जितनी नज़में हैं उसमें कोई ना कोई अफसाने की खूबू आपको ज़रूर मिल जाएगी।
1: अब्बास साहब, आप अफसाने भी लिखते रहे, नज़में भी लिखते रहे, जब शायरी शुरू की आपने, हमारे यहाँ गज़ल का गलबा था, गज़ल सबसे मकबूल सिन्फ सुखन रही। आमतौर पर शायर जब शायरी का आगाज़ करते हैं तो गज़लें कहते हैं, क्या आपने गज़लें कही हैं इब्तदा में, उसके बाद नज़मों की तरफ आए, या इब्तदा से ही सिर्फ नज़मों की तरफ रुझान रहा आप?
0: नहीं, मैंने कभी गज़ल नहीं कही। और अख्तरुल ईमान साहब ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था, लोगों ने उनसे भी पूछा कि आपने गज़लें क्यों नहीं लिखी, नज़में सिर्फ लिखी, तो उनका जवाब यह था कि गज़ल अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच चुकी थी गालिब के ज़माने में, तो उससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता था गज़ल में। तो इसी वजह से हमने सोचा गालिब से तो मुकाबला हो नहीं सकता है, तो नज़में शुरू की। तो मुझे ये लगा कि नज़्म मेरे लिए कहनी ज़्यादा आसान है। आप ये भी देखेंगे कि पाबंद नज़्म हमने बहुत कम कही हैं। उसकी वजह यह है कि उरूज़ मुझे लगा कि यह खासा मुश्किल फ़न है, इसमें काफ़ी पाबंदियाँ भी हैं और मुश्किल भी है, तो आसान तरीका क्यों न चुन लिया जाए। आज़ाद नज़में, मुर्रा नज़में, नसरी नज़में इस तरीके की हैं।
1: तो क्या ही अच्छा होता कि इस मौके से अगर आप अपनी कोई नज़्म सुना देते हमें। मुख्तसर नज़में भी कही आपने, तवील नज़में भी लिखी हैं आपने, कोई मुख्तसर सी नज़्म अगर इस मौके से सुना दें तो बड़ी इनायत हो।
0: चलिए एक बहुत छोटी सी नज़्म आपको सुनाते हैं, इसका उन्वान है चलो अब इश्क करते हैं।
1: चलो अब इश्क करते हैं।
0: हमेशा पढ़ना लिखना भी बहुत अच्छा नहीं होता, फसाना शायरी तदरीस आखिर कब तलक यूं ही, उमूर खानादारी महफिल इल्म अदब को त्याग देते हैं, یہ سوشل میڈیا

0: बेतुकी बातों तमाशों से रिहाई पा ही लेते हैं और दुनिया के अलायक से मुनज्जह बावजू होकर चलो अब इश्क करते हैं।
1: अच्छा है इस बावजू इश्क करने का, बहुत खूब, अच्छे खूबसूरत नज्म है।
0: और ये कोई बहुत बड़ी शायरी है नहीं हमारी, तो बस ये जायका तब्दील करने के लिए मुझे लगा कि तनकीद की तरफ आदमी कब तक रहे, तख्लीक को भी कुछ राह देनी चाहिए। तो
1: कभी कभी अफसाने भी लिख लेते हैं और कभी नज़में भी। जी, अफसानों शायरी से अलग हटके, आपकी जो तदरीसी खिदमात है उससे अलग हटके, एक बात और मेरे जहन में कि एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है उर्दू का, जिसे हम कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान के नाम से जानते हैं, हुकूमत हिंद का ये बड़ा इदारा है, इस इदारे से भी आपकी वाबस्तगी रही है। इससे आपकी कब वाबस्तगी हुई और किस शक्ल में हुई और उसे क्या कुछ खूबसूरत यादें आपकी वाबस्ता हैं?
0: उसके जो वाइस चेयरमैन कहलाते हैं ना, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी थे
1: जी,
0: और डायरेक्टर हो गए थे प्रोफेसर अली जावेद साहब, तो इसकी जगह निकली प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर के लिए, तो हमने अप्लाई किया और हमारे कुछ साथियों ने अप्लाई किया, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। इदारत में मखमूर सईदी साहब थे, उस जमाने में ये था कि हम प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर थे और डायरेक्टर तक जो भी फाइल जाती है या किताब से मुतालिक, पब्लिशिंग से मुतालिक जितनी चीज़ें तय होती हैं वो प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर ही करता था। और हमारे ज़माने में काफ़ी प्रोग्राम भी हुए, मसलन नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, आसाम में, शिलोंग में, इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम हुए। और ये जो अभी उर्दू भवन बना हुआ है नया वाला, तो उसके नोडल ऑफिसर हम ही थे कि बिल्डिंग कैसे बननी है, क्या क्या होना है, तो हम देख रेख करते थे उसका, मेरी निगरानी में बना था वो। हुआ ये कि जब अली जावेद साहब रहे, अली जावेद साहब के जाने के बाद कुछ दिनों तक डायरेक्टर होकर के रश्मि चौधरी आई, वो थी, उसके बाद फिर हमीदुल्ला भट्ट साहब आए, तो कुछ दिनों तक इनके साथ हम रहे, तो इस तरीके से हमें काम करने का और बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला कि जो एक अदबी दुनिया होती है या तदरीसी दुनिया होती है उससे ये दुनिया किस तरह से मुख्तलिफ है। तो बहुत सारे तजुर्बात हुए, नए नए मुशाहदात हुए, तो बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिला मुझे।
1: अब्बास साहब, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये गुफ्तगू यूं ही जारी रहे, हम सुनते रहें आपको। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और शोबे उर्दू के बारे में आपसे ज़रूर कुछ पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाहता है कि मैं 2-3-4 सवाल बिल्कुल छोटे से, जिनका एक जुमले में आप जवाब दे सकते हैं। एक अफसाना निगार हैं, शायर हैं, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर भी हैं, बड़ा शोबा है आपका और उर्दू की बड़ी पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ वो मैं आपकी पसंद के बारे में पूछूंगा। मिसाल के तौर पे आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा अफसाना निगार कौन है?
0: सुरेंद्र प्रकाश।
1: आपका पसंदीदा नावल निगार कौन है?
0: मेरा पसंदीदा नावल निगार शमसुर रहमान फारूकी, एक ही नावल अगरचे उन्होंने लिखा है।
1: आपके पसंदीदा कौन है उर्दू के नक्काद?
0: उर्दू के नक्काद में मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ काजी अफजल हुसैन की तनकीद को।
1: आपका पसंदीदा रंग कौन सा है?
0: पसंदीदा रंग मेरा जो है सुर्ख है और नीला।
1: पसंदीदा फूल कौन सा है आपका?
0: पसंदीदा फूलों में तो कई है लेकिन गुलाब को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, खुशबू भी होती है।
1: कोई ऐसी किताब जो बार बार पढ़ने का दिल किया हो?
0: मुश्ताक यूसुफी की किताब आबे गुम,
1: बार बार पढ़ने का दिल,
0: बार बार पढ़ने का।
1: हिंदुस्तान के बाहर किसी मुल्क में जाना हो आपको तो किस मुल्क में सबसे पहले जाना चाहेंगे?
0: पता नहीं क्यों मेरा जी कहीं जाने का नहीं चाहता, बस हिंदुस्तान में रहने का चाहता है। बच्चों ने कई दफा कहा कि वहाँ चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा जब तक जिंदा हूँ न किसी को जाने दूंगा न जाऊंगा,
1: इसी मुल्क में रहना,
0: इसी मुल्क में रहना।
1: क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। अपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जाती पसंद के बारे में मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दिया। अब जरा सा हम आपके शोबे के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि चूंकि ये शोबा बहुत पुराना शोबा है और बड़ी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, तारीखी यूनिवर्सिटी है और उसके एक शोबे के आप सरबराह हैं, तो उस शोबे के बारे में और फिर जब नई तालीमी पॉलिसी आई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद क्या क्या कोर्सेज आपके चल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एतबार से क्या तब्दीलियाँ आप लोगों ने की है, उसके बारे में जरा सा हम आपसे जानना चाहते हैं।
0: देखिए हमारे यहाँ कई कोर्स चल रहे हैं, एक तो रेगुलर कोर्स है जो एमए का होता है, इसके अलावा एमफिल तो ख़त्म हो गया लेकिन पीएचडी का कोर्स वर्क होता है वो कोर्स चल रहा है, इसके अलावा दो शॉर्ट टर्म कोर्स चलते हैं हमारे यहाँ, एक तो सर्टिफिकेट का, डिप्लोमा का, एडवांस डिप्लोमा का, एक ये हो गया
1: जी।
0: इसके अलावा एक कोर्स ये चलता है मास मीडिया एंड एसे ट्रांसलेशन का, और फिर एक और कोर्स है पैलियोग्राफी का जिसमें मुख्तलिफ पुरानी तहरीरों को समझना, लिखना, पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को, एक वो कोर्स है। नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद हमारी यहाँ ये हुआ कि इससे बड़ी तब्दीली आई है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है
1: जी,
0: इसको लागू होना ही चाहिए था। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पहले जो कोर्स था बहुत ही पुराना कोर्स था, नई चीज़ें उसमें आ नहीं पाती थी।
1: जी
0: शुरू में हम लोगों ने कई मरतबा कहा अपने हेड से और जो मुख्तलिफ हेड आते थे कि इसमें कोर्स में तब्दीली कीजिए, क्योंकि प्रेमचंद से शुरू होकर के कुरतुल्लैन हैदर तक ख़त्म हो जाता था। वैसे नए शायर जो हमारे शहरयार इरफान सिद्दीकी और दूसरे
1: जी
0: निदा फाजिल वगैरह, बशीर बद्र वगैरह, उनको शामिल ही नहीं किया गया था। तो जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और इसके तहत जब हम लोगों को कोर्स बनाना हुआ
1: जी,
0: तो हमने ये किया कि हमारे जो नए अफसाना निगार हैं, मसलन ज़किया मशहदी हुई, मुशर्रफ आलम ज़ौकी हुए, अनीस अशफाक हुए, इनको हमने शामिल किया। शायरों में शहरयार साहब को शामिल किया, इरफान सिद्दीकी को, निदा फाजिली को, इस तरह के लोगों को शामिल किया, यानी बिल्कुल नए दौर तक ले आए। अब ये नहीं लगता हमारा कोर्स पढ़ने के बाद ये उर्दू 1857 या
1: जी जी
0: कहिए कि उसके बाद
1: नए तकाजों से हम आहंग किया गया है, बिल्कुल
0: से हम
1: न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेबस अपना तैयार किया। एक और बात हमेशा आती है कि उर्दू तो हमारी रिवायत का हिस्सा रही है, हम ये देखते हैं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, नई जनरेशन भी, जो नई नस्ल है वो भी उर्दू के करीब है और वो उर्दू अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, सदर शोबे उर्दू या एक शायर या अदीब के तौर पे भी। अगर इस नई नस्ल के लिए आपको कोई पैगाम देना हो, उन्हें कुछ बताना हो उर्दू के ताल्लुक से खासकर, तो क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं भी इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू के मुस्तकबिल से या उर्दू के हाल से मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू का मामला ये है कि उर्दू बिल्कुल नए ज़माने से हम आहंग हो रही है। नई टेक्नोलॉजी है या नई लफ्जियात है, नई शहरियात है, नई इस्तिलाहात है, उर्दू में वो जम हो रहे हैं और उर्दू हम इसी तरीके से बोलते हैं। बहुत से पर्शियन के जो इस्तिलाहात थे या अरबी के थे, ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें मतरूक होती जाती हैं नए ज़माने के साथ, और नए ज़माने की जो चीज़ें वो शामिल होती जाती हैं। तो बहुत से लोग उर्दू पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं, तो मुझे तो कतई मायूसी नहीं होती है। जो ये कहते हैं कि पहले ऐसा होता था, बहुत अच्छा होता था, अब अच्छा नहीं है, मुझे अब अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि हर आने वाली नस्ल पहली नस्ल से ज़्यादा ज़हीन होती है, तो हमारी नस्ल भी पिछली नस्ल से ज़्यादा ज़हीन है, हमारे बाद वाली नस्ल हमसे ज़्यादा ज़हीन होगी, तो उर्दू का मुस्तकबिल भी इसी एतबार से ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा लोग पढ़ते रहेंगे, उर्दू में नई नई चीज़ें, ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी।
1: ये बड़ी खुशाइन बात कही आपने, सही बात है कि आने वाली जो नस्ल है वो अपने तकाजे लेकर आई है और नए ढंग से उर्दू से मोहब्बत भी कर रहे हैं, उर्दू पढ़ भी रहे हैं। अबू बकर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू करना वाकई बड़ा अच्छा, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू, दिलचस्प गुफ्तगू रही, और दिल तो ये चाह रहा था कि वो कहें और सुना करे कोई। और सच बात यह है कि जो आपका तजर्बा है वो तजर्बा बोल रहा है, और आपने जो बातें बताई उनमें हौसला भी है, हिम्मत भी है, आगे बढ़ने का एक जज्बा भी है। आपने वक्त दिया, स्टूडियो में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब।
0: बेहद शुक्रिया शफिया अय्यूब साहब।
2: सामीन, अभी आप प्रोफेसर अबू बकर अब्बास की गुफ्तगू सुन रहे थे। आपसे मैं वह गुफ्तगू थे डॉक्टर शफी अय्यूब। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम रू बरू, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। और अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। मोहम्मद अली कमाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू मजलिस। अब वक्त है समाचारों का। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर

0: जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका अधिवक्ता अंजन दत्ता ने दायर की थी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉ. मांडविया ने सभी हितधारकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश भर में सोने की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। निदेशालय ने 6 किलो 600 ग्राम से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह गिरोह कोरियर नेटवर्क के जरिए काम करता था। पिछले 9 महीनों में इस नेटवर्क के जरिए 318 किलोग्राम तस्करी का सोना लाया गया, जिसकी कीमत 475 करोड़ रुपए है। मामले में गिरोह के एक मुख्य षड्यंत्रकर्ता सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद रोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में बढ़ती युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। बलोच नेशनल मूवमेंट BNM ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जबरन गायब किए जाने, मानवाधिकारों के उल्लंघन और गैर न्यायिक हत्याओं के खिलाफ जेनेवा में एक विरोध रैली का आयोजन किया। BNM के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने टूटी कुर्सी स्मारक स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के हनन पर अधिक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने की मांग की गई। देश आज शहीद आजम शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Supreme Court today refused to stay the center's decision to impose merchant discount rate MDR on specified person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupees, with the charges set to come into effect from the 15th of next month. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joy Malia Bakshi and Justice V. Mohanna sought responses from the centre the Reserve Bank of India and other respondents, directing them to file their counter affidavits within 4 weeks. The Apex Court observed that the issue is less legal and more technical. The country is observing the 10th anniversary of the surgical strikes today that demonstrated to the world an example of Narendra Modi government's counter-terrorism policy. In 2016, on September 28-29, Indian Army carried out targeted surgical strikes on terrorist launch pads across

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। लापता व्यक्ति का नाम है उमंग, पुत्री स्वर्गीय अरविंद। ये नगला ताशी कंकरखेड़ा मेरठ से 14 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से लापता है। आयु उनकी 20 वर्ष है, कद 5 फुट, चेहरे का रंग गेहूआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर पुरस्कार राशि का भी प्रावधान है, जिसमें 5,000 रुपये सूचना देने वाले को मिलेंगे। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना कंकरखेड़ा मेरठ को संपर्क कर सकते हैं। लापता व्यक्ति का नाम है तबस्सुम, पुत्री मोहम्मद इंतजार, ग्राम काजमाबाद, थाना परतापुर मेरठ। आयु 27 वर्ष है।

कद 5 फुट 6 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य है, चेहरे का रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना परतापुर मेरठ को आप सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7599986685। अगली सूचना अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है क्षति, पुत्री संजय, आयु है 22 वर्ष, शरीर की बनावट गहरा है, ऊंचाई 5 फुट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन मुंडाली मेरठ को आप सूचना दे सकते हैं। अगली सूचना है कोई व्यक्ति शिवानी के नाम, पुत्री स्वर्गीय संजय सिंह, इनकी कद है 5 फुट, शरीर की बनावट सामान्य है। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपको प्राप्त होती है तो आप प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह थाना कंकरखेड़ा मेरठ को सूचना दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है मस्कूर पुत्र तस्लीम, निवासी ग्राम काजीपुर थाना लोहिया नगर, इनकी उम्र है करीब 20 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य है, ऊंचाई 5 फुट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना लोहिया नगर मेरठ मोबाइल नंबर 7037820349 को पर जानकारी दे सकते हैं। अगली सूचना अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है महजबीन, पत्नी वसीम, पुलिस स्टेशन रिठौर मेरठ, आयु 50 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है, ऊंचाई 4 फुट 7 इंच है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप थाना निठौर जनपद मेरठ को सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9568140458। अगली सूचना है कोई है व्यक्ति का नाम राजलक्ष्मी, आयु 21 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट 3 इंच है। इनके बारे में यदि कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ को सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8979411683। और अगली सूचना है बलराज, पिता रामस्वरूप, आयु 73 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट 8 इंच है, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपको मिलती है तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना सरधना मेरठ को सूचित कर सकते हैं। ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: लगभग जा चुका है दोस्तों, बारिश की आखिरी बुहारें भी अब कम होती जा रही हैं और हवा में एक अलग ठंडक घुलने लगी है।
1: और इसी ठंडक के साथ त्योहारों की आहट भी शुरू हो जाती है। नवरात्रि पास है, बाजारों में रौनक लौटने लगी है और घरों में एक एक्साइटमेंट का माहौल है।
0: और कितनी अजीब बात है ना कि साल का एक हर मौसम अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, जैसे प्रकृति भी खुद को नया करती रहती है।
1: शायद इंसानों को यही सिखाने के लिए कि कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं रहता, ना मुश्किल ना आसान।
0: बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका फिर से स्वागत है यूथ प्रोग्राम युवा वाणी में। मैं हूँ रजिया।
1: और मैं हूँ श्रुति। साथियों, आज सोमवार है, यानी हफ्ते की नई शुरुआत। कुछ लोग इसे मंडे ब्लूज कहते हैं तो कुछ लोग इसे अपना वीकली रीसेट मानते हैं।
0: रीसेट? श्रुति, क्या तुमने आजकल इंटरनेट पे वो ट्रेंड देखा है, 2016 इज द न्यू 2016?
1: हाँ रजिया, हर तरफ लोग 10 साल पुरानी धुंधली तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, वो स्नैपचैट वाले सिंपल फिल्टर्स और कैप्शन में बस एक बात, काश हम फिर से 2016 में जा सकें।
0: पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2026 की इस रफ्तार में, जहां सब कुछ AI जनरेटेड और अल्गोरिदम से तय है, हम थक चुके हैं और हम उस दौर की सादगी को तरस रहे हैं जब तस्वीरें धुंधली थीं पर मुस्कान असली।
1: सच में रजिया, तब बिना 10 बार सोचे पोस्ट कर देते थे, ना परफेक्ट दिखने का दबाव था ना जज होने का डर। कितना सुकून था ना उस बेफिक्री में।
0: और जानते हैं दोस्तों, आज हमारे युवानी के इस वीकली रीसेट में हम समय का पहिया पूरी तरह तो नहीं मोड़ सकते, लेकिन उस असली एहसास को अपनी ज़िंदगी में वापस ज़रूर ला सकते हैं। वक्त की इस भाग दौड़ में थोड़ा ठहर कर तो देखो, पुराने गांव की उस धुन में ज़रा बह कर तो देखो। मन की दुनिया आगे निकल गई बहुत, माना कि दुनिया आगे निकल गई बहुत, पर कभी उस पुराने बेफिक्र खुद से मिल कर तो देखो।
1: वाह रजिया, कितनी खूबसूरत बात है। तो आज के इस शो में हम बात करेंगे हमारे सोमवार के खास हेल्थ सेगमेंट में एक ऐसे विषय की जो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, फ़ोन, स्क्रीन और हमारी नींद,
0: और साथ ही क्विक बज।
1: तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सुनते हैं एक प्यारा सा गाना लता जी का, मेरे ख्वाबों में जो आई।

0: आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। कुछ आवाज़ें गीत नहीं गाती, वे हमारी यादों को आवाज़ देती हैं। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही लगता है जैसे कोई बहुत अपना, बहुत दूर से हमें पुकार रहा हो। भारत के संगीत इतिहास में एक ऐसी ही आवाज़ थी लता मंगेशकर जी।
1: आज की ये महफिल एक ऐसी शख्सियत के नाम है जिसके बिना हिंदुस्तानी संगीत की कहानी अधूरी है।
0: जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की।
1: आज 28 सितंबर है उनकी बर्थ एनिवर्सरी। साल 1929 इंदौर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ जिसके आगे चल के पूरी दुनिया स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने लगी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे, यानी सुर तो लता जी को विरासत में मिली थी। उन्होंने बचपन में ही गाना सीखना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे वही संगीत उनकी पहचान बन गया।
0: लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है। सिर्फ 13 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में मशरूफ होते हैं, लता जी के सर से पिता का साया उठ गया। घर में सबसे बड़ी वो थी और छोटे भाई बहन यानी मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ, उन सब की जिम्मेदारी उनके नन्हे कंधों पर आ गई। और यहीं से शुरू होती है कहानी उस लड़की की, उस जंग की, जो आगे चलकर पूरे देश के लिए मिसाल बन गई।
1: उस दौर के पुरुष प्रधान और मुश्किल संगीत जगत में अपनी मेहनत और सुरों के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान तक का सफर तय किया।
0: सोचिए जरा, उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम आज बॉलीवुड कहते हैं, पुरुषों की दुनिया थी। एक नई दुबली पतली लड़की जिसकी आवाज़ को शुरुआत में कुछ लोगों ने बहुत पतली कहकर ठुकरा दिया, लेकिन लता जी ने उन बातों का जवाब शब्दों से नहीं, अपने सुरों से, अपने रियाज से दिया।
1: उन्होंने एक बहुत ही मशहूर शायरी विमेन एम्पावरमेंट वाले गीत लाडली को अपनी जादुई आवाज़ दी, जो समाज में बेटियों के सम्मान और ताकत का संदेश देता है। और उनका पूरा जीवन ये सिखाता है कि किस प्रकार एक महिला अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर मुश्किल परिस्थितियों को भी मात दे सकती है।
0: फिर आया साल 1949, फिल्म महल और गाना आएगा आने वाला। ये गाना ऐसा चला कि पूरा देश उस आवाज़ का दीवाना हो गया। उस दिन के बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं गाना आएगा आने वाला।

0: लता जी ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन अपने काम से एक पूरी पीढ़ी को रास्ता दिखाया। उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां औरतों को अक्सर पीछे रखा जाता था, वहां अपनी खुद जगह बनाई।
1: सिर्फ जगह ही नहीं बनाई, अपनी वैल्यू का सही मोल भी मांगा। एक जमाना था जब प्लेबैक सिंगर्स को गाने की रॉयल्टी नहीं मिलती थी। लता जी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई कि जो कलाकार गाना गाता है उसका भी तो हक बनता है। इस पर काफी बहस हुई, कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। आज सिंगर्स के हक की जो बात होती है उसकी नींव ऐसी आवाजों ने ही रखी है।
0: और उनकी जिंदगी का एक और पहलू देखिए, वो खुद आत्मनिर्भर बनी, अपने पूरे परिवार को संभाला, अपने भाई बहनों को आगे बढ़ने में मदद की। ये सब तब जब उनके पास ना कोई बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना आसान रास्ता। ये होती है असली एम्पावरमेंट दोस्तों, जो खुद खड़ी हो और दूसरों को भी खड़ा करे।
1: आइए सुनते हैं गाना देखा एक ख्वाब।

0: लता जी ने अपने 8 दशकों के सफ़र में हजारों गाने गाए और 30 से ज़्यादा भाषाओं में, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और कितनी ही जुबानें। और मज़ेदार बात तो ये है कि हर जुबान में उनके अल्फाज ऐसे साफ जैसे कि वो उनकी ही भाषा हो।
1: अब जॉनरा देखिए, लग जा गले जैसा रोमांटिक और दिल छू जाने वाला गाना उन्होंने गाया, और प्यार किया तो डरना क्या जैसा बिंदास कॉन्फिडेंट गाना भी, अल्लाह तेरो नाम जैसा भक्ति से भरा भजन भी उनकी आवाज़ में उतना ही असरदार लगता है, और ज्योति कलाश चलके जैसे शुद्ध क्लासिकल टोन वाले गीत भी में भी उनकी कमाल की पकड़ है।
0: उन्होंने अलग अलग पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए आवाज़ दी, मधुबाला से लेकर मीना कुमारी तक, नूतन से लेकर शर्मिला टैगोर तक, हेमा मालिनी से लेकर श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित तक, चेहरे बदलते रहे, दशक बदलते रहे, सिनेमा बदलता रहा, लेकिन उनकी आवाज़ वही रही। तो चलिए सुनते हैं गाना कह दूँ तुम्हें।
2: तुम्हें
3: हाँ
2: क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है

0: फिर आता है वो गाना जो सिर्फ गाना नहीं एक जज्बात है। ए मेरे वतन के लोगों, साल 1963 दिल्ली में रिपब्लिक डे के बाद एक समारोह में लता जी ने ये गाना लाइव गाया। कवि प्रतीप के शब्द, सी रामचंद्र के धुन और लता जी की आवाज़। कहा जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज भी जब ये गाना बजता है तो रूप रंग धर्म भाषा सब भूलकर सिर्फ एक ही एहसास बचता है, अपने देश के लिए प्यार और शहीदों के लिए सम्मान।
1: अगर आप कभी ज़िंदगी में थक जाएं या लगा हो कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तो लता जी की कहानियां याद करिए। 13 साल की लड़की जिसने सर पर पूरे घर का बोझ उठाया, वही लड़की जो आगे चलकर पूरे देश की आवाज़ बनी। ये साबित करता है कि हालात आपको रोक नहीं सकते अगर आपके इरादे मजबूत हैं। तो आइए सुनते हैं गाना ज़िहाले मिस्किन।

0: धड़कन तुम्हारी। लता जी को उनके काम के लिए देश ने कई पुरस्कारों से नवाजा, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण और कई दूसरे। और फिर साल 2001 में भारत सरकार ने उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया। वो ये सम्मान पाने वाली दूसरी गायिका बनी। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये पूरे देश की तरफ से एक शुक्रिया था उस आवाज के लिए जिसने हर खुशी हर गम में हमारा साथ दिया।
1: उन्होंने सिर्फ गाने ही नहीं गाए, समाज के लिए भी काम किया। पुणे में उनके नाम से बना हॉस्पिटल जो आज भी लोगों की सेवा कर रहा है, उनके उस दिल की झलक है जो सिर्फ सुर के लिए नहीं इंसानियत के लिए भी धड़कता था।
0: 6 फरवरी 2022 को लता जी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। पूरा देश रो पड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या सच में वो चली गईं? नहीं, जब भी कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, जब भी कोई प्रेमी अपने दिल की बात गाने में ढूंढता है, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत बजते हैं, वहाँ लता जी की आवाज़ जिंदा होती है।
1: एक कलाकार, एक बेटी, एक बहन, एक प्रेरणा। लता मंगेशकर जी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक एहसास है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम सब उनको दिल से याद करते हैं और शुक्रिया कहते हैं उस आवाज़ के लिए जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। तो आइए सुनते हैं गाना दिलबर मेरे।

0: जाओगे।
1: दोस्तों, और अब बढ़ते हैं आज के सबसे खास सेगमेंट की तरफ, हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड। तो रजिया, आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं?
2: श्रुति, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, कमरे की लाइट बंद है, बस फोन की स्क्रीन चेहरे पर जल रही है। बाहर पूरा घर सो चुका है और अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही है,
1: बस एक रील। और
2: फिर
1: वो एक रील 10 बन जाती है और 10 से 30। कभी कोई फनी वीडियो, कभी कोई रेसिपी जो कभी बनाई ही नहीं जाएगी, कभी किसी ट्रिप का वीडियो, और जब फोन नीचे रखते हैं तो घड़ी में 12 की जगह 1:30 बज चुका होता है।
2: सच बताइए दोस्तों, कितनी बार हुआ है आपके साथ ये?
1: रजिया, ऑनेस्टली ये लगभग हर किसी के साथ होता है। 5 मिनट फोन चलाती हूँ बोलकर जब लेटते हैं तो 5 मिनट का पूरा 1 घंटा बन जाता है, पता ही नहीं चलता।
2: और सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है?
1: आंख खुलते ही फोन चेक,
2: नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, और बस एक रील
1: और अलार्म जो तब तक 4 या 5 बार स्नूज तो हो ही चुका होता है।
2: तो दोस्तों, अगर ये पूरा सीन आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इसी आदत की, स्क्रॉल करना, सोना और फिर वही सब कुछ दोहराना,
1: यानी स्क्रॉल, स्लीप, रिपीट।
2: तो शुरुआत करते हैं उसी सवाल से, आखिर वो बस एक रील और इतनी लंबी क्यों खिंच जाती है?
1: क्योंकि ये ऐप्स बनाई ही ऐसे जाती हैं रजिया। हर स्क्रॉल के बाद कुछ दिलचस्प सामने आता है जो दिमाग सोचता है कि बस एक चीज और, बस अगला वाला देख लूं,
2: और वही टाइम का एहसास खत्म हो जाता है जो बेड टाइम सोचा था, वो कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चलता।
1: और नोटिफिकेशंस तो है ही ऐसी चीज जो हर छोटी सी पिंग पर हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है।
2: वैसे श्रुति, आपके दोस्तों में भी ऐसे लोग हैं जो गुड नाइट बोल कर भी 2-3 घंटे ऑनलाइन रहते हैं?
1: हाँ, बिल्कुल है। और सबसे मजेदार बात तो ये कि वो खुद भी जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, फिर भी यही रात, हर रात यही होता है।
2: तो सवाल ये नहीं कि हम स्क्रॉल करते क्यों हैं, सवाल ये है कि इसका असर हम पर कितना होता है।
1: और यहाँ थोड़ा सीरियस होते हैं दोस्तों। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीनएजर्स और यंग एडल्ट्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए हर रात लगभग 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है।
2: 8 से 10? अब सोचने वाली बात यह है कि कितने लोग इतनी नींद रोज पूरी कर पाते हैं।
1: शायद बहुत कम रजिया, खासकर एग्जाम सीजन में तो ये आंकड़ा और भी नीचे चला जाता है।
2: और नींद कम होने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना कि थकान होता है, इसका सीधा असर पड़ता है हमारे फोकस, मूड और अगले दिन की अलर्टनेस पर।
1: बिल्कुल, जब शरीर को पूरा रेस्ट नहीं मिलता तो अगले

0: दिमाग उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता। चिड़चिड़ापन और ध्यान का भटकना सब नींद से जुड़ा है।
1: ग्लोबली भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस यही मानते हैं कि यंग लोगों को सेहत के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, जितनी कि फिजिकल एक्टिविटी और सही खाना।
0: वैसे रजिया, इस पूरी बात पर मुझे एक शेर याद आया है।
1: इरशाद,
0: रात का सुकून वो नीली रोशनी ले गई, रात का सुकून वो नीली रोशनी ले गई, जो नींद अपनी थी वो भी किसी स्क्रीन में खो गई।
1: वाह, सही कहा श्रुति। तो दोस्तों, इसी बात को और समझने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।
0: कोई लड़की है

0: जाएंगे और फिर वही बस एक चैप्टर से शुरू होकर बस एक रील तक पहुंच जाते हैं।
1: तो ये सीधा जुड़ा है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, कंसंट्रेशन और दिन की एनर्जी से। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की लता जी की हिम्मत की, 2016 की सादगी की और स्क्रोलिंग आदतों की।
1: और अगर आज की बातचीत से आपको एक भी नया ख्याल मिला हो तो हमारी मेहनत सफल हो गई।
0: अपने सुझाव और फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए yuvanifeedback@gmail.com पर, yuvanifeedback@gmail.com।
1: कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, ठीक 4:15 पे।
0: तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आज रात अपने फ़ोन को भी थोड़ा आराम दीजिए।
1: बिल्कुल, मैं हूँ श्रुति
0: और मैं हूँ रजिया। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुंबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि यूएई ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की गई। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India has set an ambitious target of raising its total exports of goods and services from $863 billion last year to $1 trillion this year. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said, merchandise exports have grown by more than 15% in the first 6 months of the current financial year, despite global challenges. Addressing media after the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai, Mr. Goyal said bilateral trade has doubled to around $100 billion under the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement. The two countries now aim to take it to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our

0: लोकरंजनी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मंजीत लोकरंजनी कार्यक्रम में आज हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कुछ भजन। और आज बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि आज शहीद भगत सिंह जी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे, आज उनका जन्म भी है। और उन्होंने युवावस्था से ही देशभक्ति के लिए वे आंदोलन से जुड़ गए और बचपन से ही वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन में अग्रणी रहे। और भगत सिंह केवल एक साहसी क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि गंभीर विचारक और लेखक भी थे। वे स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता, तर्कशील सोच और शोषण के से मुक्ति के समर्थक भी थे। और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और उनको याद कर रहा है।
1: बिल्कुल, आज उनकी जयंती है तो बहुत ही

0: से हर कोई मनाता है क्योंकि उनका जन्म 28 सितंबर को हुआ था, लियालपुर जिला पंजाब में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है। तो हमारे जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हैं हम सुनवाते हैं उनको भगत सिंह का एक गीत, और जो कलाकार हैं वो है रियासत। और आइए चलिए सुनते हैं।
1: सिलेक्ट तो करो।

0: ये देशभक्ति गीत हम सुन रहे थे और अब पितृपक्ष चल रहा है तो भजन, और भजन में आजकल हम सभी लीन हैं,
1: बिल्कुल
0: तो निर्गुण भजन सुनते हैं योगेश शर्मा की आवाज़ में।

तो ये बहुत अच्छा भजन हमारे दोस्तों ने सुना योगेश शर्मा की आवाज़ में। और अब सुनते हैं एक उपदेश योगेंद्र निमचाना से।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। आज जापान के आइची नागोय में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है, पदकों का सिलसिला कायम है और मेरे साथ हैं
2: शिवांश रक्षित। नमस्कार।
1: तो शिवांश, आज आईची नागोया में जो हुआ उनका जो शानदार प्रदर्शन है, बात ईशा सिंह की करें, शूटिंग में उन्होंने बेहद रोमांचक मुकाबले में उनकी टक्कर हुई चीन की शूटर से और 5 शूट ऑफ उन्होंने उस मुकाबले में खेले और अंततः वो सिल्वर मेडल अपने कब्जे में करने में सफल रही। इसके अलावा भी कुराश में भी पदक है, ट्रैक एंड फील्ड से भी पदकों का एक सिलसिला जारी है और अभी इवेंट चल रहे हैं। जैसे अपडेट हमें मिलेगी हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा भी शानदार प्रदर्शन है, हॉकी में भी मुकाबला बांग्लादेश से होना है, इस पर भी आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो पदक आए हैं और क्या सिलसिला है और कैसा मुकाबला रहा शूटिंग में, इन सब पर पेश है ये रिपोर्ट।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: जापान के आईजी नगोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं कुराज में भी भारत की जोली में पदक आ गया है। मुक्केबाजी के रिंग में भी बॉक्सरों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 5 भारतीय बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुके हैं। उधर स्क्वैश में भी भारतीय खिलाड़ियों का अभियान लगातार जारी है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 पदक जीतने के बाद अब टीम स्पर्धा में भी

0: भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है, पदकों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। आइए नजर डालते हैं एशियाई खेलों में भारत के आज के प्रदर्शन पर। निशानेबाजी में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में बेहद कड़े मुकाबले में रजत पदक अपने नाम किया। मैच एक निशाने से वह स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर सकी, लेकिन लगातार 5 शूट ऑफ का यह मुकाबला वाकई बेहद कांटेदार था। किस साल की ईशा इस वर्ग की मौजूदा विश्व की नंबर एक शूटर है। उन्होंने रजत पदक की होड़ में बने रहने के लिए 3 शूट ऑफ जीते। इसके बाद स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए उन्हें चीन की शियाओ जियारुई शुआन के साथ 2 और शूट ऑफ से गुजरना पड़ा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीनी शूटर दोनों के 38-38 अंक थे, लेकिन अंतिम निशाने में ईशा चूक गई और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद ईशा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
1: Go for a really good meal. Me and my coach Jonathan, we're big time foodies, so we're gonna go and have a lavish meal. Yeah, I gave quite a show to the audience. Thank you. But I think, of course, I was not expecting it to go like this. I had to really strive and linger for the medal. But I think this was meant to be memorable, and that is why it went like that. But I'm really grateful for the experience. Looking back, I think I had fun. In my case, it was very helpful because my hand was getting unexpectedly tired and very tight towards the match. I think if it wasn't for those breaks and those errors that happened, maybe it looked like breaking my zone, but it actually helped me. So maybe call it God's grace that it was meant to happen.
0: उत्तर कोरिया की किम हियोन सुक ने शूट ऑफ में हारने के बाद 34 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। इससे पहले 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु बाकर 25 मीटर पिस्टल की इस स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 589 अंक के साथ 11वें स्थान पर रही, जो फाइनल के लिए नाकाफी था। ईशा ने क्वालिफिकेशन में 580 अंक जुटाए थे। मनु इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में भी पदक जीतने में नाकाम रही थी। भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में थी, लेकिन राही सरनोबत की एक चूक टीम पर भारी पड़ी। प्रत्येक सीरीज में 5 निशाने लगाने होते हैं। राही ने चौथी सीरीज में 39 अंक ही बनाए। इसके बाद पदक की उम्मीदें खत्म हो गई। सरनोबत 568 अंक के साथ 30वें स्थान पर रहीं। कुराश में भारत की पिंकी बलहारा ने महिलाओं की 78 किलोग्राम से कम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना मेडल सुनिश्चित किया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें दक्षिण कोरिया की सुमिन मो से 0-5 से हार मिली। पिंकी ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गराम को 3-0 से हराया था। यह एशियाई खेलों में कुराश में पिंकी का दूसरा पदक है। उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में 52 किलोग्राम से कम भार वर्ग में सिल्वर मेडल लिया था। स्क्वैश में भी शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने पूल ए में चीन को 3-0 से, जबकि महिला टीम ने शुरुआती झटकों से उभरकर पूल सी में चीन को 2-1 से हराया। पुरुष टीम में सूरजचंद, वीर चौटरानी, वेलावन सेंथिल कुमार ने अपने अपने मुकाबले जीते। सूरज ने चीन के डू शाओ चियान को 11-4, 11-3, 12-10 से 30 मिनट में पराजित किया। वीर ने यू हाईजेन को 20 मिनट में 11-5, 11-5, 11-3 से हराया और भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। उसके बाद सेंथिल कुमार ने जो पैंगलिन को 11-3, 11-2, 11-4 से मात दे दी। महिला टीम में शामिल समीना रियाज को जीवान यिन के खिलाफ 5 गेमों के मुकाबले में 11-8, 11-6, 9-11, 9-11, 12-14 से हार मिली। इसके बाद तन्वी खन्ना ने झांग यूनिंग को 11-3, 11-5, 11-5 से हराकर भारत की वापसी कराई। उन्होंने सिर्फ 17 मिनट में यह मुकाबला जीत लिया। अनुभवी जोशना चिनप्पा ने इसके बाद लियू जियू को 22 मिनट में 12-10, 11-4, 11-6 से हराकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी। इससे पहले व्यक्तिगत मुकाबले में अनंत सिंह, अभय सिंह रजत पदक और मिश्रित युगल में जोशना संतिल कुमार की जोड़ी कांस्य पदक दिला चुकी है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम खराब मौसम के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल रद्द होने से मैदान पर उतरे बिना ही सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम को बेहतर रैंकिंग के कारण आगे बढ़ने का मौका मिला। भारतीय टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि अफगानिस्तान 10वें स्थान पर है। इसी तरह अन्य क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की टीम भी बेहतर रैंकिंग के कारण सेमीफाइनल में पहुंच गई। उसका भी हांगकांग के खिलाफ होने वाला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। नागोया में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। कम ओवरों का मैच भी संभव नहीं था। भारत का सामना मंगलवार को यहां नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। अगर ये मैच भी रद्द हुआ तो भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि कोचिंग की जिम्मेदारी वीवीएस लक्ष्मण संभाल रहे हैं। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज बुमराह और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सहित स्टार क्रिकेटर मौजूद हैं। मुक्केबाजी में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मुक्केबाज प्रिया गनगास ने क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचकर 2 और पदक पक्के कर लिए। 3 मुक्केबाज अंकुश पंगाल 80 किलो भार वर्ग, नरेंद्र बरवाल 90 प्लस भार वर्ग पुरुष वर्ग से और महिला वर्ग से प्रवीण हुड्डा 65 भार वर्ग में पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुके हैं। लवलीना ने 75 भार वर्ग में दक्षिण कोरिया सियोंग सियोन को क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हराया। लवलीना ने एशियाई खेलों में अपना लगातार दूसरा पदक तय किया है। पिछली बार रजत पदक जीता था। प्रिया ने 60 किलो के क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान की मिजगोना सामादोवा को 5-0 से हराया। महिला युगल टेनिस में अंकिता रैना और ऋतुजा भोंसले कजाकिस्तान की एलेना डालिना और

0: रिया पुतिनसेवा से 7-5, 3-6, 5-10 से हार गई। पहला सेट भारतीय जोड़ी ने जीता, लेकिन दूसरे सेट में कजाकिस्तानी जोड़ी ने वापसी की, लेकिन निर्णायक सेट के टाई ब्रेकर में हार गई। अभी अंकिता और ऋतुजा के पास मिश्रित युगल में मौका है। पुरुष एकल में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के होंग सियाई चान के खिलाफ पहले सेट में 3-2 से आगे थे, जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। मैच अब कल यानी मंगलवार को होगा। नागल हाल ही में सियोल में डेविस कप में अपने दोनों एकल मुकाबले कोरियाई खिलाड़ियों से हार गए थे। स्पेक्टेकुलर के महिला युगल में भारतीय टीम ग्रुप चरण में हारकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। मैनुन सुक्रू और लेहर देवी इलांगबाम की जोड़ी जापान से 1-2 से हार गई। इससे पहले दक्षिण कोरिया और फिलीपींस ने भी भारतीय टीम को 2-0 से हराया था। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। एशियाई खेल में तीरंदाजों का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। कंपाउंड वर्ग में तीरंदाजी में साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल की भारतीय पुरुष टीम ने भूटान को कल 235-232 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। कंपाउंड की महिला टीम में चिकिता तनिपोर्ती, ज्योति सुरेखा वैनम और प्रतीका प्रदीप की भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 233-230 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उनका सामना भी दक्षिण कोरिया से होना है। कंपाउंड मिश्रित टीम भारत की मजबूत दावेदारी है। कंपाउंड मिश्रित टीम में चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 159-154 से मात दी। कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह स्पर्धा लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में पहली बार शामिल होगी। रिकर्व मिश्रित टीम में धीरज बोमा देवरा और कुमकुम अनिल मोहिर की जोड़ी ने भी लगातार 2 जीत हासिल की है। प्री क्वार्टर में यूएई को 6-0 से हराया, क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को 6-0 से मात दी।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: भारत के इस प्रदर्शन पर हमने बात की जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी से, तो क्या कहा उन्होंने आइए जानते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत ही करीबी मुकाबला था जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि काफी समय से हम शूटिंग में गोल्ड, जो एक गोल्ड आया है अभी तक, काफी इंतजार था और आज एकदम लग रहा था कि ईशा जो है वो गोल्ड दिलाएंगी, लेकिन उनकी तरफ से काफी कोशिश भी रही, 5 शूट आउट लगातार चले हैं और आखिर में जब वो एक निशाना जो उनका चूका उसके बाद उनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा और वो बोली भी कि मेरे करियर का सबसे लंबा मुकाबला था और आखिर में मेरे हाथ दुखने लगे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही करीबी एक मुकाबला था और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर वो सिल्वर जीतने में कामयाब रही, क्योंकि मनु भाकर से उम्मीदें थी, इसी वर्ग में वो उतरी थी और पदक फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई थी, तो सारी नजरें ईशा पर लगी हुई थी और वो अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरी उतरी।
3: जी बिल्कुल, मनु भाकर से भी एक उम्मीद की जा रही थी, इसको कहीं ना कहीं एक दिन की भी बात होती है या कहीं ना कहीं आप एक उम्मीदों का दबाव हो जाता है।
2: जी देखिए, इतने वेटरन खिलाड़ी है, 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, तो दबाव खेलने के लिए तो ये लोग ट्रेन होते हैं, लेकिन दिन की बात जो होती है आपने कहा कि वो बिल्कुल सही बात है। ये मुकाबला इतना कड़ा था चीनी कोरियाई शूटर्स से और वहां पर कहीं लगता है क्वालिफिकेशन में ही थोड़े से हेर फेर से ही आपकी रैंकिंग चेंज हो जाती है, तो मुझे लगता है मनु के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ क्योंकि 11वें स्थान पर रही थी वो क्वालिफिकेशन में, जो उनके स्टैचर के शूटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बिलो पर परफॉर्मेंस रहा है।
3: जी, और राही सरनोबत भी उतना बेहतर नहीं कर पाई,
2: बल्कि राही जो 2018 में गोल्ड मेडल ले चुकी है और 3 स्पर्धा में भी पदक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वहां राही की एक गलती हुई जिसकी वजह से पदक की दौड़ से भारत बाहर हो गया। तो
3: निशानेबाजी के अलावा बात करें स्क्वैश में, हमने 3

0: मेडल लिए हैं, दो हमारे खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे दोनों वर्गों के, अनाहत सिंह, अभय सिंह, इसके अलावा चोशना चिनप्पा लगातार मेडल जीतती हैं एशियाई खेलों में, यहाँ भी उनका मेडल रहा। हालांकि टीम स्पर्धा में भी भारत ने दोनों वर्गों में अच्छा किया।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब मेडल टेली देख रहे हैं उसमें चाइना का जिस तरह से दबदबा दिखाई दे रहा है, तो आज भारतीय पुरुष टीम ने चाइना को ही हराया और महिला टीम ने भी चाइना को हराया। पुरुष टीम का मुकाबला तो बिल्कुल एक तरफा ही रहा, 3-0 से भारत ने जीत दर्ज की है। महिला टीम में जरूर एक मुकाबला हमने गवाया, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की, तो एक बहुत ही अच्छा टीम स्पर्धा में शुरुआत रही।
0: खासतौर से ये ओलंपिक इवेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है इससे एक मनोबल मजबूत होता है। हालांकि अगर डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते तो एक अलग सोने पे सुहागा हो जाता।
1: जी बिल्कुल, अभय और अनाहत से तो यही उम्मीदें थी और लग रहा था दोनों के फॉर्म को देखते हुए कि वो यहाँ से सीधे ओलंपिक क्वालिफिकेशन लेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन फाइनल में जाकर उनका वो जो लय है वो कायम नहीं रह सकी और रजत से संतोष करना पड़ा और सीधे क्वालिफाई करने का मौका भी चला गया।
0: जी बिल्कुल, और अगर बॉक्सिंग की बात करें तो वहां भी भारतीय पंच का दम नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी हमारे 5 मुक्केबाज पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। आज लवलीना और प्रिया ने जीत हासिल की है, पहले अंकुश है, प्रवीण हुड्डा है, इसके अलावा नरेंद्र बरवाल है, वो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में।
1: उम्मीद यही करेंगे कि जो पदक का रंग है वो पीला हो, क्योंकि बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। सिल्वर और ब्रॉन्ज तो लगातार हर रोज आ ही रहे हैं। लवलीना से खासतौर पर उम्मीद होगी कि जापान उनके लिए लकी रहा है। याद होगा हम सभी को कि टोक्यो में उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था जापान में ही, और अभी यहाँ पर जिस अंदाज में वो जीत कर आगे गई है, 5-0 से उन्होंने कोरियाई मुक्केबाज को हराया है, तो अच्छे फॉर्म में है। और उसके बाद प्रिया ने पिछड़ने के बाद 60 किलो क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से वापसी की है, तो यहाँ उम्मीद प्रिया और लवलीना से तो जरूर होगी। लवलीना का सामना अब 70 किलो में उतरी है वर्ल्ड चैंपियन कजाक मुक्केबाज से होगा, तो थोड़ी सी कठिन फाइट होगी। जो उनके मुक्केबाज प्रतिद्वंद्वी है वो 70 किलो में वर्ल्ड चैंपियन रही है, तो यहाँ पर देखना होगा कि वो कैसे सामंजस्य बिठाती है। और जैसे आपने कहा, प्रवीण हुड्डा, अंकुश पंघाल, नरेंद्र बेरवाल सब पदक जरूर पक्के कर चुके हैं और उम्मीद यही करेंगे कि बॉक्सिंग रिंग से जो है वो हमें सोने के तमगे, पीले तमगे मिले।
0: जी बिल्कुल, पदक की बात है तो कुराश में हमने जीता है, पिंकी।
1: जी पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलो से कम भार वर्ग में दक्षिण कोरिया के सुमोन मो को हराकर पदक अपने नाम किया, और एशियाई खेलों में ये पिंकी का दूसरा पदक है। आपको याद होगा जकार्ता में 2018 में भी उन्होंने 52 किलो से कम भार वर्ग में पदक जीता था और वो डेब्यू था कुराश का इन खेलों में। तो पिंकी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली में जेएनयू के पास में जो नेप्स राय में वहाँ अकेडमी में ये प्रैक्टिस करती है और लगातार काफी अनुभवी खिलाड़ी है, तो अपेक्षा थी उनसे पदक की और उस पर बिल्कुल खरे उतरते हुए उन्होंने ये पदक जीते। एथलेटिक्स में तो आज काफी बिजी डे है क्योंकि बैक टू बैक लगातार काफी सारे आज फाइनल होने हैं। हर्डल्स है, स्टिपल चेस है, लॉन्ग जंप है, फिर रिले टीम्स के हैं मुकाबले।
0: जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है, शानदार प्रदर्शन है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और भारत का पदक तालिका में स्थान और ऊपर आएगा और भारतीय खिलाड़ी ऐसे ही पदक जिताते रहेंगे। और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि स्वर्ण पदकों की संख्या भी और बढ़ेगी।
1: जी बिल्कुल, यही उम्मीद है। और हॉकी और जिस फॉर्म में टीम चल रही है, दोनों महिला और पुरुष टीमें, तो हॉकी के मैदान से भी 2 गोल्ड मेडल लाने की पूरी उम्मीद।
0: गोल्ड की बात की आपने तो महिला टीम ने जिताया है, नारी शक्ति का दम दिखा है वहाँ क्रिकेट में। और यहाँ पुरुष टीम का मुकाबला हालांकि बिना बारिश के ही समाप्त हो गया, सेमीफाइनल में पहुंच गई है टीम बेहतर रैंकिंग के कारण।
1: खेल कर पहुंचने की जो फीलिंग होती है वो थोड़ी अलग ही होती है यहाँ, लेकिन बारिश लगातार हो रही है और ये तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पता था। क्रिकेट में तो भारत के सामने कोई चुनौती है नहीं और हमने अपनी पूरी मजबूत टीम सितारों से सभी टीम भेजी है वहां पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, तो यहाँ से तो एक गोल्ड जिसको कहते हैं वो लग रहा है कि क्रिकेट के मैदान में है।
0: जी बिल्कुल, और बिल्कुल स्वर्णिम आस है और ये स्वर्णिम आस क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों से भी है। अभी और भी कुश्ती के भी मुकाबले होने हैं, अन्य खेलों में भी उम्मीदें जारी हैं दोनों हॉकी टीमों से है।
2: आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी। जी बिल्कुल।

0: कुल हॉकी से भी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें शानदार परवान चढ़ रही हैं, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आज ग्रुप में बांग्लादेश के खिलाफ पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला है। शिवांश, उस पर क्या अपडेट है आपके पास?
1: जी दोस्तों, एशियन गेम्स में अभी भारत और बांग्लादेश के बीच हॉकी का मैच हुआ, जिसमें 10-0 से उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इस मैच में भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा ने सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने 100 मुकाबले पूरे किए।
0: जी बिल्कुल, और प्रदर्शन की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड से भी शानदार खबरें आ रही हैं। और भारत के लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने एशियाई खेलों की पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक अपने नाम कर लिया है। श्रोताओं को याद होगा कि 10,000 मीटर में पहले ही रजत पदक जीत चुके हैं गुलबीर, और जापान के स्वर्ण पदक विजेता काचुतो इजावा के बाद वे दूसरे स्थान पर रहे। काचुतो ने 3:36.35 का खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। उनके हमवतन यानी जापान के ही नागिया मोरी ने 3:37.92 के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। एक अन्य भारतीय यूनुस शाह 3:43.88 के समय के साथ 9वें स्थान पर रहे। इससे पहले विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता, लेकिन लंबी दूरी के धावक अविनाश साबले पुरुष 3000 मीटर स्टेपल चेस फाइनल में अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने में नाकाम रहते हुए 4थे स्थान पर रहे। विद्या ने 54.75 के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता और महान धाविका पीटी उषा के 4 दशक से अधिक पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उनका मौजूदा खेलों में यह दूसरा पदक है। वैसे पहले 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। और श्रोताओं को अपडेट भी कर दें तालिका से, तो भारतीय जो प्रदर्शन है उसमें 4 गोल्ड शामिल हैं, 18 रजत पदक, 19 कांस्य सहित 41 पदक भारतीय खिलाड़ी अपने नाम कर चुके हैं। 4 गोल्ड में से 2 गोल्ड कबड्डी ने दिलाए हैं और अभी उम्मीद है कि भारतीय जो स्वर्णिम पदकों में और इजाफा होगा। शानदार प्रदर्शन अभी जारी है। बहरहाल चीन 128 स्वर्ण के साथ 225 पदक लेकर टॉप पर चल रहा है।
1: श्रोताओं, आपको एक और खबर बता दें कि एशियन गेम्स में हॉकी का फाइनल्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा।

तो ये शानदार प्रदर्शन जारी रहा है और भारतीय क्रिकेट टीम का। और शिवांश, फिडे चाहे अभी क्रिकेट पे भी बात करेंगे, भारत और वेस्ट इंडीज का जो बीच जो मुकाबला है वो शानदार ढंग से कल भारत ने अपने नाम किया पुरुष क्रिकेट टीम एशियाई खेलों में। हालांकि बिना बारिश के कारण ही मैच उसका रद्द हो गया, सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मुकाबला था वो भारत ने जीतने में सफल रहा है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और बात करते हैं इसी मुकाबले की जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ। एशियाई खेलों में जरूर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को वर्षा के कारण मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला, लेकिन भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने 50 गेंद शेष रहते जरूर मैच अपने नाम कर लिया। तिरुवनंतपुरम में हुए मुकाबले में रनों की बारिश हुई। वेस्ट इंडीज ने ओपनर जस्टिन ग्रेव्स के 101 और जॉन कैम्बेल के 62 रनों की मदद से 50 ओवरों में 7 विकेट पर 295 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम ने रन मशीन विराट कोहली के नाबाद 139 और कप्तान शुभमन गिल के 110 रन की बदौलत 40.4 ओवरों में ही 2 विकेट पर 300 रन बना लिए। विजयी रन विराट के बल्ले से छक्के के रूप में आया। विराट ने 88 गेंदों की अपनी पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाकर दिखाया कि उम्र के साथ उनका खेल और निखर रहा है। बल्लेबाजी में गियर बदलने का पुराना हुनर उनके पास है। टिककर खेलने की जरूरत हो या आतिशी अंदाज दिखाने की, वो ओल्ड इज गोल्ड हैं। इस दौरान विराट ने रिकॉर्डों की भी बारिश की। उनके नाम वनडे में 15,000 रन पूरे हो गए हैं और दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बाद वे ऐसा करने वाले महज दूसरे क्रिकेटर हैं। उन्होंने 15,000 रन सबसे तेज यानी 303 पारियों में पूरे किए हैं, जबकि सचिन ने ऐसा 377 पारियों में किया था। उनके भारत में वनडे में सर्वाधिक 7,006 रन हो गए हैं और वह इस मामले में शीर्ष पर हैं। सचिन की भारतीय धरती पर वनडे में 6,976 रन है। विराट का ये 55वां वनडे शतक रहा। अब उनके 15,080 रन हो गए हैं वनडे प्रारूप में। कप्तान गिल की अगर बात करें जिन्होंने 110 रन बनाए और वे विराट के साथ जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए 151 रन जोड़े। गिल का

0: वनडे में 10वां शतक रहा। प्लेयर ऑफ द मैच स्पिनर कुलदीप यादव रहे, जिन्होंने 10 ओवरों में एक मैडन फेंकते हुए 40 रन देकर 4 विकेट लिए। दरअसल ये कुलदीप यादव ही थे जिन्होंने वेस्टइंडीज को 300 से कम पर रोक लिया, वरना एक समय वेस्टइंडीज के ओपनरों ग्रेव्स और कैम्बेल ने 135 रन की साझेदारी कर मजबूत शुरुआत दिलाई थी। कैम्बेल को आउट कर कुलदीप ने ब्रेक थ्रू दिलाया और फिर कार्टी और शाई होप को पवेलियन भेजा। ग्रेव्स भी कुलदीप का ही शिकार बने थे। उसके बाद विराट कोहली ने एक शानदार पारी के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा, क्या कहा आइए जानते हैं।
1: My focus has never really been on these milestones, so to say. It's just understanding the situation along the course of just doing the job for the team. Whatever, you know, achievements come along, obviously I feel very grateful and you know, very blessed to be in this position for having played for so long. And yeah, just keeping my head down, working hard, and thanking God for everything that I've been blessed with and the opportunities that you know, I've gotten in my life to be where I am. It's we have a very blessed life and a blessed journey because so many people want to be here, but yeah, we get to be the lucky ones. So you know, we better put our head down and just work hard every day of our lives. Or just the understanding of your game, firstly. Right? Also, at the stage that I'm at, you know, just keeping myself physically very fit because the game's more or less in the mind. I've never been a guy who practiced a lot, even you know, when I was playing all three formats, as you know. So it's just for me about staying mentally fresh, staying in the present moment, and just expressing myself really out there to, you know, play in a certain way, get used to this template more often. I got a challenge at this stage of my career to kind of up the ante and, you know, play a gear or two higher. And yeah, that was exciting for me to work on. Again, it excites you when you have to unlock a new version at this stage of your career, which will eventually help, you know, any team that you play for, be it playing for India or in the IPL. It's really helped me a lot to play with a free mind. And I think that's what's working for me. But I think to follow a free mind, you need a fit body. So for me, it works the other way around. I stay physically fit and then I'm able to visualize the game in the way that I want to play, which allows me the best chance to go out there and execute. And I'm just very grateful and happy, to be honest. Like, you know, it's I think the only thing we need to do is just look back once and, you know, where we came from. That's something that we tend to forget when we are caught up with, you know, the hustle of the world and the positions we get into with so much attention and fame and, you know, so much love from the fans. It can be very easy to forget where you came from. But I think just looking back at the journey from when you started as a child just makes you feel grateful. I enjoy each and every minute that I'm out.
0: जी हाँ, बिल्कुल, लगातार इतने लंबे कैरियर में अपने अब खेल का लुत्फ उठा रहे हैं और कल की पारी उनकी ऐसे ही नजारा था। बहरहाल, अब चलते हैं शिवांश के पास, जो फिडे चेस की रिपोर्ट पे बात करेंगे।
2: शतरंज की बिसात पर हर चाल अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। कभी कुछ सेकंड का फैसला पूरी बाजी बदल देता है, तो कभी घंटों की जद्दोजहद के बाद एक छोटी सी बराबरी भी टीम के लिए पदक तय कर देती है। समरकंद में खेले गए 66वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने भी ऐसी ही कई यादगार बाजियां खेली। खिताब भले इस बार भारत के हाथ नहीं आया, लेकिन भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पदक जीते और देश ने एक बार फिर अपनी सामूहिक का परिचय दिया। आइए जानते हैं इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत की प्रदर्शन की पूरी कहानी। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 16 से 27 सितंबर तक 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड खेला गया। इस बार प्रतियोगिता में ओपन और महिला वर्ग को मिलाकर 400 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत दोनों वर्गों में अपने पिछले खिताब का बचाव करने उतरा था। पहले बात पुरुष वर्ग की। भारत ने अंतिम दौर में हंगरी के खिलाफ मुकाबला खेला और ये मैच 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की ओर से अर्जुन एरिगेसी ने पीटर लेको को हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। आर प्रज्ञानंदा और निहाल सरीन की बाजियां बराबरी पर छूटी। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश को ग्लेव डूडीन से हार का सामना करना पड़ा। इस 2-2 के नतीजे के बाद भारत के खाते में 18 मैच अंक रहे और टीम ने रजत पदक हासिल किया। उज़्बेकिस्तान ने यूक्रेन को 2.5 और 1.5 से हराकर 20 मैच अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी ने नेदरलैंड्स को 2.5 और 1.5 से हराकर कांस्य कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो डी कुकेश ने 11 बाजियों में 8.5 अंक हासिल किए और बोर्ड 4 पर व्यक्तिगत रजत पदक भी जीता। आर प्रज्ञानंदा ने 10 बाजियों में 6.5 अंक, निहाल सरीन ने 10 बाजियों में 6 अंक और अर्जुन एरिगेसी ने 10 बाजियों में 5.5 अंक बनाए। अब रुख करते हैं महिला वर्ग का। भारतीय महिला टीम भी अंतिम दौर में जॉर्जिया के सामने थी। भारत और जॉर्जिया

0: बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। इस मुकाबले में वंतिका अग्रवाल ने लेला के साथ अपनी बाजी ड्रॉ की, जबकि दिव्या देशमुख को बेला से हार मिली। भारत के लिए सबसे अहम मुकाबला सविता श्री और मैरी के बीच रहा। सविता श्री ने कठिन स्थिति से वापसी करते हुए अपनी बाजी ड्रॉ कराई। इस नतीजे के बाद भारत ने महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। चीन ने वियतनाम को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि कजाकिस्तान ने पोलैंड के साथ 2-2 की बराबरी के बाद रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम में कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, वैशाली रमेश बाबू, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री शामिल थी। इस पूरी प्रतियोगिता में सविता श्री का प्रदर्शन खास तौर पर उल्लेखनीय रहा। उन्होंने बोल्ट 5 पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतिम दौर में जॉर्जिया के खिलाफ उनकी 6 घंटे तक चली बाजी में उन्होंने मुश्किल स्थिति से निकलकर बराबरी हासिल की और भारत के कांस्य पदक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इस पूरे प्रदर्शन की सबसे खास उपलब्धि की बात, भारत ने नना गैपिन डैश ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम की है। यह ट्रॉफी ओपन और महिला दोनों वर्गों में किसी देश के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है, यानी यह किसी एक खिलाड़ी या किसी एक टीम का पुरस्कार नहीं, बल्कि पूरे देश के दोनों वर्गों के प्रदर्शन का सम्मान है। भारत ने 2022 के चेन्नई ओलंपियाड और 2024 के बुडापेस्ट ओलंपियाड में भी यही ट्रॉफी जीती थी और अब 2026 में समरकंद में भी इसे बरकरार रखा है। इस तरह 46वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारत के खाते में 2 टीम पदक आए। पुरुष टीम ने रजत और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत दोनों वर्गों में पदक हासिल करने वाला एकमात्र देश भी रहा और इस पूरे सफर में एक बात जरूर सामने आई, शतरंज में जीत सिर्फ राजा और वजीर की चालों से नहीं बनती, बल्कि पूरे टीम की निरंतरता, धैर्य और मुश्किल पलों में सही फैसला लेने की क्षमता से भी बनती है। समरकंद में भारतीय खिलाड़ियों ने यही सामूहिक ताकत दिखाई। तो समरकंद की बिसात पर भारत ने इस बार 2 पदकों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। स्वर्ण से भले 1 कदम दूर रहे, लेकिन पुरुषों का रजत, महिलाओं का कांस्य और लगातार तीसरी बार नना गैपिन डैशविली ट्रॉफी अपने नाम करना भारतीय शतरंज के लिए इस ओलंपियाड की बड़ी उपलब्धियां रही। शतरंज की दुनिया में बाजियां खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी चालों की याद लंबे समय तक रहती है। समरकंद से भारत
1: अभी जो कल मुकाबले एशियाई खेलों में खेले जाने हैं और भारतीय खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद की जानी है, शिवांश उस पर क्या बताना चाहेंगे?
0: एशियन गेम्स में मुकाबले अब उस मोड पर पहुंच चुके हैं जहां हर प्रदर्शन पदक तालिका की तस्वीर बदल सकता है। 29 सितंबर को एथलेटिक्स के कई अहम फाइनल है। मुक्केबाजी में सेमीफाइनल की चुनौती है, जबकि तीरंदाजी, निशानेबाजी, साइकिलिंग और दूसरे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी मैदान में होंगे। आइए जानते हैं कल किन मुकाबलों पर रहेंगे भारत की खास नजर। एथलेटिक्स में पुरुष की पोल वॉल्ट के फाइनल में कुलदीप कुमार और देव मीणा, महिलाओं की हाई जंप में पूजा सिंह और सुप्रिया सिंदीगेरे बसफ राजू, महिला हैमर थ्रो में तान्या चौधरी और अनुष्का यादव, जबकि पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह भारत की चुनौती पेश करेंगे। ट्रैक पर सबसे खास मुकाबलों में मिश्रित 4x100 मीटर रिले का फाइनल होगा। भारत ने आज की हिट में गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, अभिनया राजा राजन और हरिता भद्रा की चौकड़ी के साथ फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम ने 41.54 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। अब कल फाइनल में पदक की चुनौती होगी। मुक्केबाजी में लवलीना प्रिया गंगास, परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और नरेंद्र बरवाल सेमीफाइनल में उतरेंगे।
1: यहाँ जो मुकाबले महत्वपूर्ण हैं और मुक्केबाजी का एक ताजा अपडेट दे दें, कपिल पोखरियाल जो भारतीय मुक्केबाज हैं उन्होंने 90 किलो भार वर्ग में दक्षिण कोरिया के किम गिजाऊ को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को मेरे साथी
2: शिवांश को दीजिए
1: अनुमति। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन

0: अल नहीं आने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: Annually, we have been meeting regularly.
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems, and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan. Addressing media,

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: मंजीत बहन
1: जी निरंकार भाई,
0: भाई देखिए हम अपने कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को समय समय पर बहुत सारी जानकारी देते हैं और आज जो हम खास चर्चा कर रहे हैं आज है विश्व रेबीज दिवस।
1: जी बिल्कुल।
0: और जो रेबीज बीमारी है ये कुत्ते के काटने से, बिल्ली चूहा इनसे फैलती है, बंदर के काटने से। तो ज़रूरी है कि अगर ये पशु आपको काट लेते हैं तो आपको तुरंत टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि रेबीज ऐसी बीमारी है अगर ये फैल जाती है तो इसका नियंत्रण मुश्किल होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज विश्व रेबीज दिवस है और हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। आज का जो मुख्य उद्देश्य हम यही कहेंगे कि जो रेबीज बीमारी है जिसके परिणाम है बहुत ही भयानक होते हैं, और रोकथाम की अगर बात करें, उपाय की बात करें, तो लोगों को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। अगर इतिहास पर भी हम नजर डाल ले तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुईस पास्टर की पुण्यतिथि को समर्पित है आज का दिन, क्योंकि उन्होंने पहला रेबीज रोधी टीकाकरण तैयार किया था और पहली बार 28 सितंबर 2007 को ये मनाया गया था। और जिस तरीके से एक साथ मजबूत अगर हम कहें तो आज का ये थीम भी है। और अगर हम बचाव की बात करें, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पशुओं के काटने से होती है, जैसे कि अगर हमने बताया आपको संक्रमित जो कि जानवर होता है विशेषकर बिना टीका लगाए हुए जो कुत्ते हो गए अन्य जानवर हो गए उनके काटने से या फिर

0: उन्होंने अगर हमें कहीं खरोच भी मार दी तो उससे भी ये रेबीज की बीमारी फैलती है, और ये बहुत ही घातक होती है, घातक होती है। और एक बार रेबीज के जो जो लक्षण है उसके बारे में बता दें कि ये 100% घातक होती है, और टीकाकरण समय पे करवाना बहुत ही आवश्यक है। और प्राथमिक उपचार की बात करें तो जानवर के काटने पर तुरंत बाद ही हमें घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए, और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन को लगाना चाहिए। बिल्कुल,
1: बिल्कुल, बचाव में ही राज है। और अब हम अपने भाइयों को सुनवाते हैं एक रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट। 69वां जो एनएफएड का 69वीं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है 2026 की, उस पर एक रेडियो रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं।
2: दिनांक 26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेफेड की सामान्य निकाय की 69वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेफेड के अध्यक्ष जेठाभाई अहीर, नेफेड के उपाध्यक्ष तरलोक सिंह, नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल, क्रमको के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और नेफेड के निदेशक मंडल के सभी सदस्य और पूरे देश से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले नेफेड के अध्यक्ष जेठाभाई अहीर ने सभी का स्वागत करते हुए नेफेड के कार्यकलापों के बारे में जानकारी देते हुए कहा,
3: आज नेफेड की 69वीं वार्षिक साधारण सभा में देश के विभिन्न विभागों से आए हुए नेफेड के सामान्य निकाय विशिष्ट प्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित मेरे बोर्ड के सहयोगी, नेफेड के प्रबंधक निदेशक, सभी सम्मानित सहकार बंधु, मीडिया और मेरे मित्रगण, नेफेड के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, नेफेड की इस 69वीं वार्षिक साधारण सभा के बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे गर्व हो रहा है, नेफेड वर्ष 1958 से किसानों की सेवा में समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। पिछले 5-7 वर्षों में नेफेड का वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये तक हो गया है। जबी नेफेड की टर्नओवर वर्थ 360 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि कुशल प्रणाली, प्रभावी प्रबंधन तथा समर्पित प्रयासों का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण एवं कृषि विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ देश के विशाल सहकारी तंत्र को आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक फसलें पहले कही गई है। सहकारिता मंत्रालय की और 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नेफेड द्वारा 4 महत्व डिजिटल एवं किसान हितेशी पहलों, नेफेक्स इन, दृष्टि, ईआरपी, नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब के कर कमलों द्वारा किया गया। ये केवल नई परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं बल्कि भारत की कृषि एवं सहकारिता व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेफेक्स इन ऑक्शन के माध्यम से खरीद, आपूर्ति, वित्त और एक मंच पर लाकर बिलिंग, कमीशन एवं भुगतान निश्चित होता है। नेफेड ने पूरे भारत के नए स्टोर स्थापित करने के अपने खुदरा क्षेत्र उल्लेखनीय विस्तार किया है। भविष्य में 50 नए स्टोर खोलने की योजना है। ये स्टोर पैक्स, सहकारिता समितियों, एफपीओ के माध्यम से खोले जाएंगे, जिसका लाभ उनको भी प्राप्त होगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नेफेड पिछले कई वर्षों से सेना को दलहन की आपूर्ति कर रहा है। अब आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब नेफेड द्वारा सेना को भारत चावल की भी आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा नेफेड के विभिन्न प्रदेशों जैसे असम, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात कल्याणकारी योजना के ICGS MDM अंतर्गत उत्पादों को आपूर्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री मछली संपदा योजना PMMSY के तहत नेफेड के पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 500 मौजूदा मछली सहकारिता मंडलियां को फिर से सक्रिय किया है और 50 मछली के FPO बनाए हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा किसानों के इससे जुड़ा गया है। करीब 10,000 मौजूदा सहकारिता समितियां धीरे धीरे पारंभिक मछली उत्पादन और व्यापार से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन और उद्यम विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसके आय बढ़ाने और बाजार में विस्तार के नए रास्ते खुल रहे हैं। नेफेड कार्य क्षेत्र विस्तार अपने उत्पादनों के

0: विश्वसनीयता, गुणवत्ता, शुद्धता एवं प्रामाणिकता के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ता के महत्वाकांक्षा और बाजार की प्रतिस्पर्धा के नफेड़ ब्रांड की विश्वसनीयता बना रखने के लिए क्वालिटी सेल की शुरुआत की गई है, जिसमें भारत कार्यरत कर्मचारी जगह जगह बार उत्पादों को निर्माण के प्रतिक्रिया एवं उत्पादों की गुणवत्ता के जांच करेंगे। इसको इस सशक्त बनाने के लिए नफेड़ अपनी आधुनिक लेब बनाने पर भी विचार कर रही है। मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस वर्ष में संस्थान के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। संघ का कुल कारोबार 29 करोड़ रुपये हो रहा है, जबकि उनके 568 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है। शुद्ध लाभ 423 करोड़ रुपये रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस स्तर का प्रदर्शन भारत सरकार और सहयोग निदेशक मंडल के स्तर पर किए गए नीतिगत निर्णयों के सम्मानित सदस्य संघ सोसाइटियों सहयोग के संभव से हो सका है। अंत में मैं अपने सदस्य बोर्ड के अपने सहयोगी और नफेड के प्रतिनिधियों को उनके निरंतर मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपका सहयोग भविष्य में जारी रहेगा और सब मेंबर सोसाइटी को सूचित करते हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं तो आप हमको बताइए। ये साल भी हमने बहुत सारी सोसाइटियों को आमंत्रित करेंगे।
1: नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल द्वारा सभी का स्वागत करते हुए नेफेड की साल भर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए अपने संबोधन में कहा गया,
2: इस 69वें एजीएम के अवसर पर मंचासीन माननीय चेयरमैन महोदय, दोनों वाइस चेयरमैन महोदय, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित निदेशक महोदय, अन्य सम्मानित मंचासीन अतिथिगण और हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले वित्तीय वर्ष में जो नेफेड में आप लोग के सहयोग से और आप लोग के आशीर्वाद से जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है उनको रखना चाहूँगा। सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन विगत कई सालों से एजीएम होती है, इस बार भी रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन आप लोग ने इस बार के रजिस्ट्रेशन में एक अंतर पाया होगा कि हम लोग ने तकनीक का उपयोग करते हुए ऑनलाइन मैकेनिज्म से सबका रजिस्ट्रेशन किया। पिछले सालों में जो समय लगता था रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस में, उसमें सरलता आई। ये छोटा सा इनोवेशन है, लेकिन ये सिद्ध करता है कि नेफेड अब बदल रहा है। और नेफेड में ये बदलाव केवल वित्तीय नहीं है, हम उनके सदस्यगणों में उनके जो अंतिम कड़ी है किसान, उसको कहां तक लाभ पहुंचाए, ये हमारी उपलब्धि है। और हमारा नेफेड का नारा भी यही है, किसान से किचन तक। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वित्त वर्ष में हमने करीब करीब 19,000 करोड़ का टर्नओवर किया और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पीएटी वो हमारा करीब करीब 423 करोड़ रहा और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 568 करोड़ रहा। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने पिछले साल केवल पीएसएस में करीब करीब 37 लाख मेट्रिक टन का दलहन और तिलहन हम लोगों ने प्रोक्योर किया। और ये प्रोक्योरमेंट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में हमारी सीएनए होती थी, जो हम लोग सेंट्रल नोडल एजेंसी बोलते हैं, जो नेफेड और एनसीसीएफ तरह की संस्थान होती है। उसके बाद एक एसएलए होता था जो स्टेट लेवल एजेंसी होती थी। उसके बाद जो प्राइमरी प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती थी, भारत सरकार का जो सहकार से समृद्धि तक का जो पूरा नारा है, उसी के क्रम में उन्हें एक निर्णय हुआ कि चार दालों में तूर, उड़द, मसूर और चना, इनमें नेफेड और एनसीसीएफ सीधे प्रोक्योरमेंट कर पाएगा विदाउट एसएलए ऑल्सो। मतलब एसएलए रहेंगे, लेकिन एसएलए के अलावा भी सीधे नेफेड स्टेट में जाकर इन चार दलनों में सीधे प्रोक्योरमेंट कर पाएगा। और इसमें निदेशक मंडल और आपके सहयोग के साथ साथ ये निर्णय हुआ, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में नेफेड अपनी मेंबर सोसाइटीज को प्राथमिकता देगा प्राइमरी प्रोक्योरमेंट सेंटर बनने के लिए। और उसमें सीधे 1% का सर्विस चार्ज हमारे प्राइमरी प्रोक्योरमेंट सेंटर को मिलेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग ने पिछले बार जो हम लोग की ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट से हम लोगों ने 2.7 लाख मेट्रिक टन केवल हमने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट से खरीदा, जिसका वैल्यू करीब 653 करोड़ है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि ई समृद्धि जो पोर्टल जो भारत सरकार के निर्देश पे बना, वर्तमान में पहले हम लोग डीबीटी करते थे, जो बैंक अकाउंट किसान का है उसी के खाते में जाता था, उसमें प्रक्रिया में सुधार करते हुए हमने दो बड़े कदम और उठाए। आज की तारीख में ई समृद्धि से जो भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है, उसमें न सिर्फ वो सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जा रहा है,
3: लेकिन हमने आधार सीडेड बैंक अकाउंट कर दिया कि अगर कोई बैंक अकाउंट किसान गलती से या किसी कारणवश अगर गलत भी दे देता है तो उसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, उसका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर से जो

0: जुड़ा हुआ अकाउंट है, ऑटोमेटिकली सीधे उसका पैसा आधार सीडेड बैंक अकाउंट में जाएगा बिना किसी बिचौलियों की मदद से। नंबर टू, आधार में भी हमने बायोमेट्रिक कर दिया है कि जो किसान है उसका चाहे तो फिंगरप्रिंट या उसका फेशियल जो फीचर्स है उसका जो आधार लिया जाता है उससे ऑथेंटिफिकेशन होता है। अब किसी भी किसान भाई या बहन को दो बार तीन बार रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, हर प्रोक्योरमेंट सीजन में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, एक बार केवल उसको अपना बायोमेट्रिक्स देके आधार नंबर देना होगा, उसके बाद केवल आधार नंबर से वो अपना जो जिनसे है उसको वो बेच पाने में सक्षम होगा। बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हम किसानों को कैसे सबसे ज्यादा मूल्य प्रोवाइड कर सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ा सके, उस दिशा में नेफेड 1274 एफपीओस को आज हैंडहोल्ड कर रहा है। करीब करीब 800,000 से ज्यादा किसान सीधे जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग मैनेजमेंट कॉस्ट दे रहे हैं, उनकी सीईओ की सैलरी दे रहे हैं, उनके अकाउंटेंट की सैलरी दे रहे हैं, जितना पैसा वो अपने इक्विटी के रूप में लगा रही है उतना ही मैचिंग इक्विटी ग्रांट दे रहे हैं। उस तरीके से जो एफपीओ के साथ जुड़े हुए किसान है उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस मिल सके। हम लोग एक और ये प्लान बना रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे अमूल और उसमें व्यवस्था है कि जो भी हमारी रिटेल प्राइस है उसका कितना परसेंटेज हम वापस किसानों को दे पा रहे हैं, उसमें हम लोग का प्रयास होगा कि 70-80% जो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं अपने व्यवसाय के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यू वापस किसान तक कैसे पहुंचे। उसके अलावा पहले नेफेक्स प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से जितने भी दलहन है तिलहन हम लोग खरीद करते थे उसकी ऑक्शन करता था, हम लोग ने नेफेक्स नाम से अपना खुद का पोर्टल बनाया जो माननीय सहकारिता मंत्री ने अभी विगत दिनों उसका उद्घाटन किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि उसका काफी अच्छा हम लोग को अभी जो अनुभव प्राप्त हो रहा है। और इससे न सिर्फ नेफेक्स अपने जिंसों का ऑक्शन करेगा बल्कि दूसरे संस्थाओं का भी ऑक्शन हमारे पोर्टल पे हो पाएगा, जिससे नेफेक्स के माध्यम से नेफेड को आमदनी भी होगी, क्योंकि जो पोर्टल में जो ऑक्शन जीतता है उसका एक छोटा सा परसेंटेज उस पोर्टल को भी जाता है, उस पोर्टल के ऑक्शन के माध्यम से नेफेड के आमदनी में भी वृद्धि होगी। उसके अलावा जितने भी हमारे वेयरहाउसेस हैं उसमें जितनी भी इन्वेंट्री है वो सबको ऑनलाइन ट्रैक कर दिया गया। आज आप अपने मोबाइल फोन से अपने कंप्यूटर पे जितने भी हमारे गोडाउंस हैं उसमें किन सालों की कौन कौन सी फसलें रखी हुई हैं, कितनी पुरानी हैं, उसका लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ, रियल टाइम, और वो जियो लोकेटेड है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब उसमें दिया हुआ है। उसके माध्यम से आप सीधे देख सकते हैं कि कौन से गोडाउन में कौन सा माल, कौन सा दलहन, कौन सा तिलहन किस वर्षों का रखा हुआ है। इसके अलावा एक हम लोगों ने कल्याणकारी बनाया कि किसान से हम उनका दलहन तिलहन तो ले रहे हैं लेकिन आज जो वही किसान भाई या बहन उनके अगर बच्चे अगर वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, मेधावी हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण वो नहीं आगे पढ़ पा रहे हैं, तो चेयरमैन साहब के निर्देशन में निर्णय लिया कि नेफेड अपना शुद्ध लाभ का 1% उन मेधावी छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए यूज करेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि उस स्कीम का भी उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री ने कर चुका, उसमें ऑलरेडी कुछ लोगों को हम लोग ने छात्रवृत्ति दी भी है। और मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो ई समृद्धि से जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे को अगर कोई आने वाले पढ़ाई में अगर वो मेधावी है तो उनको 1,00,000 तक की स्कॉलरशिप हम लोग विभिन्न स्कीम में देते हैं, जिसमें वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहे, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना चाहे, या फिर अगर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में भी उनको अगर 90% से ऊपर नंबर आ रहे हैं 11th 12th करना चाहे उनको अप टू 1,00,000 रुपीस हम लोग स्कॉलरशिप नेफेड अपने संसाधनों से देगा कि किसान भाई अपने पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने में ऐसा ना हो कि वो पढ़ा ना पाए।
1: नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल द्वारा सहकार बंधुओं के समक्ष 69वीं सामान्य निकाय की बैठक का वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया।
0: आज का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो एजीएम है उसके जो फॉर्मल एजेंडे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें हम लोग जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें हमारी जो अनुमानित जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एक्सपेंडिचर का उसका अनुमोदन हर बार एजीएम से कराते हैं, तो जो इस वर्ष का हम लोगों ने अनुमानित जो टर्नओवर रखा है वो करीब करीब 45,000 करोड़ का रखा है और जो शुद्ध लाभ हम लोग अपेक्षित कर रहे हैं इस बार 567 करोड़ कर रहे हैं। तो ये जो एनुअल बजट है वर्ष 2026-27 का मैं एजीएम से अनुरोध करना चाहूंगा कि एस्टिमेटेड हमारा बजट एनुअल बजट को अनुमोदित करें। फीफा हमारी एक सब्सिडरी संस्था है जो 1274 जो हमारे एफपीओस को हैंडल करते हैं उसका काम करती है, वो 100% नेफेड की सब्सिडरी संस्था है, तो उसका भी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी हमारी जो प्रमोटर जो संस्था है नेफेड उसके समक्ष रखा जाना होता है, तो वो आपके समक्ष रखा गया है वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फीफा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फीफा हमारी एक सब्सिडरी संस्था है, 1274 जो हमारे एफपीओस को हैंडल करते हैं उसका काम करती है, वो 100% नेफेड की सब्सिडरी संस्था है, तो उसका भी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी हमारी जो प्रमोटर जो संस्था है नेफेड उसके समक्ष रखा जाना होता है, तो वो आपके समक्ष रखा गया है वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फीफा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
1: और अंत में नेफेड के उपाध्यक्ष तरलोक सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा,
2: बहुत ही सत्कार जो चेयरमैन साहब जेठा भाई अहीर जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, पूर्व चेयरमैन बजिंदर सिंह जी, श्री चंद्रपाल जी, अशोक ठाकुर जी और मेरे नेफेड बोर्ड के मौजूदा सभी सदस्यगण और कोने कोने से आए किसान भाई बहनों, मीडिया के साथियों और नेफेड के कर्मचारीगण, जैसा कि आपके सुझाव से बढ़कर कल्याण योजना के तहत 1% नेफेड ने किया है, तो आपका जो भी सुझाव होता है, जो भी समस्या होती है, नेफेड का बोर्ड, नेफेड के कर्मचारी उसको समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं उनका सम्मान करते हुए आप सभी को मैं 69 वार्षिक जो सम्मेलन है एजीएम है उसमें आए हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इसी के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेफेड की 69वीं सामान्य निकाय की बैठक पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग दिनेश कुमार, संयोजन शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
3: तो अभी आप सुन रहे थे 69वां एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की, बिल्कुल रिपोर्ट सुन रहे थे। और निरंकार जी, अब भाई ये बताइए कि अब हम गीत की ओर बढ़े या फिर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में है क्योंकि आज भगत सिंह का जन्मदिन भी है।
4: बिल्कुल, हमने अपने लोकरंजनी कार्यक्रम में भी जिक्र किया था कि आज शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिन है और उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गाँव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। और उन्होंने क्रांतिकारी थे वो, हमारे आंदोलन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज शहीद भगत सिंह हम सभी युवाओं के आदर्श हैं और हम उन्हें आज यह सभी याद कर रहे हैं। तो सुनते हैं उन्हीं से, जीवन से उनसे जुड़ा हुआ ये एक देशभक्ति गीत।

0: और मंजीत बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और इसमें कलाकार थे यशपाल। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम
1: राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
1: एनुअली वी हैव बीन मीटिंग रेगुलरली।
2: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
1: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और

0: सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि अब किसान बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधियां का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। वहीं महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने रजत पदक देश के नाम किया। भारत के ही रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: मंजीत बहन
1: जी, निरंकार भाई,
0: भाई आज जो कृषि से जुड़ी जानकारी हमारे पास है, आज हम भाइयों से बातचीत करेंगे कृषि संबंध में। और हम जानते हैं कि जो पानी की हम जब बात करते हैं, बिना पानी के कोई भी फसल उगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इसीलिए पानी बहुत कीमती है, उसका बचाव करना ज़रूरी है। और कई फसलें ऐसी हैं जिनमें आप कम पानी से भी अच्छी उपज ले सकते हैं। हमारे देश के कुछ बारानी इलाके हैं, उनमें हम उन्हीं फसलों को शामिल करते हैं जिससे कि पानी की कम ज़रूरत के साथ भी हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। और जब हम पलेवा करते हैं या हम अपने खेत की तैयारी अच्छी से करना चाहते हैं तो उसमें पानी की खपत बहुत होती है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर जैसे इस समय बारिश हो रही है या पहली फसल की सिंचाई के बाद थोड़ी नमी बची है, तो ऐसी नमी को हम बचा कर रखते हैं मल्चिंग करके। और उस नमी के अंदर ही हम अगर सरसों और चने की फसल को लेना चाहते हैं, उसकी बिजाई कर देते हैं, तो अंकुरण के बाद वो फसलें हमें अच्छा उत्पादन दे सकती है। क्योंकि सरसों और चना ऐसी फसलें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और चने के लिए तो बहुत ज़्यादा भूमि की तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये हमें अच्छा उत्पादन दे देती हैं। तो जो संरक्षित मृदा है उसकी नमी से हम अपने खेत की तैयारी करके अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पानी की बचत करते हुए फसलों का उत्पादन भी अच्छे से ले सकें। और इसके अलावा जो हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई इस समय रबी फसल की बिजाई की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सितंबर समाप्त होने को है और जो खड़ी फसलें

0: देने से बहुत अच्छी फसल नहीं होगी, ये भी हम बताना चाहेंगे। जरूरी है अगर ज्यादा पानी आप देते हैं तो कई बार फसल को अधिक नमी से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए जो सिफारिश वैज्ञानिक करते हैं उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी की जब हम बात करते हैं तो स्प्रिंकलर विधि है, टपक विधि है, ये बताया जाता है कि आप इसका इस्तेमाल करके कम पानी का इस्तेमाल करते हुए भी भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, और भरपूर उत्पादन आपको मिलेगा, साथ साथ गुणवत्ता भी आपकी फसल की अच्छी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी में भी बीमारियां बढ़ती हैं। और इसी तरह से अगर उर्वरक भी ज़्यादा मात्रा में आप देते हैं उसका भी नुकसान होता है। बार बार हम कार्यक्रम में बताते हैं कि वैज्ञानिक जो आपको सलाह देते हैं, जब आप उसके मुताबिक अपनी कृषि को करते हैं आपका खर्चा भी कम आता है और उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही आपको अच्छी मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और संरक्षित मृदा की हम बात करें नमी में, सरसों और चने की सफल बुआई करके और बरानी या फिर कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी बंपर पैदावार की जा सकती है। और खेत की तैयारी की बात करें और नमी संरक्षण की बात करें तो कम या फिर शून्य जुताई, यानी कि खेत की जो बार बार जुताई करने के लिए जो मिट्टी जो होती है वो नमी पड़ जाती है और हवा में वो उड़ भी जाती है, तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और पाटा लगाना, यानी कि जुताई के तुरंत बाद खेत में भारी पाटा जरूर चलाएं और मिट्टी की ऊपरी परत समतल हो जाती है जिसकी वजह से उसको फायदा मिलता है। मल्चिंग की, जैसा कि आपने बताया, मल्चिंग बहुत जरूरी है हमारी उपज के लिए भी। और सरसों की बात करें, सरसों की सफल बुआई की अगर हम बात करें तो सही समय जो है वो अक्टूबर का हो जाता है जो कि आने वाला है। और बीज की बात करें, बीज दर और उपचार भी हमें बहुत आवश्यक है। किसी भी अगर हम कोई भी उपज लेते हैं तो उसके लिए हमें अच्छा बीज जरूर लेना चाहिए और उसको उपचार करके ही हमें अपने खेत में लगाना चाहिए। और अगर हम बुआई की बात करें तो गहराई और दूरी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन का भी हमें समय समय पर नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ सल्फर गंधक उनका भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी सरसों की जो फसल है वो बेहद उनके लिए जरूरी है और जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में हमें सरसों मिल पाएगी। और चने की बात करें तो चने का सही समय भी अक्टूबर और नवंबर के बीच का होता है, और मिट्टी के अंदर नमी की जरूर जांच कराई ली जाए और गहरी और गुड़ाई की जाए। इसकी जो हम गुड़ाई करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से हर तरीके से उनमें जितनी भी जरूरतमंद की चीज़ें होती है वो हमारी मिट्टी में पहुंचेगी और अच्छी उपज मिलेगी। और बीज की दर और फासला भी इसमें भी बहुत जरूरी है। तो निरंकार भाई, क्या कहते हैं कि और किन किन बातों का हमारे जो किसान भाई बहन है उनको ध्यान रखने की जरूरत है?
0: हाँ, आपने विस्तार से जिक्र कर ही दिया है, तो ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रख करके हमारे किसान भाई सफल उत्पादन ले सकते हैं। और जब आप बात करते हैं, हम संतुलित बात की, चाहे वो खाद है चाहे बिजली पानी है, इनका संतुलित उपयोग करके हम अपना खर्चा कम कर सकते हैं। जब खर्चा कम होगा तो आपकी आमदनी अपने आप ही बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: तो आमदनी आपको बढ़ानी है, गुणवत्ता आपको बढ़ानी है। और अब बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 का शुभारंभ किया, और इसमें राज्यों को स्पष्ट उनका तालमेल बना रहे, वैज्ञानिक योजनाएं बनाए, जमीनी निगरानी के साथ साथ रबी सीजन की तैयारी पूरी करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों के बीच अब पुराने तरीकों को नहीं बल्कि डेटा आधारित योजना और केंद्र राज्य साझेदारी से भी खाद्य सुरक्षा और किसान आय के लक्ष्य पूरे होंगे। तो जो ये कार्यक्रम हुआ है इस पर एक रेडियो रिपोर्ट अपने किसान भाइयों को हम सुनवाते हैं, तो आइए सुनते हैं रबी अभियान पर ये रेडियो रिपोर्ट।
2: आज दिनांक 28 सितंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार NASC परिसर पूसा में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा रबी अभियान 2026 के लिए भारतीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया, और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक आगामी रबी मौसम की प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र राज्य तालमेल को मजबूत करने तथा कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और

0: किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक समन्वित और परिणाम उन्मुख रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री संजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने इस अभियान की प्राथमिकताओं और कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए अपने संबोधन में कहा,
1: मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, साथ ही माननीय राज्य मंत्रीगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित सभी राज्यों से आए वरीय पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और विभिन्न योजनाओं को संचालित करने वाले सभी संचालकगण, आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता ये दिखा रही है कि हम सब एक देश एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान की जो रूपरेखा है राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और इस राज्यों के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य है कि राज्य अपनी बात बता सके, अपनी जो अच्छी बातें वो बताएं, कोई चुनौती आ रही है उसके बारे में बताएं, तो इसको लेकर के सभी राज्यों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और कल इस मंच से कुछ प्रस्तुतिकरण होंगे और सभी राज्यों के कृषि मंत्री भी उपस्थित रहेंगे और वो अपनी बात और अपने राज्यों का जो स्थिति है उसके बारे में प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सबने सहभागिता की, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ।
0: डॉक्टर एम एल जाट, DGICAR और सचिव डेयर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
2: 2047 की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल एग्रीकल्चर, रिस्क रिडक्शन, ये सारे के सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हमारा मुख्य जो फोकस है वो ऑयल सीड और पल्सेज पे है और आने वाली रबी सीजन में इस पे हमें काफी फोकस करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन दोनों साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कि हमें फोकस्ड एजेंडा पे काम करना है। जैसे एक एरिया है जो राइस फैलो का है जो हमें इंटेंसिफिकेशन की तरफ ले जाता है, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। हम सब लोग राइस फैलो पे काम करते हैं लेकिन सारे इकट्ठित होकर टारगेटेड वे में यदि इस पे फोकस करेंगे रबी में तो हमें कुछ सफलता मिलेगी। एक मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए पूरा पैकेजिंग, कौन सी क्रॉप कहाँ पे, कौन सी वैरायटी, उसका सीड, कौन सा मैकेनाइजेशन, उसमें बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, सीड ट्रीटमेंट के, ये सारी चीजों पे पैकेजिंग की बात करने की जरूरत है। दूसरा है कि हमें ऑयल सीड पल्सेज के कॉन्टेक्स्ट में जो यील्ड गैप्स हैं उनके डिटरमिनेंट क्या है उसको करके ताकि हम जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसको टारगेट कर सके, टारगेटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये विषय है। तीसरा विषय मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का अभी कृषि मंत्रालय का ICAR के साथ मिलके एक स्टडी हुई है, मुझे लगता है हमें प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है। हमारा टिलेज मैकेनाइजेशन ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे 100%, तो जहां पे गैप है उस पे फोकस करने की जरूरत है। हालांकि ऑयल सीड पल्सेज का इंडेंट में हमने अच्छी प्रगति की है लेकिन बाकी क्रॉप्स में अभी इंडेंट में जो आता है उसमें थोड़ा सा इश्यू है और स्पेशली जैसे प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर का इंडेंट काफी ज्यादा आता है। लेकिन यदि सीड शेयर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा तो इंडेंट नहीं आता तो सीड कहां से आता है, मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा सा मंथन चिंतन होना चाहिए। एक हमारा रबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है ताकि हमारी सही रूपरेखा बन पाए। हमारे ICAR के लोग स्टेट्स के डिस्पोजल पे हैं तो जिन जिन स्टेट्स में अभी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है उनमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक हमें बेस्ट प्रैक्टिसेज अभी एलनिनो के कॉन्टेक्स्ट में ही यदि हम देखें तो कई सारे स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। आगे की रबी की परिस्थिति भी क्योंकि बारिश को देखते हुए जैसी होने वाली है तो हमारी प्रिपेयरनेस उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फर्टिलाइजर आत्मनिर्भरता मुझे लगता है सबसे बड़ा एक विषय है और उसके लिए एक अप्रोच नहीं, एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है। उसमें अभी जनरल जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो भी रिवाइज हुई है, उसके ऊपर भी काफी बड़ा एक फोकस है, मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे इंडिजिनस सोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, उनका सही उपयोग करके सोयल हेल्थ को ठीक करके कैसे हम फर्टिलाइजर का डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट है उस पे कम कर सकते हैं।
0: श्री अतीश चंद्रा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार ने सम्मेलन की पृष्ठभूमि और आगामी रबी अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
3: देखिए रबी कॉन्फ्रेंस एक टाइम टेस्टेड व्यवस्था रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम जो सीजन हमारा गुजरा है उसको देखें और आगे जो हमारा सीजन आने वाला है उसको हम कैसे उत्कृष्ट रूप से इम्प्लीमेंट करें। सभी ने देखा है कि इस बार जो हमारा खरीफ सीजन गुजरा है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, स्पेशली जो रेनफेड एरियाज हैं वहाँ पे राज्यों को काफ़ी दिक्कत हुआ, पहले तो क्रॉप कवरेज इंश्योर करने में और बाद में अब क्रॉप के सर्वाइवल का जो एक चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, और जो रबी सीजन है वो भी जो रेनफेड एरिया है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, और उसमें जो हमारी प्राथमिकताएं हैं कृषि की वो बहुत वेल लेड आउट है। देखिए, हम लोग ने सीरियल्स प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इस देश ने परफॉर्म किया है और हम लोग ने काफ़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल की है, लेकिन वहीं हमारा जो पल्सेज, ऑयल सीड्स, हमारा हॉर्टिकल्चर रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो उसमें हम अभी भी बहुत बड़ा आयात कर रहे हैं। तो जो पहली बात है सेल्फ सफिशिएंसी की, जो हमारी प्राथमिकता है, और उसी के संग डाइवर्सिफिकेशन उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो हमको डाइवर्सिफाई करना होगा, और डाइवर्सिफाई करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको हमको सामना करना पड़ेगा। वो चाहे हमारे रिसर्च पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के चैलेंजेस हैं, वो हमारे जो क्लाइमेट रेजिलियंस के चैलेंजेस हैं, जो उससे रिलेटेड इनकम के चैलेंजेस हैं, उन सबको हमको सरकमेंट करना पड़ेगा, उन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे रबी सीजन में भी आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो काफ़ी चैलेंज रहेगा इन स्टेट्स जहाँ पर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस रहा है, यहाँ पे डेफिसिट रही है रेन की, तो वहाँ पे हमको अपने रबी सीजन को कैलिब्रेट करना होगा। जो दूसरा है कि जब हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बनाना होगा। जो थर्ड हमारा मुख्य देश रहा है प्राथमिकता में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन हो, और खासकर पोस्ट प्रोडक्शन में जो हमारे ऑन द फार्म लॉसेस हैं उसको लगातार कम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना होगा।
0: माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा,
4: भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी, डीजी आईसीआर और सचिव डेयर एमएल जाट जी, और राज्य से आए हुए सभी अधिकारी मित्रों, सबसे पहले आज मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज रवि की कॉन्फ्रेंस के लिए मित्रों हम यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियाँ, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रवि की जब हम बात करते हैं तो खरीफ, जिसमें बहुत चिंता थी मन में, क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है, तो अभी कल खबर आई कि यूपी में कई मौत इसलिए हो गई कि भारी बारिश के कारण हो गई। क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। अलनीनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा आप सबको, पूरी टीम को, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह। मैं आज इस बैठक में ही आपको आग्रह करना चाहता हूं, खरीफ की फसल का कुछ जगह खराब होने के खतरे पैदा हुए हैं। कर्नाटक ने भी सूखा डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र ने भी, लगभग दो तिहाई राज्य में उन्होंने अपने यहाँ राज्य के स्तर पर सूखा घोषित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ राज्यों को, केंद्र सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। 3 अक्टूबर को कर्नाटक में केंद्रीय टीम भेजेंगे सूखे का अध्ययन करने के लिए। जहाँ संकट है वहां मिलकर मुकाबला करना है, और रबी की तैयारी भी करनी है। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए, और जिन हिस्सों में देश के कम पानी है वहां कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है। वहाँ पानी सीमित है, उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूँ कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पर खड़े हैं एकदम। रेनफेड इलाके में तो जल्दी अब बोनी शुरू हो जाएगी, और जो रेनफेड नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था है उसकी तैयारी हम अलग से रखें।

0: दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें, फिर जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उत्पादन ठीक नहीं आएगा, और इसलिए समय पर सारी तैयारी कर लीजिए। और मैं ये मानता हूं कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज, और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी को देखते हुए, यहाँ भरपूर पानी है वहाँ आप देखिए कौन सी किस्म, यहाँ पानी की कमी है वहाँ कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। कई बार मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कुछ राज्य पर्याप्त मात्रा में ना तो बीज की डिमांड करते हैं ना बीज उठाते हैं, और कई जगह बीज का वितरण इतनी देरी से होता है कि जब तक वो बीज आते हैं तब तक बोनी हो जाती है, फिर वो बीज जो बहुत उपयोगी है, और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए। अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर मसूर उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें, बीज की उपलब्धता, उसका उठान, उसका उनका वितरण, इसका पूरा रोड मैप बनना चाहिए समयबद्ध। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा राज्य में आप एक मजबूत टीम एग्रीकल्चर बनाइए, केवीके को जोड़ने की बात हुई है, एफपीओच को जोड़िए। एक जो बात अभी डाइवर्सिफिकेशन की कही थी, अब डाइवर्सिफिकेशन करना तो ये राइस फैलो पे काम अभी से करना पड़ेगा, हर एक राज्य विशेषकर पूर्वी भारत के राज्य। मेरा आग्रह है राइस फैलो में आप दलहन की बोनी की पूरी रणनीति बनाइए उपलब्ध नमी की आवश्यकता को देखते हुए। तो मुझे लगता कि हमारे ये सम्मेलन परिणाम मूलक हो पाएगा, और एक मुझे लगता है हर सप्ताह हमने एक सिस्टम यहाँ विकसित करने की कोशिश की है कि एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं हम, जिसमें फसलों की क्या स्थिति उसकी जानकारी लेते हैं, फसलों की स्थिति, मार्केट के रेट, बीमारी का अटैक, रियल टाइम में सारी चीज पता चलनी चाहिए। एक और अपनी ड्यूटी है कि उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, लेकिन संतुलित उपयोग हो, ये हमारी राज्य की भी ड्यूटी है भाई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। खेत बचाओ अभियान हमने खरीफ की फसल में चलाया था, रबी की फसल के लिए भी खेत बचाओ अभियान चलना चाहिए, माटी भी बचाना है, मित्र कीटों को भी बचाना है। इसलिए संतुलित इस्तेमाल कैसा हो इसकी कोशिश आप कीजिए। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए भी एक मौका है, हम इस समय रबी में प्राकृतिक उत्पादों के लिए रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, किसान भी आगे आए, लेकिन राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। हमको कोशिश करना पड़ेगा कि इस दिशा में भी हम काम करें।
1: इसी के साथ रबी अभियान 2026 के लिए भारतीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार मीणा, संयोजक शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
2: तो भाइयों बहनों, और अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट जो कि रबी अभियान 2026 पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन पर थी, जो कि नास कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका आज से शुभारंभ हो चुका है और ये कल तक चलेगा।
3: बिल्कुल, और अब हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें इंतजार होगा मनोरंजन का, तो क्या सुनवा रहे हैं?
2: बिल्कुल, अब हम सुनवाएंगे जो कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

तो अभी आप कलाकार सुन रहे थे भूपिंदर सिंह की आवाज में नर से ज्यादा धानी। और अभी हम आपको बता दें, जिस तरह से हम आप सभी जानते हैं कि अलग अलग दिवस आज हम मना रहे हैं, और आज विश्व रेबीज दिवस के साथ साथ अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना तक पहुंच दिवस भी आज यानी कि 28 सितंबर को मनाते हैं, और यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 2015 को इस दिवस की घोषणा कर दी गई थी, और 2016 से इसको मनाया जाने लग गया था, और 2019 में संयुक्त महासभा ने भी इसे आधिकारिक

0: रूप से मान्यता दे दी थी। और उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सूचना के अधिकार के महत्व को समझाना, जानकारी जो है वो सही जगह पर पहुंचाना, मुफ्त में और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है, और ताकि लोकतांत्रिक व समावेशी समाज का निर्माण हो सके। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिन जो ये जो दिन हम आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सही इन्फॉर्मेशन और सटीक जानकारी पाना, और इंसान को जो बुनियादी अधिकार भी है, और जिससे कि वह अपने जीवन और समाज के बारे में एक सही फैसला भी ले सके।
1: और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और अगर उससे हमारा एक भी श्रोता लाभान्वित होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजते रहिए। और मंजीत बहन, अब हमारे जो घड़ी से मिल रहा है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है हमारा, तो भाइयों से हम इजाज़त लेते हैं। सभी सुनने वाले बहन भाइयों को राम
0: राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर
0: और संयोजक शिवनंदन लाल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: मैं हर चिलमन
1: चिलमन चिलमन
0: मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा।
2: ना डर जालिम जमाने से अदा से या।
3: आप सुन रहे थे गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: ला लूं आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जिन मतदाताओं को विसंगतियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को आसान बनाना तथा उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में जाने की जरूरत कम करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने विद्यार्थियों से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। ये शिविर बुधवार तक चलेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। दावों और आपत्तियों पर नोटिस और उनके निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में श्री यादव ने

0: दिल्ली के 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने शमशान घाटों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी उपाय तलाशने और विद्युत शवदाह गृहों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली उपलब्ध है। धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों के पुनर्विकास और फुटपाथ निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जारी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। इसके साथ ही 10 संपत्तियों को सील किया गया और 7 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। नगर निगम ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कड़ी निगरानी बनाए रखें और दिल्ली मास्टर प्लान, भवन उपनियमों तथा अन्य संबंधित नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। नगर निगम ने कहा कि ये प्रवर्तन अभियान राजधानी के सभी 12 जोनों में जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्यमियों, व्यापारियों, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयां और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुंच मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आगे भी पोर्टल में और अधिक सेवाओं को जोड़ने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करेगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मंजेंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि अभी तक 15 विभागों को पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।
3: सभी दिल्ली डिपार्टमेंट्स को अब तक हमने 15 डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड ले लिए हैं, 50 से ज्यादा सर्विसेज कर दी हैं। अगले महीने तक 100 से ज्यादा सर्विसेज और 21 डिपार्टमेंट जो हैं वो इसके ऊपर ले लिए जाएंगे।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी इतर जा रही बाइक यात्रा आज दिल्ली बॉर्डर पहुंची। इस अवसर पर यात्रियों का स्वागत करते हुए दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा मार्ग में निरंतर सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है।
4: इस यात्रा का सबसे शानदार पक्ष ये है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत यात्रा निकली है और जहां भी जा रहे हैं वहां सेवा के कार्य को कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी आते ही यहां से सीधा वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए गए हैं, उसके बाद हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान भी सभी यात्री करेंगे।
0: इसके बाद यात्रा वाराणसी के लिए पुनः प्रस्थान करेगी। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज गिरधर लाल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर पंत ने बताया कि अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उप महापौर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क रेबीज जागरूकता और टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। NDMC ने बताया कि इस शिविर में पालतू पशुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, एंटी रेबिस टीकाकरण और पशु चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही पशुओं की देखभाल और रेबिस की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया।

0: केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग की पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं की पॉलिसी जारी करने, बीमा दावों के निपटारे, निगरानी और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की यात्रा के दौरान लीमा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने पेरू और पड़ोसी बाजारों में भारतीय व्यवसायों की उपस्थिति के विस्तार की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय केवल आर्थिक योगदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी हैं, जो भारत और पेरू के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi.com और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: सरकार ने राजधानी की समृद्ध कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और शैक्षणिक क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत साझेदारी को स्थापित कर सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली सरकार ने बताया कि इस समझौते के अंतर्गत राजधानी के स्थापित और युवा कलाकारों को ICCR की प्रतिष्ठित होराइजन सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ICCR के विशिष्ट शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विदेशी अतिथियों और विद्वानों की मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। इस समझौता में ICCR से जुड़े विदेशी छात्रों के लिए राजधानी में अध्ययन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे राजधानी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। वहीं दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए आवश्यक खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 2.5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये गिरफ्तारी ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की गई है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
4: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह भारत के शौर्य, साहस और स्वाभिमान की अमर चेतना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली की विश्वविद्यालय के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन के 35वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि ऐसे अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को निरंतर सफलता और भविष्य में अनेक नई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस पाने वाले मतदाताओं के से बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कल से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा, तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध। सरकार ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच सांस्कृतिक शैक्षणिक सहयोग पर समझौता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। आरंभ में आइए सुनते हैं आशिकी 2 फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने।

अगला गीत हमने लिया है कुछ ना कहो फिल्म से, जिसे आवाजें दी है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में अब आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। तो अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत। फिल्म है कसूर।

यारा दिलदारा, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी की के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

1920 Evil Returns, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर की स्वर में। गीत शकील आजमी का लिखा है और संगीत चिरंतन भट्ट द्वारा रचित है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
3: Annually, we have been meeting regularly.
4: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार,

0: तो वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
4: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
3: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
5: So if you want to make more export,
6: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
5: 6%
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले

0: बात की गई थी, इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
2: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
2: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
2: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3 मिनट

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर दाखला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निजाम वजा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज किया। भारत और मुत्तहद अरब अमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को $200 अरब तक पहुंचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्कसाली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों और निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ। और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में यशवीर सिंह ने चांदी का तमगा जीता। श्री शंकर मुरली ने लॉन्ग जंप, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ और ईशा सिंह ने निशानेबाजी में चांदी के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में परहार सीटी पॉलिसी और हिकमत अमली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। ये कॉन्फ्रेंस परहार के 7 कलीदी सतूनों पर गौर खौज करेगी, जिनमें रोकथाम, जवाबी रद्दअमल, दाखिली सलाहियत में इजाफा, इंसानी हकूक, दहशतगर्दी के हालात में कमी, समाज के हमागीर नजरिए के तहत बैन अक्वामी कोशिशों से हमाहंगी, बाजियाबी और मुजाहमत शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी की सभी शक्लों और मजाहिर को हरगिज बर्दाश्त न करने का नुक्ते नजर अपनाया है। उन्होंने वाजे किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने साल 2019 से साल 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से भारत से भागे हुए 288 मुजरिमीन को मुल्क वापस लाया है। जनाब शाह ने कहा कि एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की बदौलत हथियारों, धमाका खेज मवाद और मुनशियात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलविस शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया। वहीं 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई और 15 रियासतों से 350 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए किए जा रहे इकदामात का जिक्र करते हुए वजीर दाखला ने फ्रेमवर्क के हर सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के खुदकार जवाबी रद्दअमल को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत की। जनाब शाह ने हवालगी से मुतालिक नए पोर्टल का भी आगाज किया, जो बैरून मुल्क ममालिक से मफरूर मुलजमीन को वापस लाने की कोशिशों को तेज करेगा और उन्हें मुताबकत पैदा करेगा। भारत और मुत्तहद अरब अमारात मकामी करेंसियों में तजारत की अदायगियों से मुतालिक इकदामात के बरवक्त नफाज पर राजी हो गए हैं। इनमें अदायगी और मैचिंग सिस्टम को मरबूत करना और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसियां शामिल हैं। आज मुंबई में सरमायाकारी पर भारत मुत्तहद अरब अमारात आला सतही मुश्तरका टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग के दौरान दोनों फरीक इस मुआहदे पर पहुंचे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और अबूजबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हामिद बिन जायद अन्नायान ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने अपने बयान में कहा है कि ये मामलात अहम हैं, क्योंकि इनसे दो तरफा तजारत और सरमायाकारी ज्यादा मुअसर, काबिल रसाई और पायदार हो सकती है। तवानाई, सनत, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत, खला, खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तराआत और स्टार्टअप इकोसिस्टम वो शोबे हैं जिनमें दो तरफा सरमायाकारी को फरोग दिया जा सकता है। मीटिंग के बाद नामनिगारों से गुफ्तगु करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने इस साल अशिया और खिदमात की मजमूई बरामदात के हजम को गुज़श्ता साल के $863 अरब से बढ़ाकर $1 खरब करने का निशाना मुकर्रर किया है। जनाब गोयल ने कहा कि जामे इक्तिसादी साझेदारी मुआहदे के तहत भारत और मुत्तहद अरब अमारात के दरमियान दो तरफा तजारत दुगनी होकर तकरीबन $100 अरब तक जा पहुंची है। दोनों ममालिक साल 2032 तक दो तरफा तजारत को $200 अरब तक ले जाना चाहते हैं।

0: उन्होंने मजीद कहा कि फूड प्रोसेसिंग और बरामदात में वसीतर इश्तराक से भारतीय किसानों को यकीनी तौर पर बाजार मिलेंगे, साथ ही नौजवानों और एमएसएमईज के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि भारत और मुत्तहद अरब अमारात तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जखायर एलएनजी और एलपीजी सप्लाई और जेर समंदर मुमकिन गैस पाइपलाइन के मैदान में ताउन के इम्कान तलाश कर रहे हैं। बहरी शोबे में जदीद बंदरगाहों, बहरी जहाज साजी, बहरी जहाजों की मरम्मत और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकजी हुकूमत कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अपनी टीमें रवाना करेगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 से मुतालिक कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की हुकूमतों ने अपनी रियासतों के बड़े हिस्सों में खुश्क साली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि खुश्क साली की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 अक्टूबर को मरकजी टीम कर्नाटक भेजी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मुश्किल हालात में मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: जनाब चौहान ने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर ये खदशात थे कि अनिनो के असरात से काश्तकारी का रकबा कम हो सकता है और बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ताहम वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क ने खरीफ की फसलों की बुआई के तकरीबन तमाम मुकर्रा अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जनाब चौहान ने मुल्क भर में खादों की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म का यादा किया। उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुनासिब मकदार में खाद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर मौसूफ ने खाद के मुतवाजन इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया ताकि जमीन की जरखेजी को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि खाद का इस्तेमाल सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड में पेश की गई सिफारिशात के मुताबिक किया जाए और खासतौर पर मिट्टी में मौजूद गजाई अज्जा की कमी को दूर किया जाए। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल बीमा पॉलिसी जारी करने से मुतालिक मामलात, दावों, निगरानी और रिपोर्टिंग को आसान बनाते हुए मवेशियों के लिए एक ही जगह मरबूत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे की मवेशियों की बीमा स्कीम के तहत बीमा किए गए मवेशियों के लिए यह मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का मकसद मवेशियों की बीमा खिदमात को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर, काबिल रसाई और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाना है। साथ ही मवेशियों के हामिल किसानों और उनकी गुजर बसर की पायदारी को मदद करने की खातिर जोखिम से मुतालिक तहफ्फुज को तकवीत देना है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: पशुधन बीमा पोर्टल मुल्क भर में मवेशियों के बीमा प्रोग्रामों में खिदमात की बेहतर फराहमी में तआवुन करते हुए बेहतर तालमेल, बरवक्त निगरानी और डेटा पर मबनी इंतजाम में मदद करेगा। जनाब सिंह ने कहा कि यह पोर्टल किसानों की गुजर बसर के तहफ्फुज़ की जानिब अहम कदम है और किसान की आमदनी बढ़ाने, उसके ज़रई असासों और मवेशियों के तहफ्फुज़ और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए की तकमील करता है। जनाब राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के ज़रिए किसान अब अपनी बीमा दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, वहीं इस पूरे अमल की डिजिटल निगरानी की जाएगी।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
2: पशुधन बीमा पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 मुकामी जबानों में भी दस्तियाब होगा, जिससे मवेशियों के मालिक किसान उनकी अपनी जबान में मालूमात और खिदमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी

0: है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि इमदाद बाहमी की वजारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
1: भारत के इमदाद बाहमी के शोबे में 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोसाइटियां शामिल हैं, जिनके 32 करोड़ से ज्यादा मेम्बरान हैं। ये सोसाइटियां कर्ज, डेयरी, चीनी, माही परवरी, मकानात और मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और मुल्क के देही इलाकों के तकरीबन 98% हिस्से का अहाता करती हैं। साल 2021 तक इमदाद बाहमी की खातिर अलग से कोई वजारत नहीं थी। इसकी जिम्मेदारी वजारत ज़राअत के पास थी, जो मुख्तलिफ महकमों और रियासतों में तकसीम थी, जबकि बेशतर बुनियादी सोसाइटियाँ अब भी कागज़ों पर अपने रिकॉर्ड रखती थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जुलाई 2021 में इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील अमल में आई। इस वजारत ने मुल्क में अपनी नौईयत का पहला कौमी कोऑपरेटिव डेटाबेस तैयार किया, ताकि मुल्क में मौजूद इमदाद बाहमी के इदारों का दुरुस्त रिकॉर्ड मुरतब किया जा सके। इसके अलावा बैन रियासती कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और बुनियादी ज़रई कर्ज सोसाइटीज PACs को कंप्यूटराइज करने के लिए माली मदद फराहम की गई। वजारत ने कोऑपरेटिव बैंकों को फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT के निज़ाम से भी मुंसलिक किया। 2024 में नई दिल्ली में मुनक्किदा आलमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि का नज़रिया पेश किया और कहा कि यह लाखों गांवों, ख़वातीन और किसानों के लिए खुशहाली की राह हमवार कर रहा है।
2: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: कल से दिल्ली भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दिगर तालीमी इदारों में नौजवान वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। ये कैंप वोटर फहरिस्त की खसूसी जाम नजरसानी SIR 2026 के तहत लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये खसूसी कैंप बुध तक जारी रहेंगे। भारत और मंगोलिया के दरमियान आज से बराह रास्त प्रवास शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बातार के दरमियान बाकायदा तौर पर प्रवास का आगाज किया गया। इस सर्विस के शुरू होने से दोनों राजधानी के दरमियान सफर का वक्त कम होकर तकरीबन 5 घंटे हो जाएगा। ये प्रवास मंगोलिया की फजाई कंपनी हुन्नू एयर के जरिए चलाई जा रही है और हर पीर को दस्तयाब रहेगी। इस नए फजाई रास्ते से उन मुसाफिरों के सफर का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा, जो इससे पहले बीजिंग या इंचियोन के जैसे मकामात पर परवाज तब्दील करके सफर करते थे। इस सफर में आमतौर पर 13 से 18 घंटे लगते थे। बुनियादी घरेलू इशारे में आज 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 1,124 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और वो गुज़िश्ता 6 महीनों के सबसे निचले मकाम पर पहुंच गया। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और वो 22,800 से नीचे बंद हुआ। इस गिरावट के असबाब खाम तेल की कीमत में इजाफा, खित्ते की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल और कमज़ोर आलमी रुझानात हैं, जिनका असर सरमायाकारों के जज्बे पर पड़ा है। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज भारत ने मजीद 8 तमगे जीते हैं। इनमें निशानेबाजी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कुरश और मुक्केबाजी शामिल हैं। एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के यशवीर सिंह ने चांदी का और रोहित यादव ने कांसे का तमगा जीता। वहीं मर्दों की लॉन्ग जंप में भारत के श्री शंकर मुरली ने 8 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। मर्दों की 1,500 मीटर की दौड़ में गुलवीर सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजीद मुस्तहकम निज़ाम वज़ा करने पर जोर दिया है। उन्होंने हवालगी के नए पोर्टल का आगाज़ किया। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात ने मकामी करेंसी में तजारत से मुतालिक इकदामात नाफिज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद 2032 तक बाहमी तजारत को $200 अरब तक पहुँचाना है। मरकजी टीमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में खुश्क साली के हालात का जायजा लेने के लिए दोनों रियासतों का दौरा करेंगी। हुकूमत ने पशुधन बीमा पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद मवेशियों का बीमा, दावों, निगरानी के निजाम को आसान और मुअस्सर बनाना है। भारत और मंगोलिया के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू हो गई है। सेंसेक्स 6 माह की कमतरीन

0: सतह पर पहुंच गया और ये 72,772 पर बंद हुआ और एशियाई खेलों 2026 में भारत ने मजीद 8 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, जनता के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन जब अचानक कोई बीमारी घर का दरवाजा खटखटाती है तो इलाज के खर्चे की चिंता जैसे चेहरे की सारी मुस्कान छीन लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बगैर किसी आर्थिक बोझ के बेहतरीन इलाज पा सके। जी हाँ, हमारा देश इसी दिशा में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति का गवाह बन रहा है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की, जो सिर्फ सरकारी योजनाएं भर नहीं है बल्कि हर भारतीय नागरिक को सेहतमंद और आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब स्वास्थ्य सेवाएं भी आसान हो रही हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम गहराई से जानेंगे कि आप और आपका परिवार इन सेवाओं का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत ही देश की असल तरक्की है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी को। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हम आपको बता दें हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले मिलाना मत भूलिए दिल्ली का कोड, यानी 011, और फिर घुमाइए 233-1048 या 237-1117 या फिर 237-1106 और 233-1444 पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपने सवाल दोस्तों हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। आप हमारे ट्विटर @AIRNewsAlert पर भी टैग AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं कि हमारे एक श्रोता अभी हमसे लाइन पर जुड़ रहे थे और उम्मीद है कि फिर से वो लौटेंगे। बिल्कुल, हमारे श्रोता आ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी कहिए, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस उम्र के लोगों को किस तरह के इलाज को जो है सुविधा प्राप्त हो सकती है।
0: जी जी,
1: नमस्कार।
2: कौन से अस्पतालों में?
1: नमस्कार वाजपेयी जी, ये प्रश्न पूछने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो भी श्रोता हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो सुविधाएं हैं इनके बारे में समझाने में ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आयुष्मान भारत पीएम जय की योजना की जो लाभ है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो पात्र परिवार में होते हैं तो उनके लिए ये उपलब्ध है। तो जो भी पात्र परिवार है उनके जितने भी सदस्य हों, किसी भी उम्र के हों, वो इस लाभ का योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके। और अगर आप 70 वर्ष या उसके ऊपर के उम्र के हो तो आप भले किसी भी आय वर्ग के हो आपको इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, आपको आयुष्मान कार्ड आपका बना सकते हैं। और जहां तक बोले इलाज का सवाल है, आपको जो भी इलाज जो भर्ती होने योग्य है, जिसमें आपको एक दिन या उससे अधिक भर्ती होना पड़ेगा, जो IPD सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत 27 स्पेशल

0: के अंतर्गत 1961 अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप लेवा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ये सेवा जो है आप पूरे देश भर के अंदर लगभग 39,000 अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल तो है ही, इसके साथ साथ लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल भी हैं जो पंजीकृत हैं इस योजना के तहत। इसमें आप सेवा प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही कैशलेस सेवा है। आपको किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ट्रीटमेंट है वो निःशुल्क मिलेगा। आप जाएं, अपना कार्ड दिखाएं, पंजीकरण कराएं और जो भी आपकी सेवा है उसमें प्राप्त करें।
1: जी, हम बात करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके विषय में आपसे जानेंगे कि किन लोगों के लिए, ये तो 70 वर्ष में तो कोई आय की सीमा नहीं लागू हुई, लेकिन क्या है उसके विषय में जानेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, एक और हमारे श्रोता हिसार हरियाणा से हमारे साथ लाइन पर हैं, राजेंद्र जी। कहिए राजेंद्र जी, क्या है आपका सवाल?
2: मुनीष जी को नमस्कार और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: विशेष जी, ये जानना था कि जो नया कार्ड बनवाना हो तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होगी और क्या कब कब बनते हैं, ये इसके बारे में जानना था। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी। सबसे पहले आपको अगर अपना कार्ड बनाना है तो आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वो आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए से, या फिर 1455 14, ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। उस पे कॉल करके अपना कार्ड बनाने की जो जानकारी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड जो है बनाने के लिए आपको, आपके पास अगर जो राशन कार्ड है जिसमें आप इस योजना के तहत जो शामिल है इन परिवारों को पहले से ही लिस्ट करके हरियाणा सरकार ने जो अपलोड किया है हमारे पोर्टल पे, उस पे आप अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर डाल के आप इसको सर्च कर सकते हैं। इससे आप अपना आधार नंबर से अपना EKYC कर अपना कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ की जो अगर आपको ये चेक करना है कि आप पात्र है कि नहीं, आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में या CSC केंद्र में जाके अपनी ये जानकारी देके आप जो है कार्ड की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं पब्लिक स्पीक और चर्चा कर रहे हैं हम आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर, और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी हमारे साथ। तो आप भी हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अब पूछ रहे हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेश। कहिए योगेश जी, क्या है आपका प्रश्न?
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
3: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती है आयुष्मान भारत, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम केयर स्कीम चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि हम कौन सी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले और किस तरह से ले और पता कैसे चलेगा। क्यों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौड़ में हम इन दोनों ही स्वास्थ्य लाभों से वंचित रह जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आपकी जो स्कीमें होती है जहां पर क्लैश कर रही है सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो ऐसी स्थिति में हमें साधारण नागरिक को क्या करना चाहिए?
0: योगेश जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि PMJAY के अलावा हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगभग 56 अलग स्कीम चलती है जो राज्य सरकारों के भी है। लेकिन इसमें एक मुख्य विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप PMJAY के पात्र जो लाभार्थी हैं और उस योजना के अंदर पात्र हैं, तो आपके जो परिवार हैं, जो पात्र परिवार है, इनकी सूची पहले से तय की गई है और ये ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही डाला हुआ है। जहाँ तक राज्यों के स्कीम का सवाल है, और जो लोग इन योजनाओं में कवर नहीं होते हैं, मान लीजिए हिमाचल में मान लीजिए एक एक कुछ परिवार जो है पीएमजे के अंतर्गत आते हैं, और अगर उस

0: आप उस परिवारों में नहीं आए हैं, तो अन्य परिवार जो हैं जो राज्यों के स्कीम में ये कवर होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिमकेयर है। एंड ये भी एक मैं बताना चाहूँगा कि पीएम जय स्कीम जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है। इन मतलब आप इस स्कीम के अगर ये, क्योंकि और ये गरीब परिवारों के लिए है। आपको याद होगा 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, जिसमें परिवारों की जो जो गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार है उनका भी चिन्हांकन किया गया था। तो इन ऐसे परिवारों को चुना गया है कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं और गरीबी के जो 40% सबसे नीचे परिवार जो हैं उनको इसमें स्कीम में लिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है कुछ राज्य जैसे हिमाचल है, कई राज्य है जिन्होंने बाकी लोगों को कवर करने के लिए भी कुछ स्कीम लिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या पीएमजेएसवाई के अंतर्गत कवर्ड हैं, आपका परिवार उसमें है। उसके लिए बहुत ही आसान है, आयुष्मान ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और उसमें आप अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका परिवार पीएमजेएसवाई के अंतर्गत आता है कि नहीं। अगर पीएमजेएसवाई के अंतर्गत आता नहीं है तब आप देखिएगा कि आपके स्टेट का जो स्कीम है, राज्य के जो योजना है उसमें अंतर्गत कवर आप उसमें पा सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में आपको एक प्रीमियम फीस उसमें देनी होती है, एनरोलमेंट बेस्ड फीस है, वो करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में निःशुल्क है। तो आपके राज्य में जो स्कीम लागू है उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आप पीएमजेएसवाई के अंतर्गत कवर्ड है कि नहीं। और जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं चेक, 1455 पे कॉल करके चेक कर सकते हैं, और आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी आप ये पहले चेक कर सकते हैं।
1: जी, हिमाचल प्रदेश के बाद अब ये कॉल हमारे श्रोता कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान। कहिए क्या है आपका सवाल।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
2: सबसे पहले दो महान विभूतियों को, लता मंगेशकर जी को और भगत सिंह साहब को, मैं अब पूरे देशवासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनकी जन्म जयंती पर।
1: जी,
2: छोटे छोटे दो निवेदन सर। एक तो ये कि एक आयुष्मान कार्ड से एक फैमिली में कितने सदस्य कवर होते हैं। दूसरा ये कि अगर बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है तो कितने आधार, मतलब आर्थिक आधार तक पे उसके आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल सकती है।
1: जी, दो सवाल आपने किए कि कितने सदस्य, और दूसरा आपने उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके विषय में पूछा है। जी
0: राशिद खान जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि एक कार्ड पे परिवार के कितने सदस्य कवर होते हैं, मैं आपको इसमें आपको बता दूं कि जो पात्रता है इस योजना के अंतर्गत एक पूरे परिवार की है। तो अगर आपका परिवार पात्र परिवार में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति हो, दो हो, तीन हो या उससे अधिक हो, ये सारे जो हैं किसी भी उम्र के हों ये सभी इसमें कवर होते हैं। और रही दूसरी बात, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, ये मैं पहले बता दूं कि जो योजना के अंतर्गत जो शामिल करने की जो मापदंड है, जैसे मैंने कहा कि ऐसी सीसी सर्वे जो हुआ था उसके अंतर्गत अलग अलग पैमाने लगाए गए थे कि जैसे गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अलग अलग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आपका जो समग्र आईडी है, मध्य प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं तो आपके यहाँ समग्र आईडी का प्रचलन है, तो समग्र आईडी को के माध्यम से आप जो हमारा आयुष्मान ऐप है या व्हाट्सएप चैटबॉट है या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में इस समग्र आईडी को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप इन शामिल परिवारों में जो पीएमजे के अंतर्गत भी हैं और उसके अतिरिक्त जो राज्य की स्कीम के अंतर्गत है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये राज्य तय करते हैं। उसमें जैसे पहले जितने भी पीएमजे के अंतर्गत परिवार, लगभग 12 करोड़ परिवार पूरे देश में शामिल थे, उसके अतिरिक्त उसको बढ़ाते हुए लगभग 37 लाख परिवार अपने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के परिवारों को जुड़ा गया। उसके बाद फिर 70 वर्ष के ऊपर के प्रति उम्र के प्रति नागरिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इस तरह से जैसे पीएमजेए का जो मापदंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसके अंतर्गत अगर राज्यों ने अपना अपना स्कीम को एक्सटेंड किया है और परिवारों को शामिल किया है। तो मध्य प्रदेश में आप समग्र आईडी का उपयोग करके इस आपकी पात्रता को आसानी से चेक कर सकते हैं।
1: तो राशिद खान जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान अवश्य हुआ होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जगदीश जोशी जी। जोशी जी, क्या है प्रश्न?
3: सर नमस्कार।
1: नमस्कार
3: और शुभ संध्या आपको भी और जो विशेषज्ञ बैठे हैं इनको भी।
1: जी
3: तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी एज है 49 और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ टोटली, और घर में हमारे 5 मेंबर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं, जिसमें देखिए 2 बच्चे एडल्ट हैं, हालांकि वो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल जॉब वगैरह नहीं करते, और एक छोटा बच्चा है वो 6 में पढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा ये कार्ड बन सकता है? मेरे पास बीपीएल फैमिली से आता हूँ, बीपीएल कार्ड भी है, और दूसरी बात यह है कि हम 5 में 4 लोग मेंशन है उस कार्ड में, छोटा बच्चा जो उसको हमने 2018 से अप्लाई करा हुआ है, लेकिन वो बीपीएल कार्ड में उसकी एंट्री है नहीं, तो क्या उसको भी उस कार्ड का लाभ मिल पाएगा या नहीं, और कैसे और कहां बनेगा? तो मुझे इस बारे में थोड़ा अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी से अवगत कराएं सर।
0: जगदीश जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने दूसरे श्रोताओं से कहा है, पात्रता ढूंढने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका है हमारे कॉल सेंटर पे 14555 में कॉल करके पूछना, जिससे आपको समझ में आएगा, वो बता सकेंगे कि आप इस योजना में कवर है कि नहीं। और दिल्ली में जो पात्र परिवार हैं उनके लिस्ट में से चेक करके आपको बताया जाएगा। अगर आपके बच्चे आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान है। और दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा, अगर कोई भी परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों में शामिल होता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य इसमें कवर्ड हैं। इसमें आपको जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड है, उसमें आपके जो भी नए परिवार के सदस्य हैं, जैसे कोई जन्म हुआ किसी का, या किसी के शादी होने से कोई नई बहू आई, इस तरह से नए सदस्यों के जोड़कर ऑटोमेटिकली जो है आप के नए सदस्य जो है इस योजना में जुड़ जाएंगे।
1: जी, एक और हमारे श्रोता दिल्ली से ही धर्मवीर जी हमारे साथ लाइन पर हैं। धर्मवीर जी, प्रश्न कहिए अपना।
4: अनिल जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी जी,
4: मेरे 2 सवाल हैं कि जैसे मदर की सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार्ड बना, एक ही कार्ड बना, उसमें 5+5 लिखा आया है, ये क्या हम सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ही कार्ड माने? दूसरा, क्या अगर फैमिली में दूसरा भी कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसका भी अलग से कार्ड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। और साथ में ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राशन कार्ड में तो नए नाम तो कुछ जुड़ते नहीं है, चाहे परिवार में नया सदस्य आए, कोई बच्चा हो तो उसका नाम नहीं कहीं जुड़ पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? और लास्ट में एक छोटी सी बात और रखूंगा मुनीश जी, अभी लाइन पे बोला जा रहा था।
1: जी जी, जहां तक आपने बात कही राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़ पाता, वो एक अलग विभाग की समस्या है, लेकिन हाँ, जो आपका ये प्रश्न था उसके विषय में, जो पहला है उसके विषय में जरूर हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे।
0: धर्मवीर जी, जैसे आपने कहा है कि आपके परिवार में एक सदस्य है जो 70 वर्ष के ऊपर है, महिला है, और उनको कार्ड में दिया गया है जिसमें लिखा है 5+5, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो योजना चल रही है इसमें भारत सरकार के तरफ से जो 5 लाख का कवर दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार 5 लाख का कवर और दे रही है। तो इसका मतलब यही है कि उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी योजना के अंतर्गत आपको 5+5 पूरे 10 लाख का कवर का लाभ मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य जो सीनियर सिटीज़न बाद में होंगे, उन्हें भी इस आयुष्मान व्यय वंदना के अंतर्गत कवरेज मिलेगा, जिसमें आपके अभी जो मौजूदा लाभार्थी हैं वो, और जो भी नए लाभार्थी 70 वर्ष के अतिरिक्त ज़्यादा होंगे तो उनको भी इसी योजना के अंतर्गत जोड़ के उसको एक परिवार मान के दोनों को 5+5 लाख का जो है लाभ दिया जाएगा। उनका भी कार्ड जो है, जैसे ही वो 70 वर्ष पूरा करते हैं तो उनका भी कार्ड बनाया जा सकता है।
1: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे भास्कर साहब कि आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है वो क्या है, उसका दायरा और किस तरह से जो उसकी प्रगति

0: है और आम लोगों तक क्या उसकी पहुंच है इस विषय में, बताइए।
1: ये तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और फ्यूचरिस्टिक योजना है, जो आने वाले जो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जो भी डेवलपमेंट है, इन सब का लाभ किस तरह से हेल्थ सेक्टर में लाया जाए और उससे जो जो लाभार्थी हैं, जो सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उनको बेहतर सेवाएं दिया जाए, इसके लिए ये स्कीम बेसिकली बना गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग अस्पताल हैं या कोई लैब हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो निजी अस्पताल भी हैं और सरकारी अस्पताल ही भी हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तरीके से जोड़ना, ताकि जो भी मरीज़ हैं उनके जो आज के दिन में जो हेल्थ रिकॉर्ड बनते हैं, कोई डॉक्टर की डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, या कहीं आप भर्ती होते हैं तो उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट मिलता है, या कहीं आप टेस्ट कराने जाते हैं तो उसका टेस्ट रिपोर्ट मिलता है, आज के दिन में हमारे पास एक कागज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य ये है कि इन सभी को डिजिटाइज किया जाए, ताकि डिजिटल तरीके से इन सभी कागज़ों को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाए तो इतना बड़ा कागज़ों का गट्ठा ले जाने के बजाय ये डिजिटल माध्यम से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से ये डेटा चला जाए। और जैसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री, ये किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी अलग अलग समस्याएं हुई हैं स्वास्थ्य के, उन सब की जानकारी हो साथ में, ताकि जब भी आप एक नए केस के लिए, नए इश्यू के लिए डॉक्टर के पास जाए तो उनको पता हो कि अच्छा 2 साल पहले क्या हुआ, उस समय आपने क्या दवाई ली, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि आपको आज बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। सो जैसे यूपीआई के माध्यम से आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन हर जगह कर पा रहे हैं, इसी तरह ये पूरा तंत्र जो है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर जो नागरिक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, और सारे हेल्थ सर्विसेज को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, और लेटेस्ट तकनीक को उपयोग करके ये दूर दराज इलाकों में भी ये सेवाएं को और स्पेशलिस्ट सेवाओं को बेहतर तरीके से देने का एक ये प्रयास है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी, जो आभा नंबर कहते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 98 करोड़ लाभ आभा नंबर बन चुके हैं, और इसके माध्यम से जहां आप अस्पताल में जाएं तो वहां इस नंबर से पंजीकरण हो, ताकि जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं उन सभी जो दस्तावेज हैं डिजिटल रूप में एक जगह पे उपलब्ध हो, ताकि आपको आगे बेहतर सेवाएं मिल सकें।
0: जी हाँ, यानी कोशिश कुल मिलाकर ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, कि जो रोगी हैं, मरीज हैं, उन्हें अपनी पर्चियां, पुरानी रिपोर्ट, फाइलों के बंडल लेकर के घूमने की जरूरत न पड़े और उपचार उन्हें सरलता से उपलब्ध हो। हमारे श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरुनाथ जी। जी गुरुनाथ जी, कहिए क्या है प्रश्न
2: हाँ
0: आपका।
2: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मेरा तो 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। ये जो आयुष्मान कार्ड है उसके अंतर्गत दायरे में के मतलब कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है हेल्थ के रिलेट, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये जो कितने मतलब प्राइवेट सेक्टर या सरकारी हॉस्पिटल सभी इसमें जुड़े हुए हैं। और मेरा तीसरा सवाल है, जब कोई प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल इसको कभी कभी देखा गया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते बिल के बारे में जब बोला जाता है, तो इसके बारे में कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है, इसके बारे में।
1: गुरुनाथ जी, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं पहले कह रहा था, इस योजना के अंतर्गत 27 स्पेशलिटीज के अंतर्गत लगभग 1961 प्रोसीजर, जिसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, हृदय रोग के संबंधित सभी रोग, डायलिसिस, आँख के संबंधित रोग, और इस तरह के कई सारे जो स्पेशलिटी है इसके अंतर्गत, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, और कैटरैक्ट ऑपरेशन है, और जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है।

0: 1961 अलग अलग प्रोसीजर है। लगभग जो भी बीमारियां होती हैं आम तौर पे, जिसमें आपको सर्जरी करानी पड़े या किसी में आपको भर्ती करना पड़े, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी उसमें आवश्यकता हो, इस तरह के सभी बीमारियां कवर हैं। जैसे मैं कहूँगा कि लगभग लगभग सभी बीमारियां जो हैं इसमें कवर्ड हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पूरे भारत में लगभग 39,000 अस्पताल हैं जहाँ पर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही आपको ये लाभ मिलेगा। आप अगर गुजरात जाएँ या दिल्ली आएँ या कहीं भी अगर जाना पड़ा आपको और आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो इस योजना के अंतर्गत आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर आप उसमें लाभ ले सकते हैं। तो प्राइवेट में 18,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इसमें कवर हैं, जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पूरे देश भर में। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अगर कोई अस्पताल आपको मना करे या पैसा मांगे, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल ही इसमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का पैसा मांगना या ले देना इसमें ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप, जैसे मैंने कहा, 1-4555 1-4555 पर आप कॉल करके तुरंत एक SOS ग्रीवांश, हम इसको कहते हैं, कि जिसको 5 घंटे के भीतर एक, मतलब बहुत ही जल्द इस तरह की कंप्लेंट को हम लेते हैं, बहुत ही सीरियस गंभीरता पूर्वक लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई आपसे तुरंत बात करे। आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे बात करें और किसी और उस अस्पताल को बताएं ताकि आपको समय पर सेवा मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, पूरे देश भर में ये चल रहा है ताकि जो लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और उनको समय पर सेवा मिल सके।
1: जी, तो आपके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर फिर से दोहरा देता हूँ, 1-4555 1-4555। इस पर यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप सूचित कर सकते हैं और उसमें समाधान अवश्य होगा। और हमारे ये श्रोता भी महाराष्ट्र से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से, प्रकाश रावत जी। रावत जी कहिए, क्या है प्रश्न आपका?
2: मैं प्रकाश रावत सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दो तीन बार में एडमिट होने के बाद, पुनः फिर से एडमिट होने के बाद जो खर्चा आएगा वो आयुष्मान में कवर हो जाएगा। दूसरा ये सवाल है कि 18 कोटी को नागरिकों को कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड वितरित होना चाहिए, ये मेरी गिनती है।
0: प्रकाश रावत जी, पहले मैं बता दूं, ये जो 5 लाख का प्रति परिवार प्रति साल का जो कवर है, मान लीजिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 31 मार्च तक ये 5 लाख का है, तो अगले साल 1 अप्रैल से फिर से 5 लाख हो जाएगा। इसका मतलब प्रति साल आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप केवल एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं या 2 बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने बार आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़े, उतने बार आप इसका योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार, जहाँ तक हमें पता है, जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है। मैं तो कहूँगा, आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने खुद कार्ड बना सकते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस के भी कार्ड जिनकी आवश्यकता है वो बनाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या फिर आयुष्मान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं। और महाराष्ट्र सरकार भी जगह जगह पर ये कैंप लगाकर कार्ड बना रही है, तो आपके यहाँ पर भी ये कार्ड बन रहे होंगे।
1: अच्छा, ये देखिए वास्का साहब, कि हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो CGHS स्कीम के लाभार्थी हैं, यदि वो ऐसी जगह रहते हैं कि वो उन्हें वहाँ लाभ उसका नहीं मिल रहा है, तो क्या वो आयुष्मान के लाभार्थी होने के पात्र हैं?
0: बिल्कुल, जो आयुष्मान व्यय वंदना है, जो 70 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को कवर करने का स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर आप CGHS या किसी राज्य सरकार के स्कीम में कवर हैं लेकिन आपको लगता है कि PMJ के अंतर्गत जो लगभग 39,000 अस्पतालों में आपको लाभ लेने से बेहतर आपको लाभ ले लेना है, तो आप उस योजना को ना चुनकर PMJ व्यय वंदना को चुन सकते हैं। आप इसमें कार्ड बना सकते हैं और कार्ड बनाते समय आपके केवल ये डिक्लेयर करना होगा कि हम CGHS छोड़कर हम इस नई योजना में शामिल होना चाहते हैं।
1: जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक नया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के संबंध प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। 1,124 अंक घटकर 72,772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22,780 दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज अपने श्री निर्मल कुमार की आवाज में गजलें सुनी। कलाम लिखा था डॉक्टर बशीर बद्र ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम।

अग्रिंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का राग मेघ में युगल गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पंडित राजेश मिश्रा और पंडित गीतेश मिश्रा का राग मेघ में युगल गायन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
2: The centre will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agricultural Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment and close field level monitoring. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today with athletes making their mark across shooting, cricket, courage and boxing. The country added 8 more medals to its tally while the men's cricket team advanced to the semifinals. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw with Yashveer Singh clinching silver and Rohit Yadav bagging the bronze medal. Commonwealth Games bronze medalist Yashveer Singh delivered a personal best of 85.72 meters to secure the silver. India's Rohit Yadav completed the podium with an effort of 84.35 meters. Sri Shankar Murli clinched the silver medal in the men's long jump, recording a best effort of 8.07 meters defending his silver at the previous games. Athlete Gulbir Singh won his second silver medal at the ongoing games, finishing runner-up in the men's 1,500-meter event. In shooting, Isha Singh won the silver medal in the women's 25-meter pistol individual event. Paril Chaudhary won her second bronze medal at the games, clocking 15 minutes 14.61 seconds in the women's 5,000-meter event. Athlete Vidya Ramraj bagged bronze in the women's 400-meter hurdles, setting a new national record in the process. India also secured a bronze medal in courage, with Pinky Balhara finishing third in the women's under 78-kilogram category. In women's boxing, Olympic medalist Lavlina Borgohain and Priya Ghangas have assured India of 2 more medals. India currently 12th in the Asian Games medal standings. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का आगाज करेंगे आशिक की फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन एक छोटे से अंतराल के साथ।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

फिल्म बाजीगर का एक गीत आपने सुना, आवाज़ें अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की। वाकई जिंदगी में हम सफ़र की हर किसी को तलाश रहती हो। जब अच्छा हम सफ़र मिल जाता है तो जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। ऐसे ही हम सफ़र ये गीत भी हैं जो आपके साथ और हमारे साथ चल रहे हैं। तो फिलहाल गीतों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, आप सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपको अगला गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फिल्म अमृत से।

फिल्म चलते चलते से गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप। और फिल्म संगीत में जैसे हमने बताया कि जो रास्ते हैं वो तय करने के लिए हम सफर के साथ साथ गीत भी बड़े काम आते हैं। ये गीत हमें हमारी उन यादों तक लेकर जाते हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते, बस याद करते रहना चाहते हैं। तो चलिए, एक ऐसा ही गीत है फिल्म दामिनी का जो कि बहुत ही खूबसूरत है और आवाज़ उससे भी खूबसूरत है। जी हाँ, आवाज़ है कुमार सानू की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म गुमराह का ये गीत आपने सुना, आवाज़ सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति की। अब कार्यक्रम में हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जब आपसे कार्यक्रम से लेनी होगी विदा, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिलहाल कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपके सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ

0: कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सहअध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। म्यांमा की सेना ने ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। कल दोपहर के समय एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास दो बम गिराए, जिससे सामान बेचने वालों, खरीदारों और पैदल चलने वालों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में फिल्म पुलिस पब्लिक से। तो हम बात कर रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण पर। संगीतकार राम लक्ष्मण का जन्म 16 सितंबर 1942 को हुआ था। इनका असली नाम कुछ और था, इनका नाम असली नाम विजय पाटिल था। राम लक्ष्मण नाम इन्हें इसलिए मिला था क्योंकि ये अपने जोड़ीदार विजय लक्ष्मण के साथ मिलकर संगीत दिया करते थे। सन 1977 में विजय लक्ष्मण की मृत्यु के बाद इन्हें यह नाम मिला और ये विजय लक्ष्मण और ये राम लक्ष्मण के नाम से जाने जाने लगे।

श्रोताओं, अपने जोड़ीदार विजय लक्ष्मण की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना ये नाम नहीं बदला, इन्होंने अपना नाम राम लक्ष्मण रख लिया और इसी नाम से संगीत देने लगे। ये न केवल एक बेहतरीन संगीतकार थे बल्कि एक अच्छे पियानो वादक और अकार्डियन वादक भी थे। ये आमतौर पर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में संगीत देने के लिए मशहूर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म

तो आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म महबूब मेरे महबूब से, अनुराधा पौडवाल, क्षमा कीजिए फिल्म आई लव यू से अनुराधा पौडवाल और किशोर दयाल की आवाज में संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, संगीतकार राम लक्ष्मण ने आज तक 150 से भी अधिक हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया है। इन्होंने अनेकों बड़े बड़े फिल्म निर्देशकों जैसे मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली और सूरज बड़जात्या के साथ काम किया है। इसी के साथ श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म महबूब मेरे महबूब से अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज़ में।

श्रोताओं, संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने कैरियर की शुरुआत दादा कोंडके की मराठी फिल्म पांडु हवलदार से की थी। इस फिल्म में इन्होंने अपने जोड़ीदार विजय लक्ष्मण के साथ मिलकर संगीत दिया था। ये फिल्म हिट साबित हुई और इस जोड़ी को एक पहचान मिल गई। इसके बाद इन्हें मनमोहन देसाई, GP CP, महेश भट्ट जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। इनके पसंदीदा जो गायक थे वो थे शैलेंद्र सिंह और गायिका थी उषा मंगेशकर, और असद भोपाली को ये अपना पसंदीदा संगीतकार मानते थे। इसी के साथ श्रोताओं, ये अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सातवां आसमान से, प्रीति उत्तम और उदित नारायण की आवाज़ में।

श्रोताओं, संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपनी जिस पहली हिंदी फिल्म से में संगीत दिया था, उस फिल्म का नाम था एजेंट विनोद। ये फिल्म सन 1977 में रिलीज हुई थी। उसके बाद सन 1981 में आई फिल्म हमसे बढ़कर कौन से इन्हें अच्छी पहचान मिली। उसके बाद तो इन्होंने कई फिल्मों जैसे हमसे है जमाना, दीवाना तेरे नाम का और आगे की सोच जैसी फिल्मों में उम्दा संगीत दिया। आइए सुनते हैं फिल्म एजेंट विनोद से ये गीत नंदिनी श्रीकर, मुअज्जम रिजवान, शबाब फरीदी और अल्तमश फरीदी के आवाज़ में।

श्रोताओं, फिल्म मैंने प्यार किया का संगीत भी राम लक्ष्मण ने ही दिया था। ये फिल्म सूरज बड़जात्या की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के संगीत के लिए इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया से ये गीत एसपी बालासुब्रमण्यम की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, संगीतकार राम लक्ष्मण ने संगीत की शिक्षा अपने पिता और चाचा से ली थी। इसके बाद इन्होंने भातखंडे शिक्षण संस्थान से संगीत की शिक्षा ली। इन्होंने अपने बेटे अमर के नाम से अमर विजय नाम का एक ऑर्केस्ट्रा भी बनवाया था। इसी के साथ श्रोताओं सुनते हैं फिल्म दुल्हन बनू मैं तेरी से ये गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

श्रोताओं, संगीतकार राम लक्ष्मण 22 मई 2021 को कोविड से हुई समस्याओं और कार्डियक अरेस्ट के कारण 78 वर्ष की आयु में नागपुर स्थित अपने घर में गुजर गए थे। आज हालांकि ये हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से ये हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। चलते चलते श्रोताओं, सुरों का सफरनामा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म 100 डेज से, लता मंगेशकर और अमित कुमार की मधुर आवाज़ में।

0: हंसी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन

0: लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 15वें संयुक्त राष्ट्र अपराध निवारण और आपराधिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री मेघवाल ने डिजिटल न्याय की दिशा में भारत के प्रयासों, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि और समय पर न्याय पर बल दिया। भारत ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति भय और इससे जुड़ी असहिष्णुता का मुकाबला करने तथा सभी के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान डर्बन घोषणा और कार्ययोजना डीडीपीए को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और इथियोपिया ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक की। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और अभ्यास, चिकित्सा सहयोग, शांति स्थापना और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के लिए कल 3 टन क्षय रोग रोधी दवाओं की खेप भेजी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत श्रीलंका की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, विशेष नैदानिक सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एलएचएमसी और उससे संबद्ध अस्पतालों में चल रही और आगामी परियोजनाओं की योजना रोगी केंद्रित और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए। भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के वाराणसी डिवीजन के 614 किलोमीटर से अधिक के मार्ग पर कवच 4.0 परियोजना के लिए 223 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजना वाराणसी डिवीजन के चिन्हित शेष खंडों में कवच 4.0 कवरेज का विस्तार करेगी, जिससे ट्रेन संचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the Conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shehzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency.

अगला गीत श्रोताओं आइए अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म हॉस्पिटल से कानन देवी की मधुर आवाज में।

क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के जमाने क्या खत्म न होंगे कभी ये

0: फरियाद है।
1: फिल्म दर्द से अगला गीत आइए सुनते हैं उमा देवी की मधुर आवाज में।

0: इसी के साथ श्रोताओं, आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 2 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81

सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने DDPA को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस राष्ट्रीय स्तर पर संचालित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने कल नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे परिवर्तन ने दोनों देशों के लिए सरकारी संस्थानों और स्थापित एजेंसियों से परे सहयोग का विस्तार करने की नई संभावनाएं पैदा की हैं। सरकार ने कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। भारत ने श्रीलंका की पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मदद के लिए कोलंबो में लगभग 3 टन टीवी रोधी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दवाओं को भेजने की जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बताए रखा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने कल मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को फिर दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सचिव जॉर्ज ने नस्लवाद, ज़ेनोफोबिया और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने

0: और सभी के लिए समानता तथा गरिमा को बढ़ावा देने के भारत के अटूट संकल्प को फिर दोहराया। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 60 सदस्यीय दल कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन के लिए रवाना हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के अंतर्गत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना और संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। म्यांमार की सेना ने एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में बाजार के पास हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल है। अराकान आर्मी के मुताबिक ये हमला कल क्योक्ताव टाउनशिप में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सेना ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और पोलैंड की राज्य सचिव तथा उपरक्षा मंत्री मागदेलेना सोबकोवियाक जारनेका ने कल नई दिल्ली में भारत पोलैंड संयुक्त कार्य समूह की बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में संयुक्त कार्य योजना 2024 से 2028 को लागू करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत और पोलैंड के बीच संस्थागत रक्षा और रक्षा उद्योग संबंधी सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। भारत ने नई दिल्ली में कल हुई भारत फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों के महत्व को दोहराया है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा तथा पूर्व सैनिक मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Union Home Minister Amit Shah yesterday inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bharti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. More than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bharti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade and local currency integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai yesterday. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
2: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the 7th largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
1: Meanwhile, Mr. Goyal will be on a visit to the United States of America from today till 5th of next month. During the visit, Mr.

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने थाला वैद्य काचेरी और याला वेंकटेश्वरा राव की ये प्रस्तुति सुनी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 57 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चला है 4:58 और 5 सेकेंड। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में।

5:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम देश भक्ति गीत, जबकि 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे

0: 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। और अब सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा, समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर बुधवार तक चलेंगे। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्ययोजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबतोर के बीच नियमित

उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की

मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान

की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जान बूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन

भी स्वस्थ होता है। दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। श्रोताओं, स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं वरुण कुमार द्वारा बजाए गिटार पर राग नट भैरव।